0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਜਾਂ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, ਡੀਆਰਐਮ 864 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, ਐਫਐਮ 100.8 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ, ਐਫਐਮ 100.9 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ ਅਤੇ ਡੀਟੀਐਚ ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋ ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋ।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
2: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी स्लोवाक गणराज्य

0: राज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनिर्माण आधारित विकास और रोजगार सृजन पर अभूतपूर्व ध्यान दिया है। इससे औद्योगिक विकास में तेजी आई है और रोजगार के व्यापक अवसर सृजित हुए हैं। श्री कुमार स्वामी ने कल बेंगलुरु में केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान के 65वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये संस्थान रणनीतिक क्षेत्र में अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। श्री सिंह ने कल हैदराबाद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपास्त्र परिसर के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि डीआरडीओ की आकाश और ब्रह्मोस प्रणालियों ने वैश्विक रक्षा प्रौद्योगिकी व्यवस्था में भारत की क्षमता प्रदर्शित की है। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमरीकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच दोपहर 1:30 से शुरू होगा। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। यामागुची ने भारत की तन्वी शर्मा को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडिया वेब 347.6 MHz किलो हर्ट्स से असी आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। ज्ञान अमृत

श्री राम के मुंह से अपने लिए विप्रवर संबोधन सुनकर मुनि परशुराम को लगा कि उनका निरादर हो रहा है। ऐसा जान श्री राम ने उन्हें समझाया कि यदि ब्राह्मण कहकर सचमुच ही मुनि का निरादर करना उनका अभीष्ट होता तो संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसके सामने वो यूं नतमस्तक होते। युद्ध की ललकार सुनकर तो वो काल से भी लड़ सकते हैं। क्षत्रिय होकर जो युद्ध से डर गया वो तो कुल कलंकी है, किंतु सच तो यह है कि ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता है कि जो वास्तव में भय रहित होता है वो भी आपसे डरता है। रघुवंश

मणि के कोमल किंतु गूढ़ वचन सुनकर मुनि परशुराम की बुद्धि पर पड़ा पर्दा जैसे अचानक ही उठ गया। उन्होंने श्रीराम के पौरुष और पराक्रम की परीक्षा करने के उद्देश्य से विष्णु के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उन्हें देना चाहा कि तभी धनुष अपने आप ही श्रीराम के पास चला गया। स्तब्ध आश्चर्यचकित परशुराम के सारे संदेह जैसे क्षण भर में मिट गए। उन्होंने श्रीराम के प्रभाव को समझ लिया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति और जय जयकार करने लगी।

वो करो जो दिल कहता है, हर बात दूसरों की सुनना क्यों है। राहें भी पुरानी हैं, राहें भी तुम्हारी हैं, सपने भी तुम्हारे हैं, फिर किसी और का रास्ता पकड़ना क्यों है। उड़ने दो ख्वाबों को खुलकर, पिंजरे में खुद को रखना क्यों है। बिल्कुल जी, इसी तरह की एक नवी कहानी लिखी है पंजाब की ती महकप्रीत कौर उन्होंने, पिंड तो आसमान तक की उड़ान भरन की ये उन्होंने कहानी है। रूपनगर रोपड़ जिले के छोटे जहे पिंड पपराली तो उठी एक किसान दी धी ने पूरे भारत के अपना इतिहास रच दिता है। महकप्रीत कौर ने भारतीय हवाई फौज अकैडमी की मैरिट सूची के ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करके ना सिर्फ अपने परिवार

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਨੀ ਸਵੇਰ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ, 8:15 ਵਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 8:30 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर होंगे रवाना। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमेरिका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मुकाबले में अमेरिका 3-0 से आगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री की ये फ्रांस की 7वीं आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस वर्ष के आरंभ में भारत फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज दक्षिण फ्रांस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेटिव्स का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में भारत के 120 से अधिक स्टार्टअप और कंपनियां भाग लेंगी, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक और उद्यमिता के क्षेत्र में भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को प्रदर्शित करेंगे। कार्यक्रम में फ्रांस सहित दुनिया भर के निवेशक और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके बाद दोनों नेता ऐतिहासिक विला कैरिलोस में द्विपक्षीय शिखर वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान अंतरिक्ष, असैन्य परमाणु ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और जन से जन संपर्क जैसे महत्व

0: उन मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और फ्रांस के बीच 25 वर्षों से अधिक पुरानी रणनीतिक साझेदारी है, जो रक्षा, अंतरिक्ष और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में लगातार मजबूत हुई है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 16 अरब अमरीकी डॉलर हो चुका है। नीस में अपने कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर स्लोवाकिया जाएंगे। इसके बाद वे 16 और 17 जून को फ्रांस के एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस लौटेंगे। इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी विकासशील देशों के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में भारत का पक्ष रखेंगे। नीस से सेलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे।
2: स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली आधिकारिक यात्रा पर स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट के साथ वार्ता में आपसी सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। यह राज्य की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024 में 1 अरब डॉलर से अधिक हो गया था। पिछले वर्ष ये बढ़कर 1 अरब 80 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और स्लोवाकिया के संबंधों को नई मजबूती देगी, साथ ही यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ भारत का सहयोग और बढ़ने की संभावना है। ब्रातिस्लावा से स्मृति एम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी और मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों ने भारत को अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल कर दिया है। श्री सिंह ने कहा कि DRDO ने विभिन्न प्रकार के खतरों के खिलाफ राष्ट्र की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने वाली कई महत्वपूर्ण तकनीकों का सफल प्रदर्शन किया है।
3: आजादी के बाद कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जिनके शासक भारत में आने से मना कर रहे। शुरुआत में सरदार पटेल ने बातचीत के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बातचीत से हल नहीं निकला तो उन्होंने बलपूर्वक उन प्रिंसली स्टेट्स का भारत में विलय कराया। हमारी सरकार भी इसी नीति पर चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर से हमने दुनिया को बता दिया, शांति और सद्भावना की भाषा नहीं समझने वाले लोगों को हम उसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं जो उनकी आदत।
1: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की चर्चा करेंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नागालैंड के कला और संस्कृति विभाग के गाइड ने इस योजना के लाभों पर बात की। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरोख अबैम शरदचंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
2: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति

0: मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1.25 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूं।
1: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही हैं। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ. जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है।
4: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। उन्होंने संवाद और कूटनीति के माध्यम से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
2: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वो ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। अमेरिकी अधिकारी ने नागरिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन और परमाणु हथियार क्षमता के बीच स्पष्ट अंतर बताया और कहा कि अमेरिका का उद्देश्य ईरान के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को समाप्त करना नहीं, बल्कि ईरान को बम बनाने की क्षमता बनाए रखने से रोकना है। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुईं। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। लॉस एंजल्स में फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मैच में ताजा समाचार मिलने तक अमरीका 3-1 से आगे चल रहा था। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के आसार हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
5: धन्यवाद विशाल। ओमान की खाड़ी में भारतीय चालक दल वाले व्यावसायिक जहाजों पर अमेरिकी हमलों पर भारत का कड़ा विरोध आज की अधिकांश अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, जहाजों को निशाना बनाने से भारत नाराज, अमेरिका से कहा ऐसे हमले स्वीकार्य नहीं। अमेरिकी दूतावास के प्रभारी को

0: दूसरी बार किया तलब। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ युद्ध समाप्ति समझौते का दावा भी अखबारों की सुर्खी बना है। दैनिक जागरण ने लिखा है, ईरान युद्ध खत्म, समझौता जल्द। तेहरान ने कहा, अभी अंतिम फैसला नहीं। जिनेवा में कल मसौदे पर हस्ताक्षर संभव। वहीं हिंदुस्तान ने बिजनेस पन्ने पर लिखा है, शांति कायम होने के संकेतों से शेयर बाजारों में तूफानी तेजी। अमेरिका और पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की खरी खरी राजस्थान पत्रिका में है। फिनलैंड में कुल तारंता टॉक्स में कहा, भारत ने नहीं पहुंचाया यूरोप की सुरक्षा को खतरा। हम जानते हैं खेल क्या है। यूरोप के हथियारों का इस्तेमाल भारत पर हमले के लिए किया जाता है। महिलाओं के लिए क्षमता दिखाने का माहौल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द जनसत्ता में है। पीएम ने कहा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं के नेतृत्व में विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण पर दिया जोर।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमेरिका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on 6-day visit to France and Slovakia this morning. DRDO successfully conducts 3 consecutive flight tests to demonstrate multi-layered ballistic missile defense capability. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar lodges strong protest with US Secretary of State Marco Rubio over US strikes on oil ship that killed 3 Indian sailors. India and Bangladesh reaffirm their commitment to maintain peace and tranquility along the border. United States says it opened to civil nuclear program of Iran under proposed peace deal. In badminton, PV Sindhu to face world champion Akane Yamaguchi of Japan in women's singles semi-finals of Australia Open today. And in FIFA World Cup, United States takes 3-1 lead in ongoing match against Paraguay in Group D at Los Angeles. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will be arriving in Nice, France this evening, embarking on a 2-nation European tour spanning France and Slovakia. This is the Prime Minister's 7th official visit to France since 2014 and carries special diplomatic weight. Prime Minister Modi and French President Emmanuel Macron are set to hold their first bilateral summit since the elevation of India-France ties to a special global strategic partnership earlier this year. The Prime Minister will also participate in the G7 summit in Ivan, reaffirming India's standing as an indispensable voice of the Global South on the world stage. Our correspondent joins us now from Nice, France.
3: On arrival this evening, Prime Minister Modi will proceed to his hotel, where he will attend a community reception bringing together members of the Indian diaspora from across the south of France. The engagements on 14th of June opened on a note of innovation and ambition. Prime Minister Modi, alongside President Macron, will inaugurate Bharat Innovates, India's flagship innovation showcase at the Palais des Expositions de Nice. More than 120 Indian startups and companies will come together with leading investors and business leaders from France and across the world, spotlighting India as a global destination for deep tech, artificial intelligence and entrepreneurship. Thereafter, the two leaders will proceed to the historic Villa Kerylos for their bilateral summit, where defense, space, civil nuclear energy, technology and people-to-people ties are expected to feature prominently on the agenda. India and France share over 25 years of strategic partnership with deep cooperation in defense, space and a fast-growing economic relationship with bilateral trade crossing $15.82 billion.

0: Rising tensions, reports the Financial Express. Termed as student-friendly changes, extra 15 minutes, more rough work space for students in NEET retest, informs the Hindustan Times. Rain, strong winds deliver city its cleanest air since September 15th, reports the Times of India. The Statesman on its editorial page under the caption Demanding Proof writes, for much of the past 2 years, investors appeared willing to suspend disbelief. Artificial intelligence was not merely a promising technology, it became the foundation of a market narrative. Share prices soared, valuations stretched, and every earnings season was interrupted through the lens of an AI-driven future. The recent turbulence in global stock markets suggests that this phase may be ending. Technological revolutions have always generated excitement, but financial markets eventually demand evidence. And finally, under the caption Peck Party, the Delhi Tribune captures a serene picture of a parrot and black-rumped flame-back woodpecker feeding on a wall. And with that, it's back to you, Sarabjeet.
1: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to embark on 6-day visit to France and Slovakia this morning. DRDO successfully conducts 3 consecutive flight tests to demonstrate multi-layered ballistic missile defense capability. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar lodges strong protest with U.S. Secretary of State Marco Rubio over U.S. strikes on oil ship that killed 3 Indian sailors. India and Bangladesh reaffirm their commitment to maintain peace and tranquility along the border. United States says it opened to civil nuclear program of Iran under proposed peace deal. In badminton, PV Sindhu to face world champion Akane Yamaguchi of Japan in women's single semi-finals of Australian Open today. And in FIFA World Cup, United States takes 3-1 lead. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: नमस्कार ए आकाशवाणी ए खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर पहले इस बुलेटिन दियां खास खबरां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज फ्रांस अते स्लोवाकिया दे 6 दिनां दौरे ते रवाना होणगे DRDO ने बहुपदरी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा समर्था का विखाला करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने तेल टैंकर से हुए हमले के विरोध च अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो नाल सख्त विरोध दर्ज कराया हमले च 3 भारतीय नाविकां की मौत हुई सी भारत और बांग्लादेश ने सरहद से शांति स्थिरता और सद्भावना बनाई रखने अपनी वचनबद्धता प्रगट की है अमरीका तजवीजशुदा शांति समझौते तहत ईरान के सिविल परमाणु प्रोग्राम से सहमत होया आस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में आज भारत की पीवी सिंधु का मुकाबला विश्व चैंपियन जापान की अकाने यामागुची नाल होएगा हुण खबरां विस्तार नाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोपी देशों नाल भारत की भाईवाली नूं होर डूंगा करन लई अज तों फ्रांस अते स्लोवाकिया दे 6 दिनां दौरे ते होणगे इह दौरा यूरोपीयन यूनियन नाल अपनी व्यापक रणनीतिक भाईवाली नूं अगे वधाउण प्रति भारत की वचनबद्धता नूं वी दोहराएगा दौरे के पहले पड़ाव विच प्रधानमंत्री भलके राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों नाल दवली मुलाकात लई नाइस जाणगे दोवे नेता समुचे भारत फ्रांस संबंधां की समीख्या करनगे ते भारत इनोवेट्स प्रोग्राम का सांझे तौर पर उद्घाटन करेंगे जो भारत फ्रांस और होर देशों तो चोटी के नवीनता स्टार्टअप्स और वेंचर कैपिटल फंडा नू एक थां लियाएगा अपनी यात्रा के दूजे पड़ाव में श्री मोदी स्लोवाकिया का दौरा करेंगे वह अपने स्लोवाकिया के हमरुतबा रॉबर्ट फीको नाल गलबात करेंगे और सहयोग के नवे राह पालणगे दौरे के तीजे पड़ाव में प्रधानमंत्री इस महीने की 16-17 तरीक नू फ्रांस के ईवीएन विच G7 सम्मेलन विच हिस्सा लैणगे सम्मेलन दौरान वह G7 नेतावां ते सद्दे गए भाईवाल देशां ते अंतरराष्ट्रीय संगठनां दे लोकां नाल विचार वटांदरा करनगे जो सम्मेलन विच हिस्सा लै रहे ने दौरे दे आखरी पड़ाव ते प्रधानमंत्री 18 जून नूं पैरिस दा दौरा करनगे जिथे ओह दवल्ले संबंधां नूं होर मजबूत करनगे अते यूरप दे सब तों वड्डे तकनोलॉजी अते स्टार्टअप प्रोग्राम ਵੀਵਾ ਟੈਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ G7 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਆਲਮੀ ਦੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਏ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ DRDO ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਐਂਟੀ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ

0: ते हिस्सेदारां विचकार नज़दीकी तालमेल राहीं प्रीख्या दे सुचारू पारदर्शी अते सुरक्षित संचालन नूं यकीनी बनाउण दी जरूरत ते जोर दित्ता। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान दे सिविल परमाणु ऊर्जा प्रोग्राम नूं मंजूरी देण दी तैयार है, पर इस लई तेहरान नूं अपने परमाणु हथियारां नाल संबंधित बुनियादी ढांचे नूं खत्म करन दी लोड़ होएगी। इह स्पष्टीकरण ट्रंप प्रशासन दे इक सीनियर अधिकारी वल्लों कल तजवीज़शुदा अमरीका ईरान परमाणु समझौते दे वेरवे पेश करन तों बाद आया है। अधिकारी ने सिविल परमाणु ऊर्जा उत्पादन अते परमाणु हथियारों की समर्था विचकार स्पष्ट अंतर कढ़िया ते दलील दित्ती कि वाशिंगटन का उद्देश ईरान दे परमाणु ऊर्जा खेतर नूं खत्म करना नहीं सगो तेहरान नूं बंब बनाउण की समर्था नूं बरकरार रखण तों रोकना है। खेडां विच बैडमिंटन विच अज सिडनी विच आस्ट्रेलियन ओपन दे औरतां दे सिंगल्स दे सैमीफाइनल विच भारती पीवी सिंधु दा मुकाबला विश्व चैंपियन जापान दी आका ने यामागुची नाल होएगा। तीजा दर्जा प्राप्त भारतीय खिडारन ने क्वार्टर फाइनल विच सिर्फ 27 मिंटां विच चेन सुयू नूं 21-6, 21-9 नाल हरा के आखिरी चार विच अपनी जगह पक्की कीती। आखिर विच खास खबरां इक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज फ्रांस अते स्लोवाकिया दे 6 दिना दौरे ते रवाना होणगे। DRDO ने बहुपदरी बैलिस्टिक मिजाइल रक्षा समर्था दा विखाला करदे होए लगातार 3 सफल परीक्षण कीते। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने तेल टैंकर ते हमले दे विरोध च अमरीका दे विदेश मंत्री मार्को रूबियो नाल सख्त विरोध जताया। हमले च 3 भारतीय नाविकां दी मौत हुई है। भारत अते बांग्लादेश ने सरहद ते शांति स्थिरता ते सद्भावना बनाई रखण लई अपने वचनबद्धता प्रगट कीती है। इस दे नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला प्रादेशिक बुलेटिन दोपहर बाद 1:10 ते होएगा। नमस्कार।
1: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वल्लों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज़ 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
2: छेती करो यार, प्लीज छेती करो।
3: दूजा भी कोई मैच है?
2: यही समझ ले यार, बैंक जाना है दादाजी नूं लेके।
3: हां यार, उम्र हो जांदी है तां राणा लेना ही पैंदा है।
4: पर बैंकिंग विच नहीं,
5: उंज भी RBI कहिंदा है सीनियर सिटीजन सब तो पहला। जे तुसी 70 सालां तों उपर हो, डिफरेंटली एबल्ड हो ते तुसी बैंक नहीं जा सकदे, तां बैंक आवेगा तुहाडे कोल जरूरी सेवावां लेके, वो भी वाजब दरां ते।
4: सीनियर सब तो पहला, RBI कहिंदा है जानकार बनो, सचेत रहो।
6: असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों बोल रहे हां। हुण पेश है प्रोग्राम महक पंजाब दी। महक पंजाब दी प्रोग्राम दे विच सब तो पहला गीत तुहानू सुनाण जा रहे हां, हीरो नाम याद रखी। इस फिल्म दे विचों लिया सुनिधि चौहान ते अंकित तिवारी दीआं आवाज़ां दे विच गाया।

जी दोस्तों, बिल्कुल नज़र एक छोटा जिहा शब्द है, पर इस दे अर्थ बहुत डूंगे ने। नज़र सिर्फ अखां नाल देखण दा ही नाम नहीं, सगो दिल दे जज्बातां नूं समझण दा भी एक साधन है। दोस्तों, प्यार दी दुनिया दे विच अखां सब तो पहलां गल्लां करदियां ने। कई बार दिल दी पूरी कहानी नज़रां दे राहीं बयान हो जांदी है, ते कदे कदे प्यार दी पहली दस्तक भी यह नज़र बन जांदी है। कदे किसे दी याद दा आईना, ते कदे बुरी नज़र तो बचाउण वाली दुआ भी बन जांदी है। आओ अज दे इस प्रोग्राम दे विच बिल्कुल नज़र शब्द नाल सजे हुए कुछ सदाबहार गीत ते कुछ नवें गीत तुहाडे तक पहुँचाउण दी कोशिश कर रहे हां, ते अगले गीत दे विच देखदे हां कि इस नज़र नूं किवें बयान कीता है। तेरी नज़रों का असर कुछ यूं हुआ, दिल मेरा मुझसे ही बेखबर हुआ। जो बात जुबां कह ना सकी, वो तेरी आंखों ने कह दिया।

रब से बस इतनी सी फरियाद रहे, तेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहे, दुनिया की हर बुरी नज़र से दूर तेरी खुशियों की पहचान रहे। दोस्तों कदे कदे किसे अपने नू दुनिया दी बुरी नज़र तो बचाने दे लई दिल तो दुआवां दित्तियां जांदियां ने। असल दे विच नज़र इंसान दे सुभा दा भी आईना हुंदी है। जो साडी नज़र चंगी होवे तां सानू हर पासे चंगियाई नज़र आउंदी है, जे सोच चंगी होवे तां दुनिया भी सुंदर लगदी है। इसे लई तां कहा जांदा है ना, नज़र बदलो तां नज़ारे बदल जांदे ने, सोच बदलो तां जीवन दे सारे राह बदल जांदे ने।

0: सिलसिला शुरू किया गया है समाचार प्रभाग वालों, खास करके जिहड़ा हर रोज शाम नूं 7:10 तो लैके 7:45 तक प्रसारित किया जाता है ना।
1: जी जी
0: तो इस सिलसिले च आकाशवाणी जलंधर ने भी एक विशेष उद्यम किया है। सवेरे साढ़े एक खास प्रोग्राम चलता जिहड़ा इन्हां ही प्राप्तियों नूं समर्पित है, और असी हर एक दिन छड़ के एक विशेष प्रोग्राम किसी ना किसी ऐसी उपलब्धि जिहड़ी सरकार की है, जिहड़ी सरकार वालों कोई ना कोई मुहिम नवी शुरू की गई है, उन्हों लैके असी ये प्रोग्राम चलाने। कुछ प्रोग्राम तो साढ़े सुनने वाले ने सुन लए होणगे। हुण यूथ शक्ति नूं समर्पित एक प्रोग्राम आने वाले दिनों च पेश किया जाएगा। उस तो बाद मिशन सिंदूर नू लैके एक प्रोग्राम पेश किया जाएगा। सो इस तरीके दे नाल वख वख सिलसिले जिहड़े आ असीं पेश करांगे।
1: बहुत वधिया जानकारी तुसीं दित्ती है। तो ये हुण खत दे विच अगली गल लिख रहे ने कि मेहमान बरूहान ते प्रोग्राम च हरभजन सिंह परमजीत कौर जी दी जोड़ी दे नाल कीती इंटरव्यू सुनी, बहुत वधिया लगी। सिरजना विच पंजाबी साहित दे कवि लेखक गुरतेज कुहार बारे सुनिया चंगा लगा। रंगली
0: गुरतेज कुहाड़ वाला
1: जी
0: जी
1: रंगली धरती विच कविश्री सुनी, प्रसंग श्री गुरु नानक देव जी
0: जी
1: बहुत ही विस्तार सहित कविश्री सी। रागी ढाडी कविशर निरंजन सिंह होना पासो बहुत ही आनंद आया
0: जी।
1: इस लिए दिलो धन्नवाद आकाशवाणी जलंधर जी दा साडी माता कृष्णा राणी वर्मा वालों।
0: जी जी जी वो हमेशा ही, और मैनू याद है मंगलवार नू माता दियां भेटां प्रसारित कीतियां जांदियां रंगली धरती प्रोग्राम च, ओनू वी बकायदा सुनदे ने और हर वार अपनी चिट्ठी च जिक्र जरूर करदे ने।
1: इह कहिंदे कि ओह रिकॉर्ड कर लैंदे ने रंगली धरती ते बाद विच दोबारा फिर सरवण करदे।
0: हां वाह क्या बात है जी।
1: युवाणी विच नवी दिशा प्रोग्राम च रशनीत कौर जी नाल कीती इंटरव्यू, वीरेंद्र जी नाल कीती गलबात सी, ओ बहुत वधिया लगी। उन्हां दे करियर बारे जाण के बहुत ही माण महसूस होया। उन्हां नूं वधाइयां भी इस लई। परमजीत जी तुहानूं भी वधाइयां
0: जी। बहुत शुक्रिया जी।
1: कहिंदे कि आप जी ध्यान विच इह लियाउणा चाहुंदा हां कि जो आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है ओह पिछले दिन ही बंद रहन की वजह पूछ रहे हैं, तो कई बार कहते कि इस नाल बहुत परेशानी भी आती है। लोग रेडियो लैके आते हैं कि रेडियो खराब हो गया, चल नहीं रहा, इस तरह कहते बचा जाए इस तरह की परेशानी।
0: जी सानू भी एहसास है जी इस चीज़ का कि पिछले दिन ही मई महीने विच खास करके और जून के महीने के शुरुआती दिनों के आकाशवाणी जलंधर का जिहड़ा साडा मीडियम वेव का ट्रांसमिटर है 873 kHz उत्थे कुछ वजह करके प्रसारण जिहड़ा है लंबे समय तक बंद रहा। उहदियां वजह लभ लुभ के पता तो लग गई, उस तो बाद उन्हां नूं ठीक करन की कोशिश भी की जाती रही है, और काफ़ी जदोजहद तो बाद असी हुण अपने इस उद्यम दे विच कामयाब होए हैं। मेरा ख्याल है जी कि उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में प्रसारण दे विच वो जिहड़ा विघन रहा पिछले महीने दे विच वो हुण दोबारा नहीं होएगा।
1: अगे फिर उही गल लिखी इन्होंने कि साडे पिंड दा नाम तुसीं कई बार पूरा नहीं पढ़दे जी, पिंड दा नाम सही ते पूरा बोलिया जावे
0: जी। पूनम जी ये इशारा ना ते तुहानू ना मैनू
1: जी,
0: ये इशारा है जी उन्हां फरमाइशी प्रोग्राम पेश करन वाले अनाउंसर साहिबान नू जिहड़े पिंड दा नाम कई बार पूरा नहीं पढ़दे या ठीक नहीं पढ़दे
1: जी
0: जी।
1: कहिंदे सब तो पहला सानू खत लैण लई 7 किलोमीटर दूर मंडी अरनी वाला जाना पैंदा है, फिर खत लिख के दोबारा फिर मंडी अरनी वाला खत पाउण लई जाना पैंदा है, ते फिर जदों प्रोग्राम विच अपने खत सही नहीं पढ़े जांदे तां कई वार मन नूं ठेस पहुंचदी है। इस लई इस गल वल जरूर ध्यान दिता जावे। देहाती प्रोग्राम विच सब दी पसंद प्रोग्राम जिहड़ा है ओह खत ते क्यों नहीं आ रहा जी। असीं आकाशवाणी जलंधर एक मिनट भी नहीं बंद करदे, लगातार चलदा रहिंदा है। ते कहिंदे कि साडे पिता जी डॉक्टर मदन लाल वर्मा जी सुणदे हुंदे सन, ते उन्हां तों सानूं गुड़ती मिली आकाशवाणी जलंधर नूं सुणन दी, ते बहुत दुआवां भी भेजियां ने इन्हां ने आकाशवाणी जलंधर दे लई
0: जी। उस प्रोग्राम बाबत जरूर दसदी है जी कि कुछ दिनां तों क्योंकि असीं भारत सरकार के 12 साल पूरे होने के संबंध में कुछ विशेष सिलसिले चालू किए ने, इस करके जिहड़ा देहाती प्रोग्राम है वह हुण अद्धे घंटे का चल रहा है जिहड़ा कि आने वाले कुछ दिनों तक इंज ही रहेगा, इस करके शायद इन्हों वो वाले सिलसिले नज़र नहीं आ रहे प्रोग्रामों के विच
1: जी
0: जी।
1: शुक्रिया जी खत लिखण दे लई। अगला भी ईमेल ही चलो पढ़ लैंदे हां जी
0: जी।
1: तो ये ईमेल देख के ना मैनूं एक बार भुलेखा पिया कि कितने पुराना तो नहीं ईमेल,
0: अच्छा
1: क्योंकि इस दे विच ना ठंड का जिक्र किया हुआ।
0: अच्छा अच्छा
1: हाँ जी।
0: पर देखो ईमेल आया है 12 जून 2026
1: बिल्कुल,
0: यानी बीते कल है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी।
1: पुरुषोत्तम कुमार हुणा ने भद्रवाहा तो लिखा है।
0: अच्छा ये हो सकता है जी, भद्रवाह ठंड होंदी है।
1: बिल्कुल जी, मौसम भी बदला है ते हो सकता है
0: जी।
1: कहंदे कि आकाशवाणी जलंधर भारत का जाना माना केंद्र है, कार्यक्रम आपके सभी मस्त चल रहे हैं, आजकल भद्रवाहा में बहुत बारिश हो रही है, ठंड से बुरा हाल हो गया है।
0: देखिया
1: बारिश के कारण होया है
0: जी।
1: ते मैं इस कार्यक्रम से बहुत पुराना जुड़ा हूँ, इस कार्यक्रम को ऐसे ही चलने दें ताकि

0: मेरा और आपका तालमेल ऐसे ही बना रहे।
1: जी बिल्कुल, असं भी यही चाहते हैं प्रोग्राम इदा ही चलता रहे और ये वास्ते सू भरपूर सहयोग तो थोड़ा चाहिए ना। जदों तक थोड़िया चिट्ठिया आदि रहनगियां प्रोग्राम इस तरह चलता रहेगा और तरक्या भी करता रहेगा। बस तुम चिट्ठिया लिखनिया ना छड़ियो, असं ये प्रोग्राम नू बंद नहीं होने देंगे।
0: जी अगला खाता है जी बलबीर सिंह हुणां दा, पंजाब पुलिस।
1: बलबीर सिंह होरी पिछले कुछ समय तो ही इन्होंने चिट्ठियां लिखनिया शुरू कीतियां पर हुण लगातार लिख रहे ने, सानू बहुत ज़्यादा खुशी हुंदी है।
0: जी इन्होंने लिखा, बलबीर सिंह पुत्र जरनैल सिंह, पिंड चक हाजीपुर, तहसील गढ़ शंकर, जिला हुशियारपुर।
1: वाह वाह वाह।
0: नाल ने रणजीत कौर, हरनीत कौर ते इन्हां दे परिवार दे बाकी मैंबर साथी।
1: जी
0: कहिंदे कि सारे अंकल साहिबान बहुत मेहनत करदे ने, सुलझे हुए ने, शांत सुभा दे मालिक ने। रेडियो वाले अंकरां दी चोण बहुत वधिया तरीके नाल तुसीं करदे हो। वीरेंद्र जी दा सोहणे से प्रोग्राम बहुत ही मेहनत दे नाल तैयार कीता हुंदा है।
1: जी
0: बाकी अंकल साहिबान भी प्रोग्राम वधिया कहिंदे पेश कर रहे ने, इन्हां ने कई नाम भी लिखे ने, सारे प्रोग्राम बहुत वधिया ढंग नाल पेश करदे ने। कहिंदे कि मिति 29 मई नूं देहाती प्रोग्राम विच संधू साहब ने पशुआं ते जुल्मां बारे डॉक्टर साहब नाल गल्लबात कीती, जो कि काबिले तारीफ सी।
1: जी
0: सानूं पशुआं दी हमेशा देखभाल ते दया करनी चाहीदी है। वैसे तां मैं नौकरी करदा, पर शनिवार ते ऐतवार नूं मैं सवेरे कावां चिड़ियां नूं रोटी दही दाणा पा के आउंदा है ते पाणी रोज़ दी रोज़ बदल के आउंदा।
1: जी
0: मैं अपने विहड़े विच सदाबहार बूटे भी लगाए हुए ने जिस ते चिड़िया ने अपने आलणे पाए हुए ने।
1: वाह वाह वाह।
0: बाल जगत प्रोग्राम ऐतवार दा मैनूं बहुत चंगा लगदा है, बिना नागा सुनदा।
1: जी
0: भैणां दा प्रोग्राम वास्ते विहड़े शनिवार नूं झांझरां दी बोझ सुनदा, काबिले तारीफ हुंदा है, बहुत ही चंगा लगदा है। उहनां दीआं गल्लां बहुत ही समझ वालियां हुंदियां ने। मिति 31 मई नूं चिट्ठियां मिठियां, प्रोग्राम बहुत काबिले तारीफ सी, पर आखिर विच इक शिकायत है कि सोंधी साहब सोहणी सवेर प्रोग्राम पेश नहीं कर रहे अज कल। उन्हां दी शेरो शायरी सानूं बहुत पसंद आउंदी है।
1: हाँ जी, सब तो पहला तो गल यह है जी कि तुसी साडे प्रोग्राम पसंद करदे हो, इहदे नाल सानूं बहुत ज़्यादा खुशी हुंदी है और तुसी सानूं हुण अक्सर चिट्ठियां लिखदे हो, इहदे नाल सानूं होर भी ज़्यादा खुशी हुंदी है। एंकर साहिबान की चोण बाबत उन्होंने लिखा कि चोण बड़े वधिया तरीके नाल कीती जांदी है, इस बाबत भी सानूं बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि तुहानूं ये आवाज़ां पसंद आ रही ने और उन्हां दा जिहड़ा अंदाज़े बयां है यानी जिस तरीके दे नाल ओह प्रोग्राम पेश करदे ने वह तुहानू पसंद आता है, ये वास्ते ही बहुत बहुत शुक्रिया जी। कुदरत दा सारे ही दोस्त खास ख्याल रखते हैं, असी भी अपने प्रोग्राम गाहे बगाहे ये सुनेहा जरूर दिने जी कि कायनात का ख्याल रखो, जिहड़े जानवर पशु पंछी ने उन्हां प्रति कदे भी क्रूर या बेदर्द ना होवो, उन्हां नूं प्यार दे नाल संभालो क्योंकि उन्हां दे विच वी जान हुंदी है और वो तो बेजबान हुंदे ने, अपना दर्द जिहड़ा बोल के दस भी नहीं सकते। सो साडा ही फर्ज बनता क्योंकि इंसान ऐसा जीव है जिन्हों कुदरत ने सब तो ज़्यादा समझ दिती है और सोचने की शक्ति दिती है, तो जे साडे कोल शक्ति है तो क्यों ना इन्हों सार्थक पासे वाल लाया जाए। बाकी बहुत वधिया गल इन्होंने लिखी कि इन्होंने घर दे विच बहुत सारे रुख लाए हुए जिन्हां विच चिड़िया ने आलणे पाए हुए और उत्थे अपने अंडे और बच्चे पैदा हुंदे ने उत्थे, है ना। बहुत वधिया लगता जी तुसी कुदरत नूं इन्ना ज़्यादा प्यार करते हो, चिट्ठियां मिठियां प्रोग्राम तुहानूं पसंद आ और बाकी सारे प्रोग्राम जिन्हां बाबत तुसी इहदे विच लिखिया है। एक होर इन्होंने लिखिया कि गगनदीप सोंधी जी हुण क्यों घट आ रहे ने, उहदे बाबत इन्ना जरूर दस दिए जी कि गगनदीप सोंधी जी अपनी निजी जिंदगी विच किसी अपने काम काज नूं लै के जरूर मसरूफ होणगे, इस करके साडे तक उन्हां दी अवेलेबिलिटी थोड़ी जी घट रहिंदी हैगी आ, पर फिर भी असीं कोशिश करांगे जी कि साडे सुणन वाले उन्हां नूं याद करदे और जरूर आया करन।
0: शुक्रिया जी खत लिखण दे लई, इसी तरह प्यार दिंदे रहो, सानूं खत लिखदे रहो। अगला ईमेल है जी सुभाष गुदारा हुणां दा, पिंड हीरा वाली फाजिलका तों।
1: जी
0: कहिंदे कि हर वार असीं प्रोग्राम सुणदे आं 9 तारीख नूं 12:30 FM रेनबो जलंधर दा प्रोग्राम होम स्वीट होम विच साक्षी मोहन जी ने प्रियंका भारद्वाज नाल जो गलबात कीती सी सानूं बहुत चंगी लगी। 9 तारीख नूं शामी 5 बजे तों 6 बजे तक यानी कि युवाणी प्रोग्राम विच भूमिका ते शिवम दी पेशकारी विच प्रोग्राम बहुत चंगा लगा। 9 तारीख नूं राती खेड संसार प्रोग्राम सुनिया जिस विच वीरेंद्र जी ने अथलैटिक कोच सुखदेव सिंह पन्नू नाल जो गलबात कीती सी चंगी लगी। 10 तारीख नूं युवाणी दा सैगमेंट यंगिस्तान सुनिया, आरजे शिवम जी ने फोटोग्राफर चिराग राजपाल जी दे नाल रूबरू करवाया। बाकी दे प्रोग्राम हैलो फरमाइश तां मगजलंधर पैंदी चिट्ठियां मिठियां सोहणी सवेर वास्ते वेड़े रात दी सभा विच FM रेनबो जलंधर साडा मनोरंजन कर रहे। बच्चों नूं गर्मियां दी छुट्टियां चल रही ने, साडे समय तां कहिंदे इक ही पसंद हुंदी सी नानी माँ दे पिंड विच छुट्टियां कट के आउण दीआं, अज दे समय पता नहीं प्रथा बदल गई है या फिर उवें चल रही है।
1: जी सब तो पहला इत्थे गल शुरू करदे आं जी कि मामियां दे जावांगे मोटे होके आवांगे, है ना
0: जी।
1: ये असीं भी अपनी बचपन च बहुत ज़्यादा इस प्रथा

0: हमारी ओर से बहुत शुभकामनाएं जी। जो पहले के ज़माने में केवल सुनते थे, पर आज के दौर में सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं। सचमुच आकाशवाणी गागर में सागर है, मनोरंजन, शिक्षा, ज्ञान सभी प्रकार की भंडार से भरा हुआ है। बच्चों से लेकर बुढ़ापे तक की सफ़र लेकर आता है, मुझे रेडियो ने अपने साथ जोड़कर रखा। मैं भाग्यशाली हूँ जो एक दूसरे से मिलने और देखने का मौका दिया सच्चा मित्र है, और अपने जीवन के अंत तक जुड़े रहने का प्रयास करूंगा। जितना भी लिखूं उतना ही कम है।
1: वाह वाह वाह, आगे कुछ और भी लिखा है इन्होंने?
0: जी इन्होंने वो जो शेर बना के लिखा ना, वो असि हर वार पढ़ दिंदे हुंदे आ वैसे।
1: अच्छा जी,
0: ते आज भी पढ़ दिए।
1: पढ़ दियो।
0: रेडियो के साथ उठता हूँ, इसी के साथ सोता हूँ, जब सुनता हूँ नाम अपना तो बहुत खुश होता हूँ, कभी फरमाइश पूरी ना हो तो मायूसी में आपा खोता हूँ। मेरा नाता ही कुछ ऐसा है रेडियो से। जी हाँ जनाब, मैं रेडियो श्रोता हूँ।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है रवि कुमार राहुल जी, बहुत वधिया कविता लिखी तुसी और बहुत ही सोहनिया भावनावां दा इजहार भी किया अपनी इस ईमेल के जरिए। असी थोड़ा शुक्रिया।

0: पूरी ना हो तो मायूसी में आपा खोता हूँ।
1: वाह
0: मेरा नाता ही कुछ ऐसा है रेडियो से। जी हाँ जनाब, मैं रेडियो श्रोता हूँ।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है रवि कुमार राहुल जी, बहुत वधिया कविता लिखी तुसी और बहुत ही सोहनिया भावनावां दा इजहार भी किया अपनी इस ईमेल के जरिए। असी थोड़ा शुक्रिया अदा करते हैं और माण महसूस करते हैं कि थोड़े वर्गे लिसनर्स, थोड़े वर्गे स्रोते जिहड़े ने वो आकाशवाणी जलंधर दे नाल जुड़े हुए ने।
0: जी ते बाकी स्रोते भी साढ़े नाल इस तरह जुड़न, सानू यही उम्मीद है। ते जेकर वह जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए साडा ईमेल का पता है जी tcmjalandhar@gmail.com।
1: ते साडा पता है जी, प्रोग्राम थोड़ी चिट्ठी मिली मार्फत स्टेशन डायरेक्टर आकाशवाणी जलंधर, पिन कोड 144001।
0: सो जी अज के प्रोग्राम दे विच यही सारे खाते ते ईमेल सन साढ़े कोल, ते ताडे खातां दा ताडे ईमेल दा सानू बड़ा ही बेसब्री दे नाल इंतजार रहेगा। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
1: ਨਮਸਕਾਰ।
2: ਹੁਣ ਸਰੋਤੇ ਆਪਣੇ ਖਤਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ।
3: ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਚਨਾ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਸਟਾਫ ਕੁਆਟਰ ਤੇ ਆਫਿਸ ਸਪੇਸ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਯਾਨੀ PSU ਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਆਫਿਸ ਸਪੇਸ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਟਾਫ ਕਲੋਨੀ BMC ਚੌਂਕ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਫੇਜ਼ 1 ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟਸ। ਚਾਹਵਾਨ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਉਪ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 0181-298-3036। ਈਮੇਲ ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
4: हेलो,
5: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
6: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लई रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
7: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
8: ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬਖੂਬੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪ ਨੇ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ

0: बैठ के और स्लो ब्रीदिंग करनी। कई बार मैं देखता लोग कई आपां कहना नहीं चाहिए लेकिन यूट्यूब तो देख लेंगे जां टीवी तो देख लेंगे, जिहड़ा गुरु सामने बैठा जब टीचर सिखाता तो ठीक है
1: जी,
0: तो जे वो अपने आप करते हैं तो गलत भी कर लेंगे फिर वो इन्ना असर नहीं होंगे।
1: जी
0: किसी अच्छी जगह पर जाके सीखना चाहिए योग।
1: जेकर कुछ समा असी डीप ब्रीदिंग दफ्तर दे विच ब्रेक लैके करते हैं तो उसका बहुत चंगा नतीजा साढ़े सामने आ।
0: हाँ बिल्कुल,
1: बहुत लंबा समा कंप्यूटर मोबाइल की वरतों नाल असी काम कर रहे होंगे तो जिस नाल गर्दन च पिठ च दर्द होना शुरू हो जाता है, उस दे लिए तुसी केड़े योग आसन सजेस्ट करते हो?
0: ये देखो असी जो आसन के नाम मैं ना दसा उदा दसा भी एक ट्विस्टिंग कर सकते हैं अपने शरीर को मोड़ना सज्जे खब्बे, एक फॉरवर्ड बेंडिंग कर सकते अगे झुक सकते हैं और पैरों नूं हाथ लगा सकते हैं, फिर बैक बेंडिंग कर सकते अर्ध चक्कर आसन जो कह लो वो कर सकते, खड़े होकर ताड़ कर सकते। तो ये वास्ते जगह भी ज़्यादा नहीं चाहिए, तुहानूं आसन भी नहीं चाहिए, अपनी चेयर तो साइड में होकर खड़े होकर उत्थे कर लो, चेयर के उत्ते भी तुसीं स्ट्रैचिंग कर सकते, उंगलियों नूं आपस में इंटरलॉक करके बाजू उपर नूं खिंचो, रीढ़ नूं स्ट्रैच करना, जिदा अं बैठे रहते हैं ना साड़ी रीढ़ के मणके उत्ते असर पै जाता, ज़्यादातर जिहड़े लोअर बैक होंदी है जिहनूं आपां लंबर रीजन कहिंदे आ उहदे विच पंज मणके होंदे आ L1 तों लैके 5 तक, वह ज़्यादा उत्थे दर्द लोकां नूं हुंदे, जां फिर सर्वाइकल, सर्वाइकल दे विच साडे C1 तों C7 तक 7 मणके हुंदे आ शोल्डर दे विचकार, बाहवां विच दर्द जांदी है तो वह बाहवां विच ते लत्तां विच जिहड़ी दर्द है वह ठीक हो सकदी जे आपां खड़े होके थोड़ी देर स्ट्रैच कर लैंदे।
1: जी, तो हुण असीं स्क्रीन की गल कर लैंदे आ क्योंकि लगातार असीं स्क्रीन देख रहे हैं तो अखां ते बहुत असर पै रहा है, अखां दे लई योग आसन दे विच कुछ इहो जे आसन है?
0: हाँ जी, अखां दे विच पहले तो जिस तरह मैं कहा भी असीं जे योग शुरू ही अखां बंद करके करना होंदा
1: जी,
0: जदों अखां बंद कर लईआं तो सानूं थोड़ा रिलैक्स मिलता है। दूसरा ये असी मैं दसिया प्राणायाम नाल भी अखां ते बड़ा अच्छा असर पैंदा, जिदा अनुलोम विलोम आ एक प्राणायाम बहुत अच्छा मनिया जाता जिहदे नाल ब्रेन भी रिलैक्स हुंदा आ, स्ट्रैस भी घटदा, है भ्रामरी, अखां दे उत्ते उंगलियां रख के कन्न बंद करके और हमिंग साउंड करते 4-5 बार ते उहदे नाल भी अखां दे असर पैंदा। बाकी अखां दीआं क्रियावां हुंदीआं सूक्ष्म क्रियावां, आई बॉल्स नूं मूव करना, अखां दी पुतलियां नूं उपर नीचे साइड नूं गोल घुमाना और हत्थ अखां दे उत्ते बंद करके हाथ रखण दे नाल अद्धा मिंट एक मिंट भी अखां नूं रिलैक्स मिलदा।
1: असीं अक्सर गल करदे आं कि तुसीं जदों भी लगातार स्क्रीन देख रहे हो तां कुछ समां तुसीं अखां नूं बंद करके रिलैक्स कर सकदे हो, तां शायद इह वी उसदा ही एक पार्ट है।
2: देखो जी, असीं तां जे योग करना भी चाहिए तां वी नहीं कर सकते क्योंकि घर दे कम्मां कारां तों ही वेल नहीं मिलदी, सिर खुरकण दी फुरसत नहीं हुंदी ते योग कित्थों करांगे असीं? ना जी ना, योगा योगा करन दा ना समां आ ते ना वेल आ, ना ही वस चा जी हुण।
1: सो ए नवदीप सन ते शायद हर घरेलू महिला दा प्रतिनिध करदिआं होइआं अपनी मजबूरी दस रहे सन, इन्हां वांग बेहद व्यस्त महिलावां दे लई विनोद जी तुसीं की कहना चाहोगे?
0: देखो ये गल तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लेडीज़ नूं डबल काम करना पैंदा, बंदा जे काम करके जब दोनों जने इकट्ठे बाहर जाना ना तो बंदा तो आके बैठ जाता जा टीवी देखने लग पैंदा जो रिलैक्स रहिंदा, लेकिन लेडी नूं किचन में भी काम करना पैंदा, घर की मेंटेनेंस भी करनी पैंदी है ना, तो उहदे विच इह हैगा भी उहनूं थोड़ा जिहा टाइम जिस तरह अं पानी पीण नूं जां खाणा खाण नूं टाइम लाउंदे आ, उह जे शव आसन भी कर लवे ना 3 to 15 minutes दे विचकार टाइम हुंदा उहदा, सीधे लेट जाणा आराम नाल बिल्कुल शरीर नूं शीतल कर देना रिलैक्स कर देना और उहदे नाल बॉडी बॉडी जिहड़ी साडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाती, माइंड रिलैक्स होता, उन्होंने इस तरह लगता घंटिया की जी नींद है ना मिनटों पूरी हो जाती, ज़्यादा सौण की लड़ नहीं पैंती, थोड़े समय में ही जी शक्ति वापस आ जाती कम करने की। और दूसरी गल ये हैगी कि जो लेडी अपना अजक मैं देखता पहले आज़ादी तो पहला लोग सोचते सके भी लेडी जो योग वास्ते नहीं है, योग उन्होंने वास्ते नहीं बनया, वैसे 2-4% लेडीज़ कर दी फिर जंगलों में जिशि करते जे बहर चल जाते घर बार छड़ के, लेकिन हूँ ये कंसैप्ट चेंज हो गया, हूँ ईवन जिम में भी लोग योग कर जाते, सिर्फ योग करने वास्ते जिम ज्वाइन करते, इदा के लोग भी मैं देखा, मैं खुद कई जिम में योग करवादा रहा तो वो सिर्फ योग करते और चले जाते बस, वो अज की डेट च लेडीज जिहड़ियां 99% लेडीज की पार्टीसिपेशन है, जेंट्स सगों अपने आप सोचते भी अं तो चलो साड़ी बार भी मूवमेंट हो जाती है, लेकिन लेडीज जिहड़ी है उन्हां दा वर्कलोड ज़्यादा होने करके उन्होंने योग बहुत ज़्यादा जरूरी है।
1: हुण गर्मी दे मौसम दे विच या फिर कोई भी मौसम होवे कोई भी स्थिति होवे जो मजदूर ने ना वो लगातार लगे रहिंदे ने, बहुत उन्हां दी सख्त मेहनत हुंदी है, शरीरक जोर

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोला की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

भागदौड़ भरी भरी इस दुनिया में थोड़ा ठहरना भी ज़रूरी है। दूसरों को समझने से पहले खुद से मिलना भी ज़रूरी है। हम ढूंढते हैं खुशियां दूसरों की महफिलों और बातों में, जबकि सुकून का एक समंदर छुपा है हमारे ही भीतर की रातों में। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर अपने इरादे मत बदलो, जो दिल को सही लगे बस उसी राह पर मुस्कुरा कर चल दो। बिल्कुल, मुस्कुरांदे होए, हंसते होए, गाँदे होए तुसीं साडे इस प्रोग्राम हालो फरमाइश दे विच आउण दे लई हो गए हो तैयार। ते 081-8143-4173 नंबर भी कर रहा है तुहाडा इंतज़ार। ते तुहाडे सारयां नूं जी आयां नूं कहण लई मैं पूजा हांडा इस प्रोग्राम नूं लैके अज हाज़िर होई हां। ते बहुत मेरे वल्लों तुसीं कबूल करो प्यार भरी नमस्कार। ते मैं कर रही हां तुहाडा इंतज़ार, तुहाडियां फोन कॉल्स दा इंतज़ार, तुहाडियां फरमाइशां दा इंतज़ार। ते इस सिलसिले नूं शुरू करांगे, पर प्रोग्राम शुरुआत कर दिती है असी ब्लैकमेल फिल्म दे विचों लए किशोर कुमार दे गाए इस खूबसूरत गीत दे नाल।

0: गांव गहरा था बहुत, पर दिखता ना था। दिल भी बहुत दुखता था, पर कोई समझता ना था। बाद में सब कहते हैं कि मुझसे कह सकता था, पर जब जब कहना चाहा कोई सुनता ही ना था। जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया के विच बहुत अकेलापन है, बहुत तकलीफ़ा ने, पर उन तकलीफ़ा नू दूर कर सकते हैं एक छोटी जी कोशिश के नाल। जेकर असी एक दूजे का साथ देिए, किसी दियाँ प्रॉब्लम्स नू साडे हाथ विच, ये जरूरी नहीं है कि होवे कि असी उस दियाँ प्रॉब्लम्स का सल्यूशन दे सकीए, हल दे सकीए, पर कई बार किसी दी दुखां नू सुनना भी उसकी अद्धी समस्या का हल हो जाता है। सो कोशिश करिया करो किसी दे काम आउण दी, किसी दी मदद करन दी। असी कोशिश कीती है प्रोग्राम दे विच अगले कॉलर दे नाल गल करन दी। हैलो,
1: हैलो,
0: हां जी नमस्कार जी।
1: पूजा मैडम नमस्कार, सुखबीर सिंह शाजली बोलदा मैडम।
0: जी शाजली जी, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा प्रोग्राम दे विच।
1: शुक्रिया मैडम जी, बहुत वधिया शुरू च गाना बहुत सोहना लाया सी जी, वधिया प्रोग्राम दे रहे हो
0: जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ते मौसम दे की मिजाज ने?
1: मौसम मैम कल मी आ गया, अज फिर थोड़ी गर्मी है।
0: अज गर्मी है, कोई गल नहीं जी, थोड़े जे बदल जड़े आ, बदलबारी तो दसी हुई है ना, येलो अलर्ट भी जारी किया हुआ मौसम विभाग ने, तो कितने ना कितने बारिश होने के आसार तो बने हुए ने। थोड़े वाल भी जरूर होएगी, गीत दस दिओ कि सुनोगे।
1: बाकी मैं जलंधर तो साथ।

0: मिलाकर सभी से सादगी के साथ किरदार में इतनी बुलंदी तो शामिल कर, ये दौलत, ये काबिलियत, औदे की आकड़ यूं अपने साथ लेकर ना चला कर। मिट्टी का है तन, मिट्टी में मिल जाना तो खुद पर इतना गरूर ना किया कर। बिल्कुल सानू बिल्कुल गरूर नहीं है जी, असी तो तुहाडियां कॉल्स जदों आंदियां ने उदों ही प्रोग्राम दे विच शामिल कर लैंदे आ, बस तुसी नंबर मिलाना हुंदा है ते साडे इस प्रोग्राम दे विच अपनी फरमाइश दे नाल आउणा हुंदा है। अगले कॉलर आए ने, किहड़ी फरमाइश नाल आए ने आओ देखते हैं। हैलो, सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो?
1: जगतार सिंह गिल जी, पिंड पंगाला, जिला फाजिलका, तहसील अबोर। तो मैम
0: जी, गिल साहब की हाल चाल है?
1: बहुत वधिया मैम, बहुत ही वधिया। तुसी दसो मैम, ठीक हो?
0: साडा भी बहुत वधिया जी,
1: चलो शुक्र है परमात्मा दा
0: जी। बिल्कुल परमात्मा दा शुकराना। ते गीत दसो हुन केड़ा सुनोगे?
1: गीत मैम आशकी दे जो मर्जी सुना दे मैम। अज राती साडे मीह वाहवा पै गया सी। हांजी,
0: अच्छा ही, फिर मौसम ठंडा होना हुंदा है।
1: हां जी हां, ठंडा हो रहा।
0: चलो इस मौसम नु तुसी एंजॉय करो अपनी पसंद दे गीत दे नाल। शुक्रिया कॉल करन दे लई जी,
1: सत श्री अकाल।
0: सत श्री अकाल जी।

लता मंगेशकर दे गाए महबूब की मेहंदी फिल्म दे विच लए इस गीत दे नाल ही मैनू पूजा हांडा नू अज दा प्रोग्राम हैलो फरमाइश हुण इत्थे ही खत्म करन दी इजाजत दे दिओ। आकाशवाणी दे अलग अलग सिलसिलें दे नाल तुसी इदां ही बने रहना, अपना ख्याल रखना, हसते रहो, वसते रहो, जिंदगी नू मानदे रहो। जिंदगी जिंदाबाद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इसका उद्देश्य इन दोनों यूरोपीय देशों के साथ भारत की साझेदारी को और प्रगाढ़ करना है। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री कल फ्रांस के नीस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। श्री मोदी दक्षिण फ्रांस में भारतीय समुदाय से भी भेंट करेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी स्लोवाकिया जाएंगे। वे स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ आपसी सहयोग पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी 16 और 17 जून को फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में 21 जून को नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमरीकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन ने रूस से तेल खरीदने के भारत के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों की निर्धारित मूल्य सीमा का पालन किया है। फिनलैंड में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि ये मूल्य सीमा वैश्विक तेल आपूर्ति को बनाए रखने और रूस के मुनाफे को सीमित करने के लिए बनाई गई थी। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया है। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार 5वें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल में ये 3.48% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 3.53% रही है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुईं। लॉस एंजल्स में फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका ने पैराग्वे को 4-1 से हरा दिया। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को 21-6, 21-9 से मात दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दिन के 11:05 वज रहे हैं, समा हो रहा है, लाओ सुनो।

जी अगली फरमाइश सानू आई है जी, चकला बाजार समाना शहर तो। ते फरमाइश भेजन वाले ने पप्पू राजा खुश दिल, संगीता राणी जिंदल, पप्पू स्माइल खुश दिल, हसमुख लाल जिंदल, संजीव सुनीता बंटी जिंदल, आरजू मह खुश दिल ते पूरा खुश दिल परिवार। इन्हां ने लिखा है जी, तुहाडा स्वागत असी फुल्लां दे नाल, गुलाब दे फुल्लां दे नाल करदे हां ते धन्नवाद करदे हां। इन्हां ने अपने मैसेज विच बहुत सारे दिल, फुल, मोर ते गुलाब के फुलों की भी फोटो भेजी है। सो अगली इन्होंने फरमाइश की है जी, हंसराज हंस के गाए हुए गीत को सुनने की। तो अगली फरमाइश सानू आई है जी, पिंड बुरज मानसा नेड़े मौड़ मंडी जिला बठिंडा तो। यह फरमाइश सानू भेजी है जी, राम सिंह तगड़, पिंदर कौर तगड़, कमलप्रीत सिंह तगड़, सुरिंदर जौड़ा नेड़े फाटक मौड़ मंडी तो। फरमाइश भेजी है जी, गुरजीत नंबरदार मानसा कलां, मलकीत मानसा कलां, गुरतेज कैंथ पिंड जलूर, मंगू राजस्थानी मौड़ मंडी ते तगड़ फैमिली सारी ने ही फरमाइश की है जी, हंस राज हंस दे गाए हुए गीत नू सुनन दी। ते अगली फरमाइश आई है जी, गिद्दड़ बाहा तो। ते भेजन वाले ने फरमाइश, मनजीत तनेजा, परवीन तनेजा, पायल तनेजा ते हिमांशा तनेजा। अगली फरमाइश सानू आई है जी, डोंडी लोहारा तो छत्तीसगढ़ तो। फिर भेजन वाले ने फरमाइश, देवंश तुमुरिया, अजय देव तमुरिया, तुषार तमुरिया, डॉली बेबी पूजा तमुरिया तो इलावा प्रभा देवी तमुरिया। अगली फरमाइश सानू आई है जी, मेन बाजार शेरपुरा थाना जिला संगरूर तो। भेजन वाले ने मिंटू सप्पल, प्रभजोत सप्पल ते मनजोत सप्पल, हंसराज हंस दे गाए हुए गीत नू फरमाइश।

परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ। ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਰਮਾ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਰਮਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम भारतीय स्टार्टअप्स को दुनिया भर से जोड़ेगा। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लो

0: स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि इससे यूरोपीय संघ के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। स्लोवाकिया यात्रा के बाद श्री मोदी फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G7 में भारत की उपस्थिति भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाती है। ये लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को पेरिस जाएंगे, जहां वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। पेरिस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: असम में भारतीय वायुसेना का एक AN-32 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। फिलहाल दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर मौजूद हैं और राहत बचाव कार्य जारी हैं। घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। मंत्रिमंडल सचिव TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में 21 जून को नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। प्रवर्तन निदेशालय ED ने आज पश्चिम बंगाल के नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता और आसपास के इलाकों में 7 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई तृणमूल कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा के ठिकानों से जुड़े परिसरों में की गई। निदेशालय के अनुसार कमरहाटी सहित विभिन्न नगर पालिकाओं में अयोग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति के बदले बिचौलियों के माध्यम से नकद और सोने के रूप में रिश्वत ली गई थी। एजेंसी का कहना है कि मदन मित्रा 125 से अधिक ऐसी अवैध नियुक्तियों से जुड़े हुए हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुईं। समारोह में 500 से अधिक पुरुष और महिला कैडेट्स ने भाग लिया। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार 5वें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25%, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 3.53% रही। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज धर्मशाला में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਦੇ 12:05 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਦੇ ਵੇੜੇ।

0: सारा देश है।
1: एल्बिनिज्म डे द थीम है प्राउडली इज माई स्किन सेलिब्रेटिंग ऑल स्किन प्रॉब्लम्स। 2026 द थीम है ते की सुनेहा दियोगे।
0: सुनेहा, मैं ये देना चाहना कि एल्बिनिज्म ना होन वाले बच्चे जिहड़े हैगे उन्हां नूं ये सोशल स्टिग्मा तो आपां बाहर कढ़ीए। सब तो पहला उन्हां दे सब तो पहला दोस्त बनिए, उन्हां नूं अपने नाल अपने वांगो ही समझिए, ये सब तो ज़्यादा जरूरी है।
1: पर बच्चे खेलना नहीं पसंद करते, होर बच्चों के जो पेरेंट्स ने कहते नहीं नहीं नहीं उसको ये बीमारी है वो नाल नहीं खेलना, इदा दल करते हैं ना।
0: देखो पहली गल, ये तो आदमी नूं अपने मन तो सोचना चाहिए, अपने आप नूं करेक्ट करना चाहिए कि ये चीज़ा जड़ी हैगियाँ ये दुनिया च है। एल्बिनिज़म दा एक स्पेशल चाइल्ड है, एक स्पेशल चाइल्ड है, तो स्पेशल क्वालिटीज़ भी है और रब ने बना के दिता है उन्होंने, तो आप उन्होंने कदे ये चीज़ नहीं कर सकते। पहली गल तो मैंटली जोड़े लोग है उन्होंने ये चीज़ समझनी चाहिए है, अवेयरनेस होनी चाहिए है कि ये चीज़ा जड़ी हैगियाँ की हो गया। एल्बिनिज़म का बच्चा है कोई गल नहीं, साढ़े वांगो ही है, हाथ पैर है, बोलता है, सब करता है,
1: क्योंकि
0: तो
1: हुनर तो हर एक बच्चे च हुंदा है ना।
0: हाँ
1: हाँ
0: हुनर हर बच्चे च होंगे। उन्होंने आप स्पेशल चाइल्ड क्यों, आप एज अ नॉर्मल चाइल्ड समझा, उन्होंने
1: बिल्कुल,
0: प्यार ज़्यादा देवे।
1: ता ही एक बीमारी भी दूर होएगी और ये जिहड़ी चमड़ी दी प्रॉब्लम है बच्चे वास्ते एक है कि उन्हों लगेगा नहीं कि वो फिर महसूस नहीं करेगा कि हाँ भी सर मैं भी नॉर्मल हाँ, मैं भी होर बच्चे ना खेड सकता हाँ, काम कर सकता हाँ, अगे वध सकता
0: बच्चा
1: हाँ।
0: आगे कदे डिप्रेशन च ही नहीं जाऊगा, बच्चा कदे अपने नूं अलग तो नहीं रखूगा, जब वो सारे दे विच मिक्स होगा तो जरूर उन्होंने चंगा लगेगा। ये विच मैं यही कहना चाहना, बस सोशल स्टिग्मा जिहड़ा है वो साडे इंडिया दे विच बहुत कॉमन है, सानू इहदे च कम करना चाहिए है। लोगों की जिहड़ी सोच है उन्होंने अपनी बदलनी चाहिए है, चाहे वो एल्बिनिज़म हो, चाहे फुलवेरी हो, कोई भी बीमारी हो, उन्होंने आपां क्यों वक्खरा सोचते हैं, आपां उन्होंने क्यों इस तरह का ट्रीट करते हैं,
1: सारा
0: माइंड सैट
1: देखते
0: आपां
1: हैं
0: ठीक करना है।
1: हुण विज्ञान ने इन्नी तरक्की कर ली है कि हर बीमारी बारे हर कोई जानता है, और जेकर किसी नूं एल्बिनिज़म है चमड़ी दी बीमारी है तो दूर नसन की बजाय उस दा इलाज करवाना चाहिए है। डॉक्टर करण छाबड़ा जी, तुसी सानू एल्बिनिज़म डे ते जानकारी दित्ती, जानकारी देने लिए थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
1: असीं गल्लां बातां सांझियां कर रहे से डॉक्टर करण छाबड़ा जी नाल, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट ने, हेड ऑफ डिपार्टमेंट स्किन प्रॉब्लम्स पिम्स जलंधर।
2: जी हुणे साडे श्रोते सुन रहे सन अंतरराष्ट्रीय एल्बुनिज़म दिवस इस विषय ते विशेष जानकारी दे रहे सन डॉक्टर करण छाबड़ा ते इन्हां नाल गलबात कर रहे सन सुखप्रीत कौर।
3: वाकई जी बहुत ही वधिया जानकारी डॉक्टर साहब ने सानू दित्ती, और जागरूकता पैदा करन लई ही ये दिन जिहड़ा है मनाया जाता है।
2: जी, और जिहड़ियां गल्लां डॉक्टर साहब ने, जिहड़ियां जानकारियां विशेष डॉक्टर साहब ने सांझियां कीतियां ने, सानू पूरी उम्मीद है जी साडे श्रोते इस तों जरूर लाह लैणगे।
3: बिल्कुल, और प्रीति अज दिन है शनिवार का, तो साडा बहुत ही खास सिलसिला हुंदा है जिसकी साडे श्रोते बड़ी बेसब्री दे नाल इंतज़ार भी करते हैं। चलांगे उस सिलसिले वाल, पहला एक छोटा जिहा अंतराल लै लैंदे हां।
4: सत श्री अकाल पंजाबियो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वालों सहभागी न्याय ते कर कर न्याय लई एक इतिहासिक पहल की गई है, जिथे मिलेगा तुहाडे केस नूं तुरंत सम्मानजनक हल। हिस्सा बनो समाधान समारोह 2026 दा 21-22 ते 23 अगस्त नूं सुप्रीम कोर्ट विच विशेष लोक अदालत लग रही है।
5: पर की उसदे लई मैनूं दिल्ली जाना पएगा?
4: जरूरी नहीं, तुसी ऑनलाइन भी जुड़ सकते हो।
5: अप्लाई किवें करिए?
4: सुप्रीम कोर्ट दी वैबसाइट www.sei.gov.in ते गूगल फॉर्म राहीं बेनती भेजो। याद रखो आखिरी तारीख 31 मई 2026 है। सहायता लई 011-2311-2428 ते संपर्क करो।
5: समाधान समारोह 2026 आपसी सहमत ते पक्का निपटारा।
6: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
3: जी, इन्हां संदेशों तो बाद एक बार फिर तो असीं हाजिर हो गए हाँ, और प्रोग्राम चल रहा है वसदे वेड़े, और सिलसिला हुण सुनावांगे श्रोतियां नूं
2: झांजरां दे बोर।
3: और झांजरां दे बोर दे विच बहुत सारिया साडे को प्रीति फरमाइशां आईयां होईयां ने, और कुछ फरमाइशां इहो जिहियां भी ने जिहड़े कहिंदे जी सानूं कोई भी गीत सुना दिओ। ते उहनां दी फरमाइशां च पढ़दे हां, गिद्दड़बाहा तों आए ने मनजीत तनेजा, प्रवीण तनेजा, पायल हिनाशा ते बेबी कैरवी। पटेल नगर मलोट तों इह खत आया है जी डॉक्टर रमेश कुमार जजौरिया, गीता राणी जजौरिया, गगनदीप।

0: ते बेबी आरसू जचौरिया, पिंड गोविंदगढ़ माझी वाला श्री करनपुर तो अमृत वड़वाल ते सहज दीप वड़वाल हुनां ने सानू खत लिख के भेजा है जी।
1: जी ये सारे सुनना चाहते हैं जी। बब्बू मान होना दी आवाज़ दे विच गीत ते मेरे कोल भी कुछ खत ने ते शामिल कर रहे हैं। फाजिलका तो अपनी फरमाइश भेज रहे हैं जी। विनोद काटपाल, परवीन काटपाल, हनी काटपाल, दीक्षा काटपाल, जन्नत काटपाल, दीपा काटपाल ते बलकार खोखर ते ऐसे गीत ने सुनना चाहते ने। लुधियाना तो अपनी फरमाइश भेज रहे ने पुरानी मंडी मुल्लापुर तो रजेश जैन, अरुणा जैन, गौतम जैन, रसगुल्ला जैन ते नगीना जैन। कनेरा मोहल्ला पटियाला तो मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन बत्ता, पलक बत्ता, करण बत्ता, गीतू बत्ता, निहारिका, हार्दिक ते वंश बत्ता ते ऐसे गीत की फरमाइश पिंड पक्की खुर्द तो सतनाम सिंह गिल, गुरिंदर गिल, गुरलीन ते सारा गिल परिवार। आओ जी सारिया की रली मिली फरमाइश ते सुनदे हां झांझरा दे बोर दी ए पहली पेशकश।

0: जी, श्रोते सुन रहे ने अपने मनपसंद गीत, और अगली फरमाइश जी है वो आई है जी एमी विर्क दे गाए गीत ले, पिंड बुरज हनुमानगढ़ फाजिलका तो, अमन वर्मा, रमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, डॉक्टर मदन लाल वर्मा ते पूरा वर्मा परिवार, मलोट कैंप तो सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाटी, विवान लखविंदर संधु, महावीर संधु, गुरचरण गरोवर ते रमेश मिगलानी।
1: ते जी इसे गीत की फरमाइश योगनगर तो भेज रहे ने नरिंदर मेहता, वरिंदर मेहता, गिरिराज मेहता, सिमरन मेहता ते हनी मेहता, कोटली कलां पंजाब तो यादविंदर सिंह, सुखविंदर सिंह, रविंदर सिंह, मनजीत सिंह ते गुरजोत सिंह। ते मलोट तो फरमाइश भेजी है जी जगतार गिल, गैवी गिल ते अमनदीप गिल होना ने। आओ जी इन्हां सारयां दी रली मिली फरमाइश ते सुनदे हां एक गीत।

0: जी दिल दा तेरे पता नहीं मैं तो मुखड़ा देख के मर गया।
1: और
0: नहीं।
1: प्रीति अजकल मौसम दा भी पता नहीं चलता जी।
0: जी जी जी बिल्कुल पर सानू सावधान होने की लोड़ है जी, और अपने जड़ा है साढ़े खान पीन दा परिवर्तन जड़ा है वो जरूर रखो, और मौसम दे अनुसार खाओ पियो, और नाल ही नाल मौसम दे नाल नाल ये भी बहुत लाजमी है कि जड़े मौसमी जड़े फल ने सब्जियां ने उन्हां दा सेवन किया जाए और बेहा भोजन जड़ा है उस तो गुरेज किया जाए।
1: और कुछ भी तुसीं बाजार तो खरीद के लैके आने चाहे सब्जियां है फल है सब तो पहला उन्होंने चंगी तरह सादे पानी ना साफ पानी ना धोवो जरूर।
0: बिल्कुल जी। और जेकर तुसीं अपनी पसंद दा कोई गीत सुनना चाहते हो तो फिर सानू पता असीं दस दईए।
1: बिल्कुल जी साडे स्रोतियां नू साडा पता भी है लेकिन जिहड़े नवे स्रोते जुड़े ने उन्हां नू पता दस दिंदे आ। इंचार्ज प्रोग्राम वास्ते विड़े मार्फत स्टेशन डायरैक्टर आकाशवाणी जलंधर पिन कोड 1440001
0: ते सानू तुहाडे खतां दा तुहाडे सुझाव दा इंतजार रहेगा। और हमेशा खुश रहो मुस्कुराते रहो ढेर सारियां दुआवां दे नाल अज दा वास्ते विड़े प्रोग्राम खत्म करन दी मैनू गुरप्रीत नू
1: मैनू ज्योति नू दियो जी इजाजत।
0: नमस्कार।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਦੇ ਵਿਹੜੇ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਰਮਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम भारतीय स्टार्टअप्स को दुनिया भर से जोड़ेगा। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि इससे यूरोपीय संघ के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। स्लोवाकिया यात्रा के बाद श्री मोदी फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G7 में भारत की उपस्थिति भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाती है। ये लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को पेरिस जाएंगे, जहां वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे।

0: पेरिस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडिगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है। समारोह में Sukhoi-30, MKI, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। उधर भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पासिंग आउट परेड की सलामी ली। मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में 21 जून को नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। प्रवर्तन निदेशालय ED ने आज पश्चिम बंगाल के नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता और आसपास के इलाकों में 7 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई तृणमूल कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा के ठिकानों से जुड़े परिसरों में की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज धर्मशाला में खेला जाएगा। ये मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। आहुन तुहानू साडे दिन विच प्रसारित कीते जाण वाले बाकी दे रहिंदे प्रोग्राम्स ते उहनां दा प्रसारण समां दस दईए।

रात 7:10 ते साढ़े दिल्ली केंद्र तो प्रसारित किए जाने वाले विशेष प्रोग्राम तहत अज तुसी पूर्वोत्तर राज के विकास से आधारित प्रोग्राम अष्टलक्ष्मी ते उत्तर पूर्वी राज के सूचना ते विकास मंत्री ज्योति राय सिंधिया दा कीती मुलाकात सुनोगे। साहित्य सुदेव प्रोग्राम सुनोगे रात 7:45 ते इस प्रोग्राम दा अज विषय होएगा संस्कृत विच ग्रीष्म ऋतु का वर्णन। गलबात करेंगे डॉक्टर विशाल भारद्वाज। स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम सुनोगे लम्हे रात 7:55 ते रात 8:05 ते सुनोगे प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। रात 8:15 सुर संहिता दे विच मधुमोहन मेहमान होंगे। रात 10:00 संगीत का अखिल भारतीय प्रोग्राम होएगा। अज इस प्रोग्राम में US प्रसाद का कटनिक शैली सैक्सोफोन का वादन सुनवाया जाएगा। समाचार ते मुख समाचार अपने पूरे निथे समय से वारोवार प्रसारित किए जाएंगे। ये सन साढ़े अज पूरे दिन विच प्रसारित किए जाने वाले बाकी तरह के प्रोग्राम्स ते उन्हां दा प्रसारण समां।

इस गीत तो बाद आओ सुनते हैं अगला फिल्मी गीत, फिल्म लवर्स विचों लिया गया, आवाजा लता मंगेशकर ते अमित कुमार दियां।

0: गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक।

0: में फजाइया की अकेडमी में 217वीं मुश्तरका ग्रेजुएशन परेड में शामिल अफसरों से खिताब करते हुए कही।
1: राडार, सैटेलाइट, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसे अनेक सिस्टम्स आज के युद्ध में डिप्लॉय हैं, जिनमें न तो फाइटर का पता चलता है न उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट का। और आज वारफेयर की डेफिनेशन काफी हद तक बदल चुकी है। मुझे विश्वास है कि आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और एक्सरसाइजेस में आपको अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस का सामना करने के लिए अच्छी तरह तैयार किया गया है।
0: भारत ने अमरीकी बहरिया के जरिए खलीज में किए गए उन हमलों पर सख्त एहतजाज दर्ज किया है, जिनमें तीन भारत

0: आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और एक्सरसाइजेज में आपको अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस का सामना करने के लिए अच्छी तरह तैयार किया गया है।
1: भारत ने अमरीकी बहरिया के जरिए खलीज में किए गए उन हमलों पर सख्त एहतजाज दर्ज किया है जिनमें 3 भारतीय अमले की मौत हो गई थी। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो से बात की और कहा कि तजारती बहरी जहाजों पर इस तरह की जानलेवा कार्रवाइयों को सही नहीं ठहराया जा सकता। ओमान साहिल के करीब पलाव के झंडे वाले टैंकर माउंट सेटेबेलो पर अमरीकी हमले में अमले के 3 भारतीय अराकीन की मौत के कुछ दिनों बाद ये बातचीत हुई है और नई दिल्ली के सख्त रद्देअमल की वजह बने हैं। उमूर खारिजा की वजारत ने आज बताया कि बहरी जहाज लियाकी फ्रीडम में भारतीय जहाजरानों की मौत की खबर सही नहीं है। वजारत ने बताया कि उसने लियाकी फ्रीडम बहरी जहाज के मास्टर से बात की है जिन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि अमले के सभी अरकान महफूज हैं। एमईए के हकाइक का पता लगाने से मुतालिक महकमे ने अवाम पर जोर दिया है कि वो सोशल मीडिया पर फराहम करदा इस तरह के झूठे और बेबुनियाद दावों और पोस्ट के खिलाफ होशियार रहें। आज सुबह आसाम में फजाइया के जोरहाट स्टेशन पर भारतीय फजाइया का एक AN-32 तैयारा हादसे का शिकार हो गया। भारतीय फजाइया ने बताया है कि हादसे की वजूहात का पता लगाने के लिए छानबीन की जा रही है। अवामी जमहूरिया कांगो में इबोला में मुबतला 689 अफराद की तस्दीक हुई है जिनमें 139 अमवात भी शामिल हैं। सेहत से वाबस्ता अहलकारों के मुताबिक इतूरी सूबे से 17 नए केसों और मजीद 5 अमवात की तस्दीक हुई है। हुकाम ने दवाओं की फराहमी में किल्लत, इलाज मुआलजे की महदूद सहूलियात और 2,15,00,000 डॉलर की रकम की कमी पर तशवीश का इजहार किया है। और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के 6 रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि उनके इस दौरे से फ्रांस के साथ इक्तिसादी और सकाफती रिश्तों को तकवीत मिलेगी और स्लोवाकिया के साथ बाहमी ताल्लुकात मुस्तहकम होंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी फ्रांस के एवियों में ग्रुप 7 की छोटी मीटिंग में भी शिरकत करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों का खैर मकदम किया और कहा कि पहली बार 9 खातून कैडेटों के इस परेड में शामिल होने से जाहिर हो जाता है कि भारत खवातीन की जेरे क़यादत तरक्की की राह पर गामजन है। भारत ने खलीजी खित्ते में एक तेल बरदार बहरी जहाज पर अमरीका की बहरिया की कार्रवाई पर सख्त एहतजाज किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਲੈ ਕੇ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਗੀਤ। ਫਿਲਮ ਸੱਤੇ ਪੇ ਸੱਤਾ ਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਐਨੀ ਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਦੇ 2:15 ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਰਮਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे, स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। भारत ने खाड़ी क्षेत्र में तेल पोत पर अमरीकी नौसेना के हमले का कड़ा विरोध किया। हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई थी। वायुसेना का AN-32 विमान असम के जोरहाट स्टेशन पर दुर्घटनाग्रस्त। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। नीस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों

0: बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया,
1: वहाँ ये स्पष्ट सोच है कि फ्रांस जैसी महत्वपूर्ण साझेदारियाँ जिनके साथ भारत की एक विशेष वैश्विक रणनीतिक भागीदारी है, केवल सरकारों के स्तर पर नहीं बल्कि लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित होनी चाहिए।
0: राजदूत सिंघला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
2: यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
3: ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि यह यात्रा यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी, जिसमें स्लोवाकिया एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान भागीदार है। स्लोवाकिया यात्रा के बाद प्रधानमंत्री फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 में भारत की मौजूदगी दुनिया में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उसके प्रति देशों के विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि यह लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पेरिस में आयोजित वाइवा टेक 2026 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ शामिल होंगे। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: स्लोवाकिया में भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अंतिम रूप लेने से भारत और स्लोवाकिया के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश रक्षा क्षेत्र में संयुक्त उत्पादन और शोध को बढ़ावा देने के इच्छुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेट को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: आईएमएस स्थित ऐतिहासिक चेटवुड भवन के समक्ष आयोजित परेड ग्राउंड में कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। इनमें 34 कैडेट मित्र राष्ट्रों से हैं, जो प्रशिक्षण पूरा कर अब अपने अपने देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। परेड का निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विंग ऑफिसर के रूप में किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा,
5: इन एन एरा ऑफ रैपिडली चेंजिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड कॉम्प्लेक्स ग्लोबल इन्वायरमेंट्स, द इंडियन आर्मी मस्ट रिमेन अडॉप्टिव एंड फ्यूचर रेडी। आई आर्ज यू टू बी लाइफ लॉन्ग लीडर, लर्नर्स, कोरेजस डिसीजन मेकर्स एंड एथिकल लीडर्स।
4: पासिंग आउट में प्रशिक्षण अवधि के दौरान समग्र उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित सॉर्ड ऑफ ऑनर विशाल कुमार को प्रदान किया गया। ऑर्डर ऑफ मेरिट में भी ऑफिसर कैडेट विशाल कुमार प्रथम स्थान पर रहे, प्रिंस राज दूसरे स्थान पर रहे, जबकि तेजस भट्ट ने तीसरा स्थान हासिल किया। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है।
6: रडार, सैटेलाइट, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसे अनेक सिस्टम आज के युद्ध में डिप्लॉय है, जिनमें ना तो फाइटर का पता चलता है ना उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट का। तो अब तो ऐसे सिनेरियो भी सामने आ रहे हैं जहां पूरी तरह से अपने एडवर्सरी के ट्रैफिक सिस्टम और सीसीटीवी तक को कंट्रोल कर लिया।

0: जा रहा है और आज वारफेयर की डेफिनेशन काफी हद तक बदल चुकी है।
1: समारोह में सुखोई 30, एमकेआई, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। रक्षा मंत्री ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकीय बदलावों को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने आयोग को सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। बैठक में गृह मंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा। केंद्र सरकार ने पिछले महीने अवैध प्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने तथा उनसे निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। एक रिपोर्ट।
2: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को लिए जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
1: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि भारत के शहरों को आर्थिक रूप से मजबूत, पर्यावरण के अनुकूल, सामाजिक रूप से समावेशी, तकनीक आधारित और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान ने देश में शहरी विकास को दिशा देने और शहरों की क्षमताओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार 5वें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल में ये 3.48% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 3.53% रही। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं।
3: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। हालांकि ईरान ने कहा है कि वो तब तक स्थायी समझौता नहीं करेगा जब तक अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाता और अरबों डॉलर की फ्रीज की गई परिसंपत्तियों के नुकसान की भरपाई नहीं करता। इस बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में चल रही गुप्त वार्ता में अमरीकी और पाकिस्तानी मध्यस्थों ने पुष्टि की है कि दोनों पक्ष शांति समझौते के मसौदे पर सहमत हो गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: इस बीच ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए तेहरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़ी बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ये स्पष्टीकरण तब आया है जब ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टुनेन ने रूस से तेल खरीदने के भारत के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने

0: पश्चिमी देशों की निर्धारित मूल्य सीमा का पालन किया है। फिनलैंड में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि ये मूल्य सीमा वैश्विक तेल आपूर्ति को बनाए रखने और रूस के मुनाफे को सीमित करने के लिए बनाई गई थी। नीति आयोग और जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल के बीच नई दिल्ली में भारत जर्मनी विकास सहयोग को मजबूत करने के लिए एक बैठक हुई। बैठक में स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ विकास, कृषि सुधार, जल प्रबंधन और हरित अर्थव्यवस्था में छोटे और मध्यम उद्यमों की भागीदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बन गए हैं। ये उपलब्धि उनकी कंपनी स्पेस एक्स के शेयर बाजार में शानदार शुरुआत के बाद हासिल हुई है। स्पेस एक्स के शेयरों का मूल्यांकन बढ़कर लगभग 2,10,000 करोड़ डॉलर हो गया है। कारोबार के पहले दिन स्पेस एक्स के शेयरों में 19% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऑस्ट्रेलियाई बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत की दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। सिडनी में जापान की अकाने यामागुची ने सिंधु को पराजित किया। इसके साथ ही प्रतियोगिता में भारत का सफर समाप्त हो गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित था, लेकिन तेज बारिश के कारण टॉस अभी नहीं हो पाया है। ये मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाना है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी आज रात गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे। स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दिन दे 2:30 वाले वज रहे ने। समा हो रहा आओ सुनते हैं प्रोग्राम रंगली धरती। अज इस प्रोग्राम च तुसी अमनदीप कौर दे गाए कुछ लोक गीत सुनोगे। ते लो सुनो प्रोग्राम दा पहला लोक गीत अमनदीप कौर दी आवाज़ विच।

3:03 हो रहे ने ते समा हो रहा साडे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां दा ते अज दा प्रोग्राम लैके हाजिर आ तुहाडी खिदमत दे विच शोभा खई तुहाडी होस्ट ते दोस्त ते कबूल करो दोस्तों प्यार भरे नमस्कार सत श्री अकाल ते सलाम ते असी अपने दोस्तां नूं यही दसना चाहुंदे आ कि अज दा जिहड़ा मौसम है सारिआं नूं पता लग गया कि ठंडा हो गया है सवेरे सवेरे बारिश सी राती बारिश सीगी जिन्ना तापमान तेज़ चल रहा सीगा उहदे च कुछ राहत मिली है गर्मी तो राहत मिली है ते जिहड़े पर सवेर तो बारिश हो रही सी 11-12 बजे तक तो बारिश हुंदी रही पर हुण थोड़ी जिही धुप निकली हुई है पर 14 तरीक तक जिहड़ा येलो अलर्ट हैगा कि आंधी तूफान आ सकदा ते बारिश भी हो सकती है बारिश तो चलो ठीक है क्योंकि उहदे नाल साडा तापमान घटेगा ते जिहड़ी गर्मी बहुत ज़्यादा तपश हो रही है लू वग रही है तो उस तो सानू जिहड़ी उह राहत मिलेगी ते दोस्तों कहिंदे आ जी हवा दे गीत सुनदा हाँ ते पत्ते ताल दिंदे ने हवा दे गीत सुनदा हाँ तो पत्ते ताल दिंदे ने उहदे बोल ने ऐसे जो दीवा बाल दिंदे हन ते दोस्तों ये वर्ड राज कौर दे लिखे हुए है लेकिन इहदे दा मतलब यही है कि प्यार स्नेह इन्ना होना चाहीदा है कि तुहाडे बोल इदां दे होने चाहीदे है कि जिहड़े दीवे भी बाल दैन एक अच्छी वर्डिंग दे नाल प्रोग्राम दा शुरुआत करदे आ कि इसे तरह ही प्यार स्नेह जिहड़ा साडा चलदा रहना चाहीदा ते मौसम दा बदलाव जिहड़ा हैगा उह इह आ कि इन्ना क बारिश होवे कि मौसम ठंडा हो जाए तापमान घटे लेकिन इन्ना विच ही मीह नेरी झक्खड़ नहीं आना चाहीदा तां कि कोई नुकसान ना होवे ते इन्हां गल्लां दे नाल ही असी चिट्ठियां दा सिलसिला भी शुरू करना है ते पहली चिट्ठी असी लै लैंदे हां जी बहुत ही सुंदर अक्खरां दे विच लिखी हुई है पिंड इस्लाम वाला जिला फाजिलका तो एक एक अक्षर इन्होंने बड़ा ही सोहने तरीके दे नाल सजा सजा के लिखा है बिल्कुल खुला खुला लिखा है सोहना सोहना लिखा है ताकि उन्हों का जिहड़ा हर अक्षर है पढ़िया जाए तो ये लिखण वाले हैं जी सोहन लाल राठी ओम प्रकाश राठी शगन लाल राठी छत्रपाल सिंह कंगूड़ा रजिंदर सिंह खंगूड़ा बाब सिंह मैने वाला काका पट्टी गुरमेज सिंह विरक ते पिंड कमाल वाला रणजीत कौर पट्टी बोड़ सिंह ते पट्टी साड़ी चिट्ठी जरूर पढ़ना जी लिखिया इन्होंने बहुत सोहना सोहना होया तो इन्ह दियां चिट्ठियां साडे कोल दो आईयां हुई दोनों के उत्ते सेम नाम है तो बहुत ही सोहने तरीके नाल लिखिया है लेकिन फर्क सिर्फ इन्ना वे एक इन्होंने ड्रॉइंग जिहड़ी कीती ना कबूतर दी वो बाकमाल है ते एक कबूतर इन्होंने बनाया कि वह बैठा होया तो मूँह च चिट्ठी इन्होंने पाती तो दूजी चिट्ठी तो इन्होंने जिहड़ा कबूतर उड़दा दिखाया भी चिट्ठी लैके साडे कोल आ रहा है बहुत बहुत शुक्रिया जी तुहाडियां चिट्ठियां साडे कोल दोनों पहुँच चुकिया है तो तुहाडी फरमाइश भी पहुँच चुकी है खत लिखण लई बहुत बहुत शुक्रिया तो इस तरह की प्यारी प्यारी ड्रॉइंग तो सोहनिया सोहनिया गल्लां और अच्छी लिखाई दे विच जिहड़ा लिखदे बहुत ही वधिया लगता है तो उस तो अगे साडे कोल इक होर चिट्ठी है जी कनेरा मोहल्ला पटियाला तो मुकेश बत्ता नीलम बत्ता नितिन बत्ता पलक बत्ता करण बत्ता गीतू बत्ता नहारिका हार्दिक ते वंश बत्ता इन्होंने कहा कोई भी गीत सुना दो चलो प्रोग्राम की शुरुआत करते हाँ एक प्यारे जे गीत दे नाल एक गीत है जी हरभजन मान जी की आवाज़ दे विच

0: Years ago, maybe 5,000 years ago, today Yogasana is ready to take the next leap forward. And it's unique. It combines strength with grace, flexibility with discipline, focus with endurance, competition with consciousness. This is perhaps the only sport where winning is also about inner balance. Let's rise for Yogasana and inspire humanity. Let India once again lead the world, not only in technology and economy, but also in wellness, balance, and human potential. Welcome to the first World Championship for Yogasana Sport to be held at Ahmedabad at the Eka Arena. We welcome all of you. Thank you. Jai Hind.
1: International champion jitan to baad Hitaas Meeda ki kehna si.
2: I have a 60 plus gold medalist. और मैं अभी रंगसागर परफॉर्मिंग आर्ट जो कि इंडिया से बाहर आउट ऑफ कंट्री में हमारी संस्कृति को प्रेजेंट करता है उसकी मैं एशियन ब्रांड एम्बेसडर हूँ और मैं योगासन की सीनियर प्लेयर हूँ. मैंने बहुत सारी इंटरनेशनल चैंपियनशिप खेली है, मलेशिया, सिंगापुर, यूरोप में प्राग, हांगकॉन्ग में, बट ये स्टेज कुछ और ही है. सच बताऊँ मतलब इससे अच्छा इंटरनेशनल चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं हुआ है. मैंने इतनी सारी चैंपियनशिप के लिए मेडल जीता है, स्कूल गेम नेशनल्स के लिए, सेवन्थ स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक कंटिन्यू नेशनल में रही हूँ और मेडल भी जीता है. वो बहुत कठिन बात है. अभी जो मैं देख रही हूँ कि गवर्नमेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी ने इतना बड़ा सपोर्ट किया है और श्री रामदेव बाबा भी इधर आए थे, तो उनके सपोर्ट और गवर्नमेंट के सपोर्ट से जो इतना बड़ा स्टेज हमें मिल रहा है, इतना बड़ा सिस्टम, सभी प्लेयर्स से, वॉलंटियर्स से लेकर प्लेयर्स को इतना बड़ा, मतलब छोटी छोटी चीज में भी बोलते हैं ना कि सब कुछ मिल रहा है. ऐसा नहीं है, कोई किसी को कंप्लेन नहीं है कि हमें ये नहीं मिल रहा है, वो टाइम टू टाइम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सब कुछ ही, मतलब किसी भी चीज की कमी नहीं है. तो ये सब देख के मुझे योगासन का ये जो फ्यूचर है लाइक क्रिकेट की तरह लग रहा है. इंडिया में एक आज तक एक ही गेम ज्यादा चलती रही है, वो है क्रिकेट. तो मुझे उसके जैसा फील आ रहा है योगासन में कि ये बहुत हमारा आगे जाएगा. और जैसे मोदी जी ने भी कमिटमेंट किया कि उसको कॉमनवेल्थ में ले रहे हैं, ये ओलंपिक में ले रहे हैं, तो मुझे तो लग रहा है कि योगासन कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है. और योग जो है वो हमारी भारत की संस्कृति है, हमने पूरे वर्ल्ड में उसको बांटा है. तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये जो योग है हमें सिर्फ एज अ स्पोर्ट्स तो हम ले ही रहे, पर हमें हमारे हेल्थ के लिए, हमारे जीवन में भी योग को उतारना चाहिए. कहना चाहती हूँ कि अगर आप योग करते तो योग को आप अपने जीवन में ऐसे उतारे कि एज अ स्पोर्ट्स नहीं, बट उसको आप अपने जीवन में ऐसे हेल्थ के लिए भी आप कर सकते हो और अपने दिनचर्या में उसको मिला सकते हो.
1: गोल्ड मेडलिस्ट हीना इस बारे कहती है,
3: ये जो एक्सपीरियंस है ये बहुत से, क्योंकि मेरा होम स्टेट है, क्योंकि मैं गुजरात से ही हूँ और मेरे होम स्टेट में वर्ल्ड चैंपियनशिप है, तो इससे ज्यादा खुशी के पल क्या हो सकते हैं. और मेरा इवेंट भी हो चुका है और मैंने गोल्ड जीता है अपने फॉरवर्ड बैंडिंग में. बहुत ही अच्छा लग रहा है. ये जो सारे एथलीट्स हैं बहुत ही अच्छी खासी तैयारी करके आए हैं और बहुत सारे मेडल्स उनको भी गए हैं, तो मुझे लग रहा है कि अगले आने वाले 5-10 साल में ये हमें बहुत अच्छा कंपटीशन देने वाले हैं. बट वैसे अगर योग की लैंग्वेज में बोलूँ तो वसुधैव कुटुंबकम और जो इंडिया है, जो भारत है, वो एक विश्व गुरु बनकर सामने आ रहा है. मैं खुद 10-12 साल से योगासना प्रैक्टिस कर रही हूँ और पिछले 7 साल से कॉम्पिटिशन खेलती हूँ और ऑलमोस्ट 4 साल से.
4: खेडा नू उत्साहित करन लई आकाशवाणी जलंधर दा शानदार उपराला प्रोग्राम खेड संसार गिरगिट वांग रंग बदल दी क्रिकेट दे भेद दसदा, हॉकी दी चलाकी दियां रमजां बयान करदा, खिडारियां दा जनून, मैदाना दा रोमांच, मैदाना च जित दी खुशी ते हार तो सबक लैण दी दिलचस्प कहानी तुहानू सुणाउंदा. प्रोग्राम खेड संसार हर मंगलवार रात 9:30 बजे सिर्फ आकाशवाणी जलंधर ते.
1: अहमदाबाद दे विच होए इस योगासना चैंपियनशिप नू लेके योगा कोच विकास महाजन दे की विचार ने.
5: सब तो पहला तो मैं गल करना चाहूंगा जेड़ा योग आसन दी जेड़ी चैंपियनशिप हुई है अहमदाबाद दे विच, वो एक भारत देश वास्ते बहुत बड़ी गल हैगी है. फर्स्ट टाइम ए एडा वड्डा

अब हम चली ठाकुर पहहार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु पावे मार। प्रभु दी शरण विच ही जीवन है, उस तो दूरी मानो आत्मिक मौत है। शरण समर्थ व्यक्ति दी ही हासिल कीती जांदी है। इस सृष्टि विच सर्व कला समर्थ केवल ते केवल अकाल पुरख प्रभु ही है। तांते फिर ए मन उस प्रभु दी टेक दी तांग रख। ऐसी अवस्था दी तारनी जीव रूपी स्त्री यही बेनती कर दी है। मैं मन तेरी टेक मेरे प्यारे, मैं मन तेरी टेक, अवर स्याणपा बिरथिया प्यारे, राखन कौ तुम एक। सरवण करदे हां भाई गोपाल सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया।

0: तेरी टेक मेरे प्यारे, मैं मन तेरी टेक, अवर स्याणपा बिरथिया प्यारे, राखन कौ तुम एक। इस शब्द का गायन किया सी भाई गोपाल सिंह ते उन्होंने रागी जत्थे ने। अकाल पुरख प्रभु ते अटल भरोसा रखण वाले गुरमुख जन केवल उसनू ही ऊट आसरा मनते हैं, किसी होर वल तकते भी नहीं। ते जेड़े उस परम पिता परमेश्वर तो बिना होरना आसरिया की तांग रखते ने, वो बिरहा दे विच दुख महसूस करते ने। उन्हां दी जीवन रूपी रात लमेरी हो जाती है। बिरहा दा असह कष्ट सहारदे होए एक दिन उन्हां नूं महसूस हुंदा है कि आस भरोसा परना आसरा केवल अकाल पुरख प्रभु दा ही होना चाहिदा है। बाबा फरीद जी एक श्लोक विच फरमाउंदे ने, फरीदा राती वड्डियां तुक तुक उठन पास, तिग तिना दा जीविया जिना विडाणी आस। सुनदिआं परविंदर सिंह होरां पासों ए वार्ता।
1: ए पावन पवित्र पंक्ति बाबा फरीद जी दी उचारण कीती होई गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे अंदर पन्ना नंबर 1378 उपर शुभायमान है। अकाल पुरख सर्व समर्थ है, सर्व व्यापक है, सब तक उस दी पहुँच है। वह हरेक दे दिल दी जानदा है, वह अपने प्यारियां दी देखभाल करदा है अते दुख सुख विच सहाई हुंदा है। इसलिए भगत जन प्रभु दी ओट विच उस दे आसरे विच पूर्ण विश्वास रखदे हन। वह आखदे हन, जो किछ करी सो तेरा ताण, तू मेरी ओट, तू है दीवान, तुन्नू छोड़ जाइए प्रभ कह तर, आन न बिया तेरी समसर। भगत कबीर जी का फरमान है कि प्रभु तो बिना माता पिता, पत्नी, धी पुत्र, ये सब छल रूप हैं, थोड़े समय वास्ते हैं, हमेशा साथ नहीं निभते। आप मलार राग विच फरमाते हैं, हर बिन कौन सहाई मन का,

मात पिता भाई सुत बंता हित लागो सब फन का। गुरु अर्जन देव जी श्री राग विच दर्ज शब्द विच दसते हन कि जिस मनुख नू कोई वड्डी बिपता आ पवे अते कोई मनुख भी उस नू सहारा ना देवे, वैरी उसदे मारू बन जान, उसदे रिश्तेदार भी उसका साथ छड़ जान, उसका हरेक किस्म का आसरा उसका साथ छड़ जाए, हरेक तरह का आसरा मुक जाए, अजिहे बिपता मारे मनुख दे हिरदे विच परमात्मा का नाम वस जाए तो उसका वाल भी विंगा नहीं होवेगा। आप जी का फरमान है, जा को मुश्किल अत बने टोई कोय ना दे, लागू होए दुश्मना साख भे भज खले, सबो भजे आसरा चूके सब असराओ, चित आवे उस पार ब्रह्म लगे ना तत्ती वाओ। बाकी शब्द विच भी ये दर्शाया है कि परमात्मा दी याद मनुख दा सब दुखां दर्दां तो छुटकारा करा देंदी है। गुरु अर्जन देव जी ने प्रैक्टिकली भी एक गल संगतां नूं समझाई सी कि वाहेगुरु ही सब तो वड्डा सहारा है। एक वार उन्हां दा भरा पृथ्वी चंद जिस नूं ये दुख सी कि वह गुरियाई प्राप्त नहीं कर सकिया, गुरु जी नूं धमकाउण लई सुलही खान नूं लै आया। लोकां विच डर फैल गया। गुरु जी नूं सलाहां दित्तियां गईयां कि सुलही खान नूं बेनती करन लई कोई दो मनुख भेजे जान, कोई चिट्ठी भेजी जाए जां फिर कोई होर यतन किता जाए ताकि सुलही खान तो बचाव हो सके। गुरु जी ने जवाब दिता कि मैं तां प्रभु नूं याद करदा हाँ जो साड़ी सब दी रक्षा करेगा। इस संबंध विच उन्हां एक शब्द उचारिया है जिस दा पहला पदा इस प्रकार है, प्रथमे मता जे पत्री चलावो, द्वितीय मता दोए मानुख पहुँचावो, तृतीय मता किच करो उपाया, मैं सब किच छोड़ प्रभ तू ही तिहाया। इतिहास गवाह है कि सुलही खान रस्ते विच पृथ्वी चंद दे पट्ठे ते घोड़े ते त्रबकण कारण अग विच डिग के मर गया सी। इस बारे भी गुरु ग्रंथ साहिब दे पन्ना 825 उत्ते शब्द अंकित है, सुलही ते नारायण राख, सुलही का हाथ कहीं ना पहुँचे, सुलही होए मुआ ना पाक। प्रभु प्यारियां दा यह पक्का विश्वास हुंदा है कि प्रभु सब कुछ करन वाला है, समर्थ है, उस वर्गा शक्तिशाली कोई होर नहीं। वह धरती पताल ते आसमान विच हर थां मौजूद है, इसलिए हर थां उसका ही जोर चलता है। सुखमनी साहिब दी 11वीं अष्टपदी दे श्लोक विच सतगुरु जी फरमाउंदे हन, करण कारण प्रभ एक है दूसर ना ही कोए, नानक तिस बलिहारणे जल थल महियल सोए। इस विश्वास करके ही प्रभु दे जन ये अरदास करदे हन कि हे मालक, प्रभु जिथे तेनू याद करिए तू उत्थे बहुल जाना है, किरपा करके मैं तेनू सदा त्यांदा रहा। ठाकुर जां सिमरा तू ताही कर किरपा सर्व प्रतपालक, प्रभ को सदा सलाही। सेवक जन हमेशा ही ये आखदे हन कि हे प्रभु, असी तां तुहाडे बच्चे हाँ, तुसी सानू हर समय पालदे हो, तुम दाते ठाकुर प्रतपालक, नायक खसम हमारे, निमक निमक तुम ही प्रतपालो, हम बारिक तुमरे तारे। इसलिए बाबा फरीद जी आखदे हन कि उन्हां लोकां दे जीवन नूं त्रिकार है जो एक प्रभु दी थां किसे होर उत्ते आस रखदे हन, किसे होर दी ओट तकदे हन। त्रिग तिना दा जीविया जिना विडाणी आस। गुरु रामदास जी दा फरमान है कि लोक अपना प्रभाव पाण लई वक्ख वक्ख लोकां नाल धड़ेबंदी बनाउंदे हन, कोई दोस्तां मित्रां भरावां, कोई अपने कुड़म जवाई, कोई राजसी व्यक्तियां या चौधरियां नाल तड़ा बनाउंदा है, पर मैं तां

तिस साहिब की टेक नानक मनै माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। इस शब्द का गायन किया सी भाई गुरबचन सिंह ते उन्होंने रागी जत्थे ने। साहिब श्री गुरु अंगद देव जी गुरु तो दूर विछोड़े वाले जीवन नू त्रिग दसते हैं। फरमान है, जिस प्यारे स्यो नेह तिस आगे मर चली है, त्रिग जीवन संसार ताकै पाछै जीवना। सरवण करदे हां भाई गुरमीत सिंह शांत अते उन्हां दे रागी जत्थे पासों इस श्लोक दा गायन।

जिस प्यारे सो नेह तिस आ गए मर चलिया त्रिग जीवन संसार ताके पाछा जीवना। इस श्लोक का गायन किया सी भाई गुरमीत सिंह शांत ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और इस यात्रा से आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्र के प्रति जवानों के साहस और सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकी परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की एक नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरे सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में केंद्र सरकार की 12 साल की उपलब्धियों का ब्यौरा देते हुए बताया कि उनका मंत्रालय देश भर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। देश भर में इस तरह के 1,600 केंद्र स्थापित किए जाने हैं और अब तक 24 केंद्र स्थापित हो चुके हैं। इन केंद्रों में अभी तक लगभग 10 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्चा कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ देश के नए थल सेना अध्यक्ष होंगे। वे फिलहाल थल सेना में वाइस चीफ के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला धर्मशाला में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने तीसरे ओवर में 1 विकेट पर 16 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज, DRM 864 किलोहर्ट्ज, FM बैंड 100.7 मेगाहर्ट्ज, 100.9 मेगाहर्ट्ज से DT

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: सत श्री अकाल पंजाबियो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वालों सहभागी न्याय ते कर न्याय लई एक इतिहासिक पहल कीती गई है, जिथे मिलेगा तुहाडे केस नू तुरंत सम्मानजनक हल। हिस्सा बनो समाधान समारोह 2026 दा 21-22 ते 23 अगस्त नू सुप्रीम कोर्ट विच विशेष लोक अदालत लग रही है।
2: पर की उस दे लई मैनू दिल्ली जाना पएगा?
1: जरूरी नहीं, तुसी ऑनलाइन भी जुड़ सकते हो।
2: अप्लाई किवें करिए?
1: सुप्रीम कोर्ट दी वेबसाइट www.sei.gov.in ते गूगल फॉर्म राही बेनती भेजो। याद रखो, आखिरी तारीख 31 मई 2026 है। सहायता लई 011-2311-2428 ते संपर्क करो।
2: समाधान समारोह 2026 आपसी सहमत ते पक्का निपटारा।
0: सरकार दे माण मत्ते 12 साल पूरे होण ते आकाशवाणी दा समाचार सेवा विभाग 1 जून तो प्रसारित कर रहा है 21 लड़ियां दा एक विशेष प्रोग्राम। 35 मिनट दे इस प्रोग्राम दा प्रसारण हुंदा है रोजाना शाम 7:10 तो लेके 7:45 तक। इसलिए शाम 7:30 प्रसारित होण वालियां पंजाबी खबरां दा प्रसारण रोज शाम 7 कीता जा रहा है। सरकार दे माण मत्ते 12 सालां दी कामयाबी दी कहानी आकाशवाणी दे समाचार सेवा विभाग दी जुबानी।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन, ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच। परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।
3: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छड़।
4: और दीदी बैंक का नंबर चाहिदा है, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, हुणे फोन कर दें दीदी।
3: बिना नंबर दी जांच किते? अक्सर धोखेबाज जाली बैंक वैबसाइटां ते जाली नंबरां नाल पैसे ठगदे हन।
4: तां फिर सही नंबर

0: बैंक दी अधिकारक वेबसाइट जाते कार्ड ते
1: तुसी दा बचा लिया दीदी
0: काम तो नहीं
1: कर रहे हैं जी
2: आरबीआई कहंदा है
3: सही वित्तीय रवैया तुहानू बचाएगा हमेशा
4: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਗਾਨ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਸੁਨ ਮਹਿਰਮਾ

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज़, 100.9 मेगाहर्ट्ज़ ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ई जलंधर केंद्र है। हुन वेला हो रहा है देहाती प्रोग्राम दा।

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण की विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पराशर।
1: नमस्कार। 10 जून 2026 एक ऐसी तारीख बन गई है जो कि इतिहास के पन्नों में भी दर्ज होगी और लोकतंत्र जिसकी बात सिर्फ बात नहीं होती बल्कि भारत उस पर गर्वान्वित महसूस

0: करता है उस इतिहास में भी लिखी जाएगी। नरेंद्र मोदी एक तरीके से जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, निर्वाचित एक प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल उन्होंने अपना पूरा किया है। और इसके अलावा एक दिन पहले ही केंद्र सरकार के 12 साल भी कंप्लीट हुए हैं। तो अब विकसित भारत की बहुत बात होती है, लेकिन एक ऐसा मंत्रालय जिसकी बात गांव गांव तक पहुंचती है, और सिर्फ बात नहीं, क्या वाकई में गांव के लोग उस बात को महसूस भी करते हैं? जी हाँ, हर घर जल और नल, ये एक ऐसी योजना रही जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा 12 साल में रही। और हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल जी। बहुत बहुत स्वागत है पाटिल जी आपका।
1: नमस्कार।
0: दो कीर्तिमान स्थापित हुए 12 साल सरकार के, और दूसरा प्रधानमंत्री ने वो रिकॉर्ड तोड़ा जिसकी चर्चा अब तक सबसे ज्यादा होती थी, जवाहरलाल नेहरू की। दोनों को आप किस तरह देखते हैं?
1: देखो, 12 साल कंटिन्यू काम करना, लोगों की जो आश है, जो अपेक्षा है, वो पूरी करना, और बार बार जीतना, और ऐसे मुश्किल परिस्थिति में जीतना, ये अपने आप में बड़ी बात होती है। जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, वो सब लड़ते थे इलेक्शन उस टाइम, कांग्रेस के सामने कोई विरोध पक्ष नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब जब इलेक्शन लड़ते हैं तो उनके सामने तो बहुत ही पावरफुल लोग, सीनियर लोग, कांग्रेस खुद लड़ती है, उसके अंदर अपने बलबूते पे लड़कर वो आना और 12 साल कंटिन्यू सेवा करना और करते रहना, यही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और उसको हम देखेंगे कि 12 साल में क्या किया उन्होंने, लोगों की सभी अपेक्षा पूर्ण करने में उत्तीर्ण हुए। एक लाइन में अगर कह सकते हैं तो इतना कह सकते हैं कि काम तो उसके अगर लिस्ट बनाने बैठेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है। बहुत काम उन्होंने किए, देश को सुरक्षित कर दिया, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, सभी समाज के लिए कोई न कोई योजना बनाकर उनको लाभान्वित करने का काम ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया है।
0: पाटिल जी, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता रहे, क्योंकि आपके साथ तो उनका एक जो साथ और अपनापन रहा वो सिर्फ अभी 12 साल का नहीं, वो तो कितने समय पुराना हो गया, गुजरात से लेकर दिल्ली तक। आपने क्या देखा कि इतना ज्यादा हमेशा नरेंद्र मोदी के खिलाफ कसीदे इन 12 सालों में भी, जब से सरकार बनी अब गिरेगी, अब गिरेगी, अब गिरेगी, यही बात होती रही, और सरकार ने 12 साल कंप्लीट कर लिया?
1: देखिए, हमारा कहते हैं ना, अंगूर खट्टे हैं, तो इन्होंने कोशिश तो बहुत कर ली, मगर जो उनकी लालसा थी कि सरकार को गिरा देंगे, सरकार बना लेंगे, मुझे लगता है शायद वो लोग जो उनकी इच्छा इस जन्म में पूरी होने की संभावना मुझे दिख नहीं रही है, क्योंकि पूरा देश मोदी साहब के साथ खड़ा है, और इसके लिए खड़ा है कि उनकी जो अपेक्षा थी वो पूर्ण करने वाला एक सक्षम व्यक्तित्व उनमें उसमें दिखता है, और ये मोदी साहब ने प्रूव कर दिया है कि वो सपने नहीं दिखाते। अगर आप एक लाइन में देखेंगे तो आज तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और देश के प्रधानमंत्री बने, उनके सामने कोई आंदोलन नहीं हुआ कि हमें रोड चाहिए, पानी चाहिए, गटर चाहिए या कोई भी चीज़ के लिए। उन्होंने डिमांड कोई करे उसके पहले उसकी आवश्यकता को समझ के समय के पहले उसको पूरा कर दिया। ये आज तक कभी कोई मुख्यमंत्री ने या प्रधानमंत्री ने अपने शासनकाल में कभी नहीं किया, इतना बड़ा काम उन्होंने कर दिया है।
0: मोदी जी को इतना टारगेट क्यों किया जाता है? मतलब जब वो मुख्यमंत्री थे, किसी मुख्यमंत्री की इतनी चर्चा नहीं होती थी जितना विपक्ष उनकी चर्चा करता था, और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी सबसे ज्यादा टारगेट उन्हीं को किया जाता है।
1: देखिए, उनको लगता था कि ये हमारा अधिकार है, ये हमारा खानदानी अधिकार है, ऐसा समझते थे। आज एक आम आदमी में से, एक सामान्य आदमी अपने बलबूते पर यहाँ तक पहुँचता है, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। मैंने अभी किसी से मैं बात कर रहा था कि 12 साल तो रिकॉर्ड हुआ, 12 साल बेमिसाल तो रही है, आज नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है।
0: तो यही तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी का ये कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास ही है जिसने यहाँ तक उनको पहुँचाया है?
1: नहीं, आत्मविश्वास तो उसकी तो प्राथमिकता है, मगर उसके साथ प्लानिंग है, वो जमीन से जुड़े रहते हैं, लोगों की क्या समस्या है उसको ध्यान देते हैं, उसको कैसे उनको मदद की जाए उसके लिए सोचते हैं, उनकी योजना बनाते हैं। टारगेट अगर महिला के लिए तो महिला की योजना बनेगी, किसान के लिए तो किसान के लिए योजना बनेगी। हमारे देश में हम कहते हैं कि ये तो खेती प्रधान देश है, मगर आज तक कभी किसानों के लिए योजना नहीं बनी थी जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पहली बार बनाई। यानी ऐसे कई आपको इंसिडेंट्स मिलेंगे कि जो कभी किसी ने सोचा नहीं था, ऐसी योजना बनाकर उन्होंने मदद की है।
0: पाटिल जी, अब हर घर जल और नल, ये योजना, मतलब ये विडंबना ही है इस देश की कि आजादी के बाद इतनी सारी चीजों पर बात होता था लेकिन तब भी महिलाओं को सिर पर घड़ा रखकर लाना पड़ता था। मैंने कई गांव में जाकर देखा उत्तर प्रदेश के कि महिलाएं इतना खुश होती थी। ये जो विजन

0: है और क्योंकि आपके मंत्रालय से संबंधित है, मैं थोड़ा ये समझना चाहूंगी कि ये विजन अब तक क्यों नहीं आ पाया किसी के दिमाग में और अब इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है?
1: किसी को गरीब लोगों के बारे में सोचने का समय नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा है कि विकसित भारत 2047 एक टारगेट दिया है। हमारे यहाँ देश में घरों में टॉयलेट नहीं था, महिलाओं को सूर्यास्त के बाद में और सूर्यास्त के पहले शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था, अंधेरी रात में उनके ऊपर कई बार असॉल्ट भी हुए। कई लोगों को ये जो टॉयलेट नहीं है तो विकसित भारत कैसे बन सकता है? अगर घरों में टॉयलेट नहीं है तो विकसित भारत हो ही नहीं सकता। और ये सिर्फ विकसित भारत के लिए नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। 60 करोड़ लोगों ने अपनी आदत बदल दी, 9 करोड़ महिला रोज पानी के लिए जाती थी, उसी तरह यहाँ भी टॉयलेट के लिए बाहर जाती थी। तो जिस तरह से टॉयलेट का काम किया उसी तरह पानी का भी काम किया, हर घर में नल से जल, ये अपने आप में बहुत बड़ी योजना है। आज तक 70 साल में कांग्रेस के समय में कभी भी किसी के घर में पानी देने की व्यवस्था सरकार ने नहीं की। वो एक मोहल्ले में एक हैंडपम्प डाल देते थे तो उनको लगता था हमने पानी की व्यवस्था कर दी है। यहाँ तो हर घर में और वो भी हर पर हेड 55 लीटर पानी उसको मिले, अच्छा पानी, क्वालिटी का पानी मिले, पूरी क्वांटिटी में मिले, इसकी व्यवस्था करने की बात थी। 16 करोड़ घरों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पानी पहुंचा दिया। 3 करोड़ घरों में अभी जो पानी पहुंचाना है उसकी डेट भी तय कर ली कि दिसंबर 28 तक ये भी पूरा काम पूरा करना है। तो इससे हुआ क्या, जो 9 करोड़ महिला पानी लेने के लिए जाती थी, बोझ उठा के आती थी, उसमें मुक्ति मिली। 5.5 करोड़ घंटे उनके रोज पानी लाने जाने में उनके जाते थे, आज वो अपने फैमिली के दे सकते हैं, उसको आर्थिक उपार्जन में उसको खर्च कर सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात हुई। WHO का रिपोर्ट कहता है कि इसके कारण 3 लाख बच्चों की जान बची है। जो पानी के कारण, जो गंदा पानी आता था उसके कारण जो बीमारी आती थी उसके लिए जो लोग अपना पैसा खर्च करते थे, वो 8.4 लाख करोड़ रुपया वो लोगों का बचा। तो यानी एक योजना उसके पीछे कितने लोगों का फायदा हुआ, महिलाओं को पानी की मुश्किल दूर हो गई, टॉयलेट बनाने से महिलाओं की सुरक्षा और प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। तो एक योजना के साथ महिलाओं को, युवाओं को, सबको ध्यान में रखकर ये योजना माननीय मोदी साहब भी बना सकते हैं और इम्प्लीमेंट भी वही कर सकते हैं, बाकी दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो काम मोदी साहब ने किया है।
0: मुझे याद है पाटिल जी, लास्ट टाइम आपसे जब मेरी बात हो रही थी तो आपने वो जल संचय के बारे में बताया था, आप दिल्ली आए थे और आप बता रहे थे कि पीएम ने किस तरह से कहा कि ये जल संचय वाला जो प्रोजेक्ट है इसको कैसे हमें पहुंचाना है। मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है।
1: देखिए, जल संचय से जन भागीदारी से जन आंदोलन में परिवर्तित करना चाहिए और कर्मभूमि से मातृभूमि में जल संचय के लिए सहयोग करना चाहिए। ये दो बात माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 6 सितंबर 2024 को कही थी, एक वर्चुअल मीटिंग में कही थी। हमारा पहला टारगेट था 31 मई 2025 तक 10 लाख स्ट्रक्चर बनाने का टारगेट था, हमने अचीव किया, 27,50,000 पर हम पहुंच गए। हमने नया टारगेट लिया 31 मई 2026 तक 1 करोड़ तक पहुंचने का टारगेट लिया और हम 1,55,00,000 तक पहुंच गए। इसमें मनरेगा में से करीब 10 लाख स्ट्रक्चर बने, बाकी सभी जो स्ट्रक्चर बने वो छोटे से लेके बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर बने वो लोगों ने अपने पैसों से बनाए। और इसमें छोटे छोटे भी है तो बड़े भी है। एक कच्छ में एक एंकर स्विच वाला जो है, उनका नाम है दामजी भाई एंकर, शायद वो अभी नहीं रहे, उनकी फैमिली है, वो बॉम्बे रहते हैं मगर वो लोग कच्छ के हैं। कच्छ में एक भूखी नदी है, वो भूखी नदी में पानी नहीं है, उसको सफाई करनी थी, उसको डिसिल्टिंग करना था, उन्होंने 50 करोड़ रुपया उसके लिए खर्च किए। एक व्यक्ति अपने गांव में नदी के लिए इतना पैसा खर्च सकता है, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के आह्वान के बाद ही हो सकता है। एक ऐसा आदमी है कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि हमारे देश तकलीफ में है, हम एक टाइम का खाना छोड़ दो, लोगों ने खाना छोड़ दिया। मोदी साहब ने कोरोना के समय में कहा कि एक भी आदमी भूखा नहीं होना चाहिए। दोनों का डिफरेंस देखिए, कितना पॉजिटिव सोच है, और सिर्फ सोच नहीं उसको अमलवारी भी करवाने की ताकत रखते हैं। तो ये जो उनका काम करने की जो सिस्टम है वो आपको देखेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था, उन्होंने कहा था कि रिवर लिंकिंग करना चाहिए, वो तो नहीं कर पाए, मगर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले नर्मदा से साबरमती और साबरमती से कच्छ तक जितनी नदियाँ, तालाब, सरोवर आए वो सबको पानी से भर दिया। और पहला रिवर लिंकिंग था, केन बेतवा दूसरा रहा मध्य प्रदेश और यूपी के बीच में। 44,000 करोड़ का प्रोजेक्ट 2030 में वो पूरा हो जाएगा। उन्होंने PKC की एक नया योजना राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में शुरू की, वो भी शायद 1,00,000 करोड़ से बड़ी योजना है। राजस्थान की जो पानी की किल्लत है वो आने वाले दिनों में जिस तरह से मोदी साहब काम कर रहे हैं तो पानी की किल्लत दूर हो जाएगी। और जो जल संचय की जो विशेषता ये है कि हम डैम बनाते हैं, डैम से पानी कैनाल में ले जाते हैं, तो कैनाल जहाँ तक पहुँचती है उसके अगल बगल के किसानों को फायदा होता है, मगर जो दूर दरार है गाँव

0: दूर है, खेत दूर है, उसको पानी नहीं मिलता। जल संचय से हर गांव में जो बह के जाने वाला पानी खड्डे में जाता है, खड्डे से नाले में जाता है, नाले से नदी में जाता है, नदी से दरिया में चला जाता है। हमको उनको वहीं रोक देते हैं, खड्डे में ही बोर करके 100 फुट का उसमें पानी उतार देते हैं, खेत में भी 4 बाई 6 का खड्डा करके उसमें पत्थर डाल देते हैं। एक बारिश में 4 से 5 लाख लीटर पानी वो खेत में नीचे जमीन में उतर जाता है। इसके कारण जो किसानों के कुएं हैं, बोर है, उसमें पानी ऊपर आ गया, जल स्तर बढ़ गया, जल की क्वालिटी सुधर गई। गाँव में भी ऐसा हुआ, गाँव के भी जो कुएं थे या बोर थे उसमें भी पानी का स्तर बढ़ गया, क्वालिटी सुधर गई। तो ये जल संचय अपने आप में बहुत बड़ा काम, इसके लिए कि हम हर जगह पर डैम बनाकर पानी नहीं ले जाएंगे तो ये जल संचय की वजह से हमको वहाँ की जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाएगी।
1: आपको लगता है ये जो इसी तरह के विषय हैं, क्योंकि पुरुष तो बाहर नौकरी करने चले जाते थे या काम करने के लिए, महिलाओं को ये सारी चीजें झेलनी पड़ती थी, चाहे वो टॉयलेट वाली बात हो या अगर घर में पानी नहीं आ रहा है, नल नहीं है, यही जो एक विमेन वोट जो बना कि पहले जो महिलाएं बीजेपी के खिलाफ भी वोट करती थी, सारी की सारी महिलाएं अब मोदी मोदी करने लगी हैं। आपको लगता है यही वो वजह है?
0: एक वजह नहीं है, महिलाओं देखती है कि पहला आपको बताऊं, मैं गुजरात में जब आए थे उस टाइम में पावर नहीं आता था, महिलाओं को रसोई जल्दी बनानी पड़ती थी, जल्दी खाना खा के जल्दी बर्तन करके उनको वो बैठ जाती थी, और फिर उसके बाद बहुत टाइम था और एंटरटेनमेंट के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। मोदी साहब ने आकर एक सिंगल फेज अलग से लिया, पूरे गुजरात में सभी घरों में कभी लाइट नहीं गई, तो उनकी व्यवस्था हो गई, तो बहनों को जल्दी रसोई करने की आवश्यकता नहीं, जल्दी खाना खा के फिर फ्री हो जाएगा, तो ऐसा नहीं रहा। वो देर तक बैठ सकती थी, वो टीवी देख सकती थी, उसको एंटरटेनमेंट के लिए एक साधन बन गया। तो इसके लिए महिलाओं को लगा कि नहीं, हमारे लिए चिंता की है, तो उनके जीवन में एक प्रकाश आ गया, ऐसा उनको लगा। आज देश में भी देखेंगे कि देश में अगर कोई भी पुरुष बाहर जाता है तो उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी पत्नी, सबको लगता है कि सुरक्षित आ जाए घर में। ये सुरक्षा अगर किसी ने प्रदान की तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने की, आतंकवाद को ख़त्म कर दिया, नक्सलवाद को ख़त्म कर दिया, और जिस तरह से आज महिलाओं को उन्होंने प्रमोट किया, हर सेक्टर में प्रमोट किया, तो उसकी वजह से उनके मन में जो इच्छा थी, जो टैलेंटेड थी, मगर उनको मौका नहीं मिलता था, माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने महिलाओं को भी मौका दिया। सबसे पहले गुजरात में उन्होंने इलेक्शनों में वहाँ जिला पंचायत, महानगर पालिका, नगर पालिका, तालुका पंचायत में 50% महिलाओं के सीट रिजर्व कर दी, वो पहला इंसिडेंस था। बाद में आप यहाँ देखिए कि उन्होंने विधानसभा और लोकसभा के लिए भी 33% महिलाओं की सीट रिजर्व कर दी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। महिलाओं को एक विश्वास आता है कि कोई हमारे लिए काम करता है, कोई हमारी चिंता करती है। आज ये सभी महिलाओं मोदी साहब की चिंता करती है कि उसके विरोधी जो है उनको ठीक रखना, उनको सत्ता से दूर रखना, इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है।
1: आप गुजरात के सीएम के तौर पर मोदी जी और अब पीएम के तौर पर दोनों देखा आपने, कुछ अंतर आया क्या पहले वाले मोदी जी में और अब वाले मोदी जी में?
0: मैं मानता हूँ कि पहले भी मोदी साहब सामान्य जन के लिए काम करते थे, आज भी वही काम करते हैं। वहाँ उनकी एक मर्यादा थी, एक स्टेट के मुख्यमंत्री थे या देश के प्रधानमंत्री है, इसके लिए उनको एक काम भी उनका बड़ा है, तरीका भी थोड़ा बदल गया है, और मगर आप देखेंगे कि जो मुख्यमंत्री के तौर पे भी जो काम करते थे उसको भी उन्होंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, और नई सोच के साथ, नई ताकत के साथ उन्होंने यहाँ पर भी कई योजना बनाई। हम कहेंगे कि अवकाश से लेकर पाताल तक हर जगह पे उन्होंने काम किया। हम चंद्र पर पहुंच गए, जो कभी हमारे लिए सपना था तो उन्होंने कर दिया। आपको सुरक्षित करने के लिए जो फ्लाइट आई उसके अंदर भी महिलाओं को उन्होंने उनकी कमान सौंप दी, उसी तरह उन्होंने जमीन के ऊपर भी जो डेवलपमेंट के काम करने थे वो भी उन्होंने किए, सबमरीन भी नई नई बनाई, और जल को भी सुरक्षित करने का काम, यानी जल सीमा को भी सुरक्षित करने का काम भी उन्होंने कर दिया। आज भारत की ओर देखने का नजरिया लोगों का बदल गया है। आज भारत के लोग बाहर जाते हैं तो उनको सम्मान मिलता है, पहले तो उनकी कोई दरकार भी नहीं करता था, वो अपमान करते थे, आज वो बात नहीं रही। ये जो जाने वाले लोग थे पहले भी और अभी भी, उनको ये बात समझती, वो पूरी वो देखते भी हैं।
1: गुजरात का कई सारे वहाँ के किस्से जो हैं मैंने किताबों में पढ़े, और कई बार हमने जो मोदी जी के बचपन के दोस्त वगैरह उनके इंटरव्यूज देखे कि मोदी जी एक तो हर किसी को याद रखते हैं नाम से, और दूसरा हर बात की बारीकी में, डिटेल में जाते हैं, काम के मामले में भी और वैसे भी। तो जब आप वहाँ पर थे गुजरात में, कोई ऐसा एग्जाम्पल है कि अगर उनको कुछ गलत बता दिया हो तो वो एकदम पकड़ लेते हैं कि भाई ये यहाँ पे तथ्य गलत बोला गया है?
0: वो तो पूरा देश जानता है कि बहुत शार्प है, उनको कोई गलत बता के उन्हें कोई ठग जाए ऐसी कोई बात ही नहीं हो सकती, और उनका जो डिटेलिंग करने का काम है उसके अंदर कोई भी आदमी उनको कोई गलत कुछ बता भी नहीं सकता, और वो जो सुनते सबकी है, वह करते हैं अपने मन की, क्योंकि

0: उनको अपने आप में भरोसा है, उनका प्लानिंग होता है, बहुत माइक्रो लेवल पे वो प्लानिंग करते हैं और परिणाम लाके देते हैं। गुजरात में पहली बार महानगर पालिका अगर किसी ने जीती थी, अहमदाबाद महानगर पालिका, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जीती थी। तो ये वहीं से उनकी जो शुरुआत हुई थी, वहीं से वो जीत के लिए ही उनका जन्म है, जीतते ही जाते हैं। उन्होंने कभी हार का मुंह नहीं देखा और ना कभी देखेंगे।
1: आपने कोई एक चीज जो उनसे सबसे ज्यादा सीखी हो, जिसको आपने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट आपने कर रखा हो? बिल्कुल,
0: एक बार 26 जनवरी का दिन था, आवा डांग में उनका कार्यक्रम था और वो जो साफा लगाते हैं, तो ये साफा मुझे लेके जाना था और मैं 2 मिनट लेट पहुंचा, सिर्फ 2 मिनट। उन्होंने किसी से बंधवाना शुरू किया, जैसे उन्होंने अभी तो वो रखा ही था, हाथ में ही पकड़ा था, और मैं पहुंच गया था। मुझे उन्होंने कुछ बोला नहीं, मुझे ऐसे लगा कि सीआर ये कैसे चलेगा। मैंने कहा सॉरी सर। उन्होंने और कुछ भी नहीं बोला। मुझे आज तक भी वो 2 शब्द उनके, वो मुझे उसके घाव आज भी दिखते हैं। तो ये उनसे ही सीखा है कि समय पे ही काम होना चाहिए, हमें देर करने की कोई आदत ही नहीं होनी चाहिए। मेरे ऑफिस में भी मेरे हमारी मीटिंग जो होती है, मैं डॉट टाइम शुरू करता हूँ, समय पर पूरी करना। जो भी काम है उसको हमें आज करना है तो कल तक छोड़ना ही नहीं, आज ही पूरा करना। मेरे पास कोई भी फाइल आती है, मैं सेम डे उसको क्लियर कर देता हूँ। तो ये सब आदत है जो मोदी साहब ने सिखाई है कि क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, और हम सामान्य लोगों को अवेलेबल होने चाहिए। उनसे सीखे हम, जो यहाँ कोई भी आके मिल सकता है, हमारे गेट पे किसी को रोकते नहीं है, किसी का नाम तक नहीं पूछते हैं। तो उसको लगता है कि मैं कोई प्रधान के यहाँ नहीं जा रहा हूँ, मैं कोई कार्यकर्ता के यहाँ जा रहा हूँ। तो ये सब बातें उनसे सीखी है कि लगाव लोगों से बढ़ना चाहिए, और उन्हीं के आधार पर जो टेक्नोलॉजी की बात भी करते हैं, अभी मैंने प्रधानमंत्री मोदी साहब से सीखी है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पॉलिटिकल फील्ड में हम क्या कर सकते हैं। तो वो भी उनसे ही सीखी, उनका ही अनुकरण करके हम आगे बढ़ते हैं।
1: आपके इस एग्जाम्पल से तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने 2 शब्दों में अपनी बात भी रख दी और आपको आज तक वो बात याद भी है। इसका मतलब तो वो बहुत सरल तरीके से अपनी बात बता देते हैं, लेकिन छवि उनकी ऐसी बनाई जाती है कि एकदम बहुत दहशत रहती है उनको देख करके।
0: नहीं, वो तो देखो अपने काम से मतलब रखते हैं। मैं एक इंसिडेंस आपको और कहना चाहूँगा। 2014 का लोकसभा का इलेक्शन वो लड़े, काउंटिंग में करीब 10-15 दिन का टाइम था। एक बार उन्होंने वहाँ के सभी सेक्रेटरी और जो गांधीनगर में है सभी IAS अधिकारी और सभी MP सबको स्पाउस के साथ बुलाया था, और वहाँ उन्होंने उनका कॉन्फिडेंट लेवल आपको उसमें दिखेगा कि उन्होंने कहा कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ। काउंटिंग के पहले 15 दिन पहले कोई व्यक्ति जो कभी दिल्ली नहीं गया वो कहता है कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, और मैंने इसके लिए बुलाया कि मेरे बारे में बहुत सी चर्चाएँ होती है, बहुत सी अफवाहें चलती है। कोई कहता है कि मोदी जी ने किसी अधिकारी को गेट आउट कह दिया, किसी को फाइल फेंक दी, गुस्सा कर लिया। तो उन्होंने कहा कि मैं आदमी हूँ, मुझे भी गुस्सा आ जाता है, और मैंने आज तक कभी किसी भी अधिकारी को गेट आउट नहीं कहा, मैंने कोई भी अधिकारी के ऊपर कभी गुस्सा नहीं किया, मैंने कोई भी फाइल कभी अधिकारी को फेंकी नहीं। मुझे अगर गुस्सा आया होगा तो मैंने वो फाइल लेकर साइड में रख दी होगी, इससे ज़्यादा मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया। आपके मन में होगा, यहाँ सब अधिकारी की पत्नी बैठी है, उनको होगा कि मेरे पति को भी मोदी साहब ने डांटा होगा, मगर वो बता नहीं रहे होंगे घर में। पर मैं आपको कहता हूँ कि मैं जा रहा हूँ, उसके पहले मुझे एक क्लियर करना था, इसके लिए बताया। मगर वो क्लियर तो किया उन्होंने, मगर जो आत्मविश्वास प्रकट हुआ, कॉन्फिडेंट लेवल जो प्रकट हुआ कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, तो ये उनका काम करने का तरीका है।
1: ये तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल हो गया। लेकिन पाटिल जी, इन 12 सालों में आपने, चलिए हर घर नल और पानी वाला तो आप ही का डिपार्टमेंट है, लेकिन इस डिपार्टमेंट के अलावा ऐसा कौन सा माइलस्टोन आपको फैसला लगता है या सरकार की कोई नीति लगती है जो हमेशा मतलब याद रखी जाएगी?
0: वो एक चीज नहीं है, मैंने कहा ना फिर से महिलाओं के लिए हम बात करेंगे, तो वो रोटी जो रसोई करती थी तो लकड़े पर करती थी, दोनों से मुक्त कर दिया मोदी साहब ने महिलाओं को, और उसके साथ उसका छोटा बच्चा अगर घर में है तो उसका भी फेफड़ा बचपन से ही वो वीक हो जाता था, तो सिर्फ महिलाओं के लिए बच्चों के लिए भी उसके अंदर काम हो गया, अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। आपने देखा होगा आयुष्मान में लोग बीमार पड़ते थे, घर में नहीं बताते थे, उनको लगता था कि बेटे को पता चलेगा, खर्च होगा, बेटे के पास पैसे नहीं है तो कर्ज लेगा, मकान बेचेगा, खेत बेचेगा। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा कर्जदार बने, और वो जो भी दर्द है उसको छुपा लेते थे। बहुत तकलीफ होती थी तो बाहर जाके खेत में जाकर रो लेते थे और घर में नहीं बताते थे, आंसू लेके नहीं आते थे। मोदी साहब ने कहा कि मैं उनका बेटा हूँ और उनके लिए 5 लाख रुपए तक का जो ट्रीटमेंट है उसका पैसा मोदी साहब ये योजना से कर रहे हैं। ये भी आपको दिखेगा कि ये भी अपने आप में बहुत बड़ी योजना ये भी बनी है। किसानों के लिए कभी कोई योजना नहीं बनी, उनके लिए भी 6,000 रुपया साल में 3 बार डाल देते हैं, बिल्कुल समय पर देते हैं। और युवाओं के लिए भी उन्होंने कितनी कोशिश की, पहले तो नौकरी लगाना है तो आपको किसी के

0: सिफारिश चाहिए, पैसा चाहिए, जमीन दे देनी पड़ती थी। आप देख रहे हैं कई लोगों के ऊपर उसके केस भी चल रहे हैं। यहाँ पारदर्शिता से जो वो अभी उन्होंने 51,000 बच्चों को अभी रोजगारी का अपॉइंटमेंट लेटर दिया, एक सेकंड में पूरे देश में 50,000 लोगों का हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। ना उसको कोई सिफारिश करनी पड़ी, ना किसी को कुछ पैसा देना पड़ा, ना जमीन देनी पड़ी। तो उससे युवाओं को भी विश्वास हो गया कि यह आदमी युवाओं के लिए भी कुछ करना चाहता है, और वो युवा कोई निराश ना हो जाए, उसके पहले उसको कोई चांस मिल जाए, तो उसके लिए भी उनकी कोशिश रहती है।
1: ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है हमेशा कि मतलब देश में आर्थिक सुनामी आ जाएगी, अर्थव्यवस्था डिरेल हो चुकी है, तमाम चीज़ें ऐसी बातें बताने की कोशिश होती है, उस नैरेटिव को कैसे देखते हो आप?
0: जब पूरे विश्व में सभी जगह युद्ध चल रहा है, एकमात्र हमारा देश है, वो भी माननीय मोदी साहब की जो पॉलिटिकल जो सेंस है उनकी, उनकी जो विदेश नीति है, उसके कारण हम बिल्कुल शांति से रह रहे हैं। पूरी दुनिया में युद्ध है, एक जगह नहीं है, दो देश के बीच में नहीं है, मगर हम बिल्कुल शांति से रहे हैं। हमें कोई भी युद्ध का डर नहीं लग रहा है, हम न्यूज़ तक नहीं देखना चाहते कि युद्ध में क्या हो रहा है। तो ये जो पोजीशन परिस्थिति जो आई है, वो तो मोदी साहब की वजह से है। तो ये जो ग्रोथ है, ऐसे समय में, कोरोना के समय में, कोरोना के बाद में, युद्ध के समय में, इतना GDP जो आया है वो खुद ही रिकॉर्ड है। मनमोहन जी तो अर्थशास्त्री थे, उस टाइम तो हम 11वें नंबर पे थे, हमारी आर्थिक व्यवस्था 11वें नंबर पे थे, मोदी साहब ने 5वें पर लाई और 3रे पर लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये भी उनको कहकर लाए हैं, हमने कहा कि हमने कुछ किया और हो गया, ऐसा नहीं है। पहले से उन्हें कह दिया कि मैं ये नंबर पे देश के अर्थतंत्र को लेके आऊँगा। तो ये व्यवस्था करना तो हर क्षेत्र में डेवलपमेंट हो, महिलाओं का हो, युवाओं का हो, देश का हो, चंद्र पे जाना है, अवकाश में जाना है, हमें फाइटर प्लेन लेने हैं, अच्छी सबमरीन लेनी है, वो भी देश में बनाना है, तो सब काम एक ही आदमी इतनी ताकत के साथ कर रहा है। और ये बैठे बैठे बस उनकी एक ही सोच है कि बस हमें प्रधानमंत्री बना दो। क्यों बना दो, उसका कोई वजह नहीं है उनके पास, उनको खानदानी, ये सीट उनकी है, ऐसा उनको लगता है। ये चाय वाला कैसे आ गया, ये चाय वाला पूरे देश के लोगों की चाहना लेकर आया है, और इसको हटाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है।
1: चलते चलते पाटिल साहब, मैं यही जानना चाहूंगी, जब प्रधानमंत्री को आप सब लोगों ने ग्रीट किया, स्टैंडिंग ओवेशन दी, इतना रिकॉर्ड PM ने बनाया, प्रधानमंत्री का क्या रिएक्शन था?
0: मैंने मोदी साहब ने सबका आभार व्यक्त किया, हम सबको धन्यवाद दिया।
1: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया CR पाटिल जी, क्योंकि ये जो बातें आपने बताई इसीलिए बहुत ज्यादा अहम ये बातचीत थी कि मोदी जी के साथ ये अपनापन और जो पल आपने बिताए हैं, बहुत ही कम लीडर्स ऐसे हैं जो उनके साथ इस तरह से बारीकी और करीबी के साथ में रहे, इसलिए ये बातें शायद कोई और नहीं बता पाता। बहुत बहुत शुक्रिया।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी रीमा पराशर। अब सुनिए मोबिक्विक के संस्थापक बिपिन प्रीत सिंह के साथ पत्रकार शिशिर सिन्हा की विशेष बातचीत।
3: नमस्कार। 26 मई 2014, यही वो तारीख थी जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने करोड़ों भारतीयों के सपने, उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ भारत की सत्ता संभाली थी। तब से लेकर अब तक 12 वर्ष बीत चुके हैं, और इन 12 वर्षों में जनता ने दो बार आशीर्वाद मोदी सरकार को दिया है। मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल चल रहा है। इन 12 साल में हमने कई नीतियां देखी, जमीन पर उतरती हुई नीतियां देखी, सभी के फोकस में, सभी के केंद्र में आम आदमी था, और एक ऐसी ही नीति थी डिजिटल इंडिया को लेकर। और जब हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, तो हमें ये समझना जरूरी हो जाता है क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ होने वाला है, नीतियों में क्या कुछ बदलाव संभव है, क्या कुछ बदलाव की उम्मीद करते हैं। और इन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोबीक्विक के फाउंडर और CEO विपिन प्रीत सिंह। बहुत बहुत स्वागत है विपिन आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि अभी के समय में अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति देखें, और 12 वर्षों में अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति देखें, तो आपने जिस तरीके से आपका सफर रहा है, उसमें आप अर्थव्यवस्था का आकलन कैसे करते हैं?
4: पहले तो शिशिर जी, धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम में इन्वाइट करने के लिए। और मोबीक्विक जो मैंने कंपनी स्टार्ट की थी करीब 17 साल पहले, उसमें से 12 साल मोदी सरकार के अंदर ये कंपनी खड़ी हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सन 2014 में ही मोबीक्विक को सबसे पहली फंडिंग मिली थी, और उसके बाद मोबीक्विक ने करीब करीब 2,000 करोड़ रुपए पिछले 12 साल में डिफरेंट तरह के इन्वेस्टर से उठाए और बिजनेस बनाया। तब हमारे पास आई थिंक 30 लाख या 40 लाख यूजर थे। आज की डेट में मोबीक्विक

0: 18 करोड़ यूजर यूज करते हैं पूरे भारत में। तो इन नंबरों से ही आपको समझ आ जाएगा, इन आंकड़ों से, कि हमारे देश में जो डिजिटल इंडिया है और डिजिटल इकोनॉमी है वो किस हद तक उसकी ग्रोथ हुई है। मुझे याद है 12 साल 15 साल पहले जब आप मोबाइल फोन पे कॉल करते थे तो सोचना पड़ता था कि कितने की कॉल पड़ेगी, मैसेज करना है तो कितना पैसा लगेगा। आज के समय में आप नहीं सोचते। आज के समय में अगर आपको किसी को पेमेंट करना है तो आप बैंक नहीं भागते, आप फटाक से अपना फोन निकालते हैं और UPI से डिजिटल पेमेंट करते हैं। करीब करीब 4 में से 1 भारतीय या 3 में से 1 भारतीय ऑलरेडी डिजिटल पेमेंट्स के साथ जुड़ चुका है, जिसमें मोबीक्विक ने एक बहुत बड़ा सफर और बहुत बड़ा योगदान दिया है। बट इन सब के पीछे जो नीतियां हैं जिनसे ये पॉसिबल हुआ है उनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि पहले डिजिटल आइडेंटिटी नहीं होती थी, हम राशन कार्ड लेके घूमते थे। अब आधार जो डिजिटल आइडेंटिटी बनी है, पैन जो डिजिटल आइडेंटिटी बनी है, मोबाइल फोन के रेट सस्ते हुए हैं, फिर जो UPI का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, तो उससे मोबीक्विक की बिजनेस को बनाने में बहुत बहुत बड़ा हाथ है। उसके बिना मुझे लगता नहीं है ये संभव भी था।
1: तो मतलब 17 साल के आपके सफर में, 12 साल मोदी सरकार के, और इन 12 साल में जो डिजिटल इंडिया का सफर रहा उसमें काफी हद तक आपके अपने कारोबार को बढ़ाने में मदद मिली। और आप ही के नहीं, ऐसे कई ऐसे पेमेंट सिस्टम, पेमेंट एग्रीगेटर की हम लोग बात करें, वो सिस्टम में आए, उन्होंने काम को आगे बढ़ाया। अगर मैं 3 प्रमुख नीतियों की बात करूं 2014 से लेकर के 2026 के बीच में, वैसे कौन सी 3 बड़ी नीतियां थी जिन्होंने आपके कारोबार को, कहने का मतलब कि डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ाने में मदद की?
0: तो इनमें काफ़ी नीतियाँ थी, बट सबसे पहला मैं ये मानूंगा कि कोई भी सरकार जब किसी बिजनेस के साथ काम करती है, तो हम जब बिजनेस सरकार से बात करते हैं तो उनकी नीतियों को और उनकी माइंडसेट को समझने की कोशिश करते हैं। तो 12 साल पहले ही हमें समझ आ गया था कि ये सरकार डिजिटल इंडिया की एक पॉलिसी लेके आएगी और उसको हर एक लेवल पे इम्प्लीमेंट करेगी। एंड आई थिंक वो जो डिजिटल इंडिया की जो एक मुहिम बनी जिसके अंतर्गत ये सब हुआ कि आधार, पैन, जनधन अकाउंट्स खुले इतने सारे, अभी हर पर्सन के पास, हर इंसान के पास अकाउंट है, तब नहीं थे। तो ये जो नीतियाँ थी डिजिटल इंडिया के अंडर, जो एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया गया इंडिया में, डिजिटल DPI कहते हैं इसे, इसका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जब तक एक इंसान अपनी डिजिटल में पहचान नहीं बना सकता तब तक वो डिजिटल पेमेंट भी नहीं कर सकता, और अब डिजिटल लोन भी नहीं ले सकता, डिजिटल इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकता। इन सबको जो साथ में जोड़ा गया है जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, आई थिंक वो एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो कि इवन बड़े बड़े वेस्टर्न कंट्रीज में भी आज तक अचीव नहीं हुए।
1: एक जो बड़ी पहल जिसको हम कहें जैम ट्रिनिटी की हम लोग बात करें, आपने अभी जनधन की बात की थी, आपने आधार की बात की, आपने मोबाइल का बात किया, और 2015 से हमने देखा कि जैम ट्रिनिटी किस तरीके से समाज के आखिरी पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति तक जो भी सरकार की योजना है उसका फायदा पहुंचाने में मदद की। इस जैम ट्रिनिटी को आप कैसे देखते, क्योंकि एक समय जैसा आपने खुद कहा कि एक मोबाइल फोन को लेकर के हम एक बार सोचते जरूर थे, और हमें वो भी दौर याद है जो आज से अगर मैं 20-25 साल पहले जाऊं, जब 16 रुपये का एक कॉल होता था तो लोग कहते थे मिस कॉल मार देना। वो मिस कॉल मार देना आज भी हमारे मोबाइल कल्चर का एक पार्ट है। ये अलग बात है कि अब हम उस मोबाइल पे 16 रुपये की चिंता नहीं करते, बल्कि मिस कॉल मार देना एक बात कहते हैं। ये मिस कॉल मार देने से जनधन, आधार, मोबाइल, ये ट्रिनिटी को आप किस तरीके से देखते हैं, समाज के आखिरी पायदान पर व्यक्ति जो है उस तक सामाजिक योजनाओं का फायदा पहुंचाने?
0: इसमें सबसे पहले जो मोबाइल की मैंने बात की कि जब इंडिया में 4G आया या 5G आया और नए ऑपरेटर्स आए जैसे जियो आया या एयरटेल ने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, इसके ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी का पुश था सरकार की तरफ से कि आपको, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, 100 करोड़ से ऊपर की आबादी है, तो सबसे पहले हर बंदे के पास, हर पर्सन के पास एक मोबाइल फोन होना चाहिए और उसके अंदर डेटा और कॉलिंग ऑलमोस्ट फ्री होनी चाहिए, और वो हुआ, आप हमने पिछले 10 सालों में देखा है। तो इसका एक बहुत बड़ा

0: बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की। इसके ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी का पुश था सरकार की तरफ से कि आपको, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, 100 करोड़ से ऊपर की आबादी है, तो सबसे पहले हर बंदे के पास, हर पर्सन के पास एक मोबाइल फ़ोन होना चाहिए और उसके अंदर डेटा और कॉलिंग ऑलमोस्ट फ्री होनी चाहिए, और वो हुआ, आप हमने पिछले 10 सालों में देखा है। तो इसका एक बहुत बड़ा योगदान था। इंडिया आज की डेट में दुनिया के आई थिंक नंबर 1 या नंबर 2 डेटा कंज्यूमिंग कंट्रीज में है। हम डेटा यूज़ करने से पहले सोचते भी नहीं हैं, जबकि यही 10 साल पहले कोई भी ऐप डाउनलोड करने से, तरह की सुविधा हमारे देश में नेशनल लेवल आज तक कभी नहीं थी। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिससे आप ये देख सकते हो कि ये आइडेंटिटी है इस पर्सन की और इस आइडेंटिटी के ऊपर आप इसका अकाउंट खोल सकते हो। हमारा देश अभी भी गाँव में बसा है, हालांकि शहरों ने काफ़ी तरक्की की है, बट करीब 30-35% आज भी गाँव में है और सेमी अर्बन है। हर इंसान बैंक में जाके कंफर्टेबल नहीं रहता था, और बैंक भी जो होते थे, जो इंस्टीट्यूशंस होते थे, वो हर एक का अकाउंट खोलने में इंटरेस्टेड नहीं रहते थे। ये सच्चाई है, क्योंकि अगर किसी की तनख्वाह कम है या उसके अकाउंट में पैसे नहीं रखने हैं, तो उसका अकाउंट खोलना मतलब आपको एक लॉस उठाना है। तो उसके ऊपर जो जनधन अकाउंट्स की पॉलिसी बनी, जिसके ऊपर हमारे बैंकों ने काम किया और सबके अकाउंट खोले, वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आज की डेट में मेरा ये मानना है कि 90% लोगों के पास बैंक अकाउंट है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। आज की डेट में आप छोटा बच्चा देखो, आप एक बूढ़ा देखो, कोई रिटायर्ड पर्सन देखो, आप गाँव में चले जाओ, आप किसी को भी डिजिटल पेमेंट इसीलिए कर पाते हो क्योंकि उनके पास बैंक अकाउंट।
1: तो एक डिजिटल सिस्टम का एक ये भी फायदा हमें इस स्वरूप में देखें कि जब पहले कहा जाता था कि केंद्र से 1 रुपया चलता था और 15 पैसे लोगों तक पहुंचते थे, आज हम बात करते हैं कि लाभार्थी का जो भी बेनिफिशियरी है उसकी पहचान साबित हो जाती है डिजिटल माध्यम से, और डिजिटल माध्यम से ही लेन देन हो पाता है। ये जो हमारे पास रिसोर्सेस का जो एक बेहतर इस्तेमाल है, ये डिजिटल माध्यम से और भी बेहतर तरीके से हो पाया। इसका फायदा आप किस तरीके से देखते हैं? गवर्नमेंट की बजटिंग की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट की फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें, फिस्कल प्लानिंग की बात करें, उसमें

0: मिनिमम होता है और इसीलिए डिजिटल में लीकेज बहुत कम होता है। वरना हमारे देश में जहाँ पे इतने गरीब लोग हैं, सरकार हमेशा से उन पे पैसा खर्च करना चाहती थी और खर्चती है भी, और 12 साल पहले भी खर्चने की कोशिश करती थी, बट वो उन तक पहुंच नहीं पाता क्योंकि वो इतने स्टेप से जाता था, इतनी लेयर से जाता था कि वो जैसा कि आप बता रहे हैं 1 रुपए की जगह 15 पैसे। बट अब जब सरकार ने डीबीटी बनाया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जनधन अकाउंट सबके पास है, तो आपको किसी को गैस की सुविधा के लिए पैसे देने हैं, आपको बिजली की सुविधा के लिए पैसे देने हैं, आपको खाने की सब्सिडी देनी है, किसी भी तरह की सब्सिडी देनी है, आपके पास उस इंसान की पूरी डिटेल्स हैं, उनके बैंक अकाउंट हैं, उनकी आइडेंटिटी है, आप डायरेक्टली उनके अकाउंट्स पे एक क्लिक करके पैसा ट्रांसफर कर सकते हो।
1: विपिन, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिजिटल इकोसिस्टम, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल रिवोल्यूशन की हम लोग बात करें, उसमें बहुत सारे हो रहे बदलाव पे आपने चर्चा की। आपका आभार, नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोबिक्विक के संस्थापक विपिन प्रीत सिंह के साथ पत्रकार शिशिर सिन्हा की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, DRM 864 किलोहर्ट्ज़, FM बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज़, 100.9 मेगाहर्ट्ज़ ते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। शाम दे 7:45 हो रहे ने। हुण वेला हो रहा है प्रोग्राम साहित्य सुधा दा, जिस विच अज तुसी डॉक्टर विशाल भारद्वाज वल्लों सुनोगे।
3: संस्कृत भाषा दे ज्ञान नाल संपन्न ऋषियां अते कवियां ने प्रकृति दे उन्हां दी सोच तों परे नहीं रहा। रुत्तां प्रकृति दा इक प्रमुख अंग मन्नियां जांदियां हन। रुत्तां दा नूं दर्शाउंदिआं संस्कृत काव्य शास्त्र दे प्रमुख विद्वान आचार्य विश्वनाथ दा कहना है कि जदों वी हिंदू रजनी प्रदोष अध्वांत वास रहा, प्रातः मध्य अहन मृगया शैल ऋतु वन सागर रहा। संस्कृत साहित्य की शुरुआत वेदा तो हुंदी है अते अथर्व वेद विच गर्मी, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर अते वसंत नामक 6 रुत्तां दा जिक्र किया गया है। ग्रीष्मस्ते भूमे वर्षाणी शरद हेमंतः शिशिरो वसंतः ऋतवस्ते विहिता हायनीर अहोरात्रे पृथ्वी नो दुहाताम। साल अपने निरंतर अंतराल दे नाल 6 हिस्सों विच वंडिया होया है। ये 6 हिस्से 6 रुत्तां ही हन जो कि इस संसार विच नियमित तौर ते विशाल चक्कर दी तरह घूमदियां हन। हर रुत विच कुदरत एक मनमोहक नवा रूप अते समा धारण करदिया दुनियावी लोकां लई दर्द या खुशी का कारण बनती है। अविरत गति वर्षम षटसु भागेशु भिन्नम भ्रमति भुवि विशालम चक्र नेमी क्रमेण प्रकृति अभिव्रणीते नूतनम कांतावेशम वितरति खलु कालो दुख सौख्यानी लोके। विश्व साहित्य दे सब तो प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद विच वर्णन प्राप्त हुंदा है कि जिस वेले परम पुरुष विराट परमेश्वर ने सृष्टि दी उत्पत्ति रूप यज्ञ दी शुरुआत कीती तां बसंत रुत इस यज्ञ दा घिओ बनिया अते ग्रीष्म ऋतु इस यज्ञ दा बालन अते शरद ऋतु इस यज्ञ दी हवि बनी, भाव इन्हां रुत्तां दी उत्पत्ति इस यज्ञ तो होई। यत पुरुषेन हविषा देवा यज्ञम अतन्वत वसंतो अस्य आसीद आज्यम ग्रीष्म इधमः शरद हवि। जेकर गल ग्रीष्म रुत दी करिए तां यजुर्वेद ने इस रुत दा संबंध ज्येष्ठ अते आषाढ़ महीने नाल कीता है। शुक्रश्च शुचिश्च ग्रैष्मौ ऋतु। वेदां तो बाद संस्कृत कवियां ने इन्हां रुत्तां दा जिथे अपने काव्य ग्रंथां दे विच उल्लेख कीता है उत्थे इन्हां रुत्तां नूं आधार बना के ऋतु संहार, ऋतु चक्रम, ऋतु वर्णनम जिहे शलाघा योग ग्रंथा की रचना भी की गई है।

0: च पल्लवानी जीवन्ति मीनः सलिले कथंचित सरन्ति कूर्मा विकली भवन्तः। इंज स्पष्ट है कि संस्कृत साहित्य विच ग्रीष्म रुत दा वर्णन बहुत ही सटीक रूप विच कवियां ने प्रस्तुत करदियां मनुखी अते पशु पक्षियां दे जीवन ते इस दे प्रभाव नू उलीकिया है।
1: हुणे तुसी सुन रहे सी प्रोग्राम साहित्य सुधा, जिस विच अज दा विषय सी संस्कृत साहित्य विच ग्रीष्म ऋतु दा वर्णन। वार्ताकार सन डॉक्टर विशाल भारद्वाज।
2: परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन, ये परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच। परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया।
0: लड़ीवार नाटक होया

Hi dear friends, welcome to Lamhe program with me, your RJ Chetan. Social networking है क्या आखिर? Social networking दोस्तों, परिवार, सहपाठियों यानी classmates, ग्राहकों और ग्राहकों के साथ संबंध बनाने के लिए internet आधारित social media कार्यक्रम का उपयोग है. Brand पहचान और वफादारी बढ़ाने के लिए marketers social networking का उपयोग करते हैं. लोग सामाजिक नेटवर्क का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि सामाजिक नेटवर्क लोगों को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जुड़े रखने में मदद करते हैं और ये पता लगाने का एक आसान तरीका है कि आपके सामाजिक मंडली में हर दिन क्या हो रहा है. इंटरनेट पर मज़ेदार और दिलचस्पी चीज़ों को खोजने के लिए सोशल नेटवर्क का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, क्योंकि अक्सर आपके मित्र और परिवार आपके जैसे ही कई हितों को साझा करेंगे. आज सबसे लोकप्रिय सोशल नेटवर्क क्या है? बहुत सारे हैं दोस्तों. सोशल मीडिया आज भी 1 अरब से अधिक उपयोगकर्ताओं के साथ सबसे बड़ा और सबसे लोकप्रिय सोशल नेटवर्क है. कई नाम आपको दे सकते हैं, मगर आपको खुद मालूम है कि ये क्या क्या सोशल मीडिया है.

देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com। सोशल नेटवर्किंग साइट आज दुनिया भर में एक दूसरे से जुड़ने का सबसे अच्छा साधन है। आज सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि बूढ़े और बच्चे भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के दीवाने हैं। लेकिन सोशल नेटवर्किंग साइट्स को प्रयोग करने वाले लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि एक आपकी एक छोटी सी गलती आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। आज सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर धमकियां, ब्लैकमेलिंग और किडनैपिंग जैसे कई मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स को बंद या ब्लॉक कर दें। अगर यदि आप इन सोशल साइट्स का सुरक्षित तरीके से प्रयोग करेंगे तो ये साइट्स बिल्कुल सुरक्षित है और बहुत काम के भी है। दोस्तों, अब जानिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स के लाभ। सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से आप बस एक फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते ही एक नई दोस्ती का डोर शुरू हो जाता है। सोशल नेटवर्क का प्रयोग करने से आप अकेलेपन का शिकार होने से बच सकते हैं। कई बार सोशल नेटवर्किंग साइट्स आपके बिजनेस को भी फायदा पहुंचा सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट से आप हमेशा व्यस्त रह सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आपको यह एहसास होता है कि आपको कोई सुन रहा है। इसके प्रयोग से आपको दोस्तों की कमी महसूस नहीं होती है। सामाजिक नेटवर्क के उदाहरण बहुत है। तो दोस्तों, अभी तक आपने सोशल नेटवर्किंग साइट के फायदे सुने हैं, अब सुनिए इसके नुकसान।

दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com। सोशल नेटवर्किंग के ये नुकसान है दोस्तों कि सोशल नेटवर्किंग आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से परेशान कर सकता है। एक प्रकार

0: अपने जीवन के महत्वपूर्ण चीज़ों को आप भूल जाते हैं या अपनी ज़िंदगी से काट लेते हैं, ये सही नहीं है। कई बार सोशल नेटवर्किंग साइट से आपका डेटा और फोटो चोरी कर लिया जाता है, जिनका प्रयोग गलत कामों के लिए किया जा सकता है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स आज दुनिया भर में एक दूसरे से जुड़ने का सबसे अच्छा साधन है। आज सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि बूढ़े और बच्चे भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के दीवाने हैं, जो कि मैंने आपसे पहले ही बता चुका हूँ। दोस्तों, सोशल साइट्स पर हमेशा अपनी पूरी जानकारी न अपलोड करें, यहाँ से आपकी जानकारी को चोरी किया जा सकता है। अपने पर्सनल फोटो को सोशल साइट्स पर अपलोड न करें, खासकर महिलाएं, गर्ल्स। ज़्यादातर 18 ईयर्स या 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अपने गलत जानकारी अपलोड करके इन साइट्स पर अकाउंट बना लेते हैं। अगर आपके बच्चे भी ऐसे कर रहे हैं तो उन्हें ऐसा करने से रोकें। सोशल साइट्स के द्वारा बने दोस्तों को आप अपनी पर्सनल जानकारी न दें। यह हमेशा याद रखें कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स नए लोगों से मिलने और सबसे जुड़ने का बस एक माध्यम है, इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा न बनाएं। आपके अपने लोग सोशल साइट्स के माध्यम से आपसे जुड़े रहते हैं, इसीलिए इन साइट्स का प्रयोग आप नए लोगों से जुड़ने के लिए या अपनी नेटवर्किंग के दायरे को बढ़ाने के लिए करें, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ को दूसरों पर जाहिर न होने दें। सोशल मीडिया साइट्स का प्रयोग लगातार लंबे समय तक न करें। कई बार लोग पूरा दिन इस साइट्स पर ही बिता देते हैं, ऐसा न करें। ऐसा करने से आपके निजी ज़िंदगी में बहुत नुकसान हो सकता है। इतना ही नहीं, आपका हेल्थ भी अफेक्ट हो सकता है और आपके रिश्ते भी। तो दोस्तों, यह थे कुछ प्रोस एंड कॉन्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग। इसके साथ ही आज का लम्हे प्रोग्राम यही ख़त्म होता है। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी, तब तक आप चेतन को दीजिए इजाज़त।
1: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

0: मुंह मिठा करन लगे हो, नौकरी लागे लगदी है, मुबारक फेरते। पर किते उन्होंने नौकरी देन तो पहला कोई पैसे जमा करवाउन दी गल ता नहीं कही? जे कही है तो फिर जागरूक बनो, ध्यान रखो, क्योंकि आजकल ए ठगण दे नवे तरीके ने, क्योंकि नौकरी देन वाले कदे भी पैसे नहीं मांगदे।
1: हेलो,
2: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
3: अजी कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो

0: हेलो,
1: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाए। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
2: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
3: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, DRM 864 किलोहर्ट्ज़, FM बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज़, 100.9 मेगाहर्ट्ज़ ते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा जलंधर केंद्र है। रात दे 8:15 बज रहे ने और हुन पेश है प्रोग्राम सुलसा देता। इस प्रोग्राम दे तहत अज तुसी मधु मोहन दी आवाज़ दे विच उन्हां दे गाए गीत सुनोगे।

0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज़, 100.9 मेगाहर्ट्ज़ ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। 8:45 ते तुसी सुनोगे समाचार संध्या, 9 बजे सुनोगे न्यूज़ एट 9, 9:15 स्पॉटलाइट प्रोग्राम, 9:30 संस्कृति भारती, 10 बजे दिल्ली का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम जिदे तहत कर्नाटक शैली च सैक्सोफोन वादन तुसी सुनोगे कलाकार US प्रसाद वालों। ये सारे प्रोग्राम्स तुसी सुनोगे साडे दिल्ली केंद्र तो।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंच रहे हैं। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न, सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक गणराज्य की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और

0: उसे मंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की स्लोवाकिया की पहली यात्रा के लिए ब्रातिस्लावा में भारतीय समुदाय में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: स्लोवाकिया का भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत के लिए विशेष तैयारी कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव के अनुसार भारतीय समुदाय में उत्साह देखा जा सकता है। राजधानी ब्रातिस्लावा में भारत और स्लोवाकिया के झंडे लगाए जा रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में दोनों देशों के बीच यात्रा और आपसी आदान प्रदान बढ़ने से उत्साह अधिक है। मध्य यूरोप में ब्रातिस्लावा की रणनीतिक स्थिति से भी भारत के साथ पर्यटन संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को सदैव गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उपप्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई।
2: आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया। अलग अलग देशों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को भी सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया है और उस व्यापक विचार विमर्श से हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। उनकी आय बढ़ाने में और आजीविका बेहतर करने में भी निश्चित तौर पर आज की चर्चा बहुत सहयोगी होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जन

0: सांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है, जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। नागपुर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में बताया कि उनका मंत्रालय देश भर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। गुजरात के पोरबंदर में श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष के दौरान देश का केंद्रीय बजट दोगुना हुआ है और लोगों पर कर का बोझ काफी कम हुआ है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट रोजगार डैशबोर्ड विकसित किया गया है। अब तक 12,000 युवा इस पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में देश में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरो खबैम शरद चंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
2: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 2,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
1: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमरीका और इसराइल के संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। पंजाब के लुधियाना में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्च कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा।

0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आईगॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य एनटीए परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पेन और पेपर पर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहले जत्थे का प्रस्थान समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ये जत्था 15 जून को नई दिल्ली से रवाना होगा और नाथुला मार्ग से यात्रा करेगा। मणिपुर पुलिस ने कहा है कि कुछ लोग और समूह अपुष्ट तथा भड़काऊ सामग्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वो अफवाहों या अपुष्ट सामग्री पर भरोसा न करें और इन्हें साझा न करें तथा सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री के प्रति सावधानी बरतें। प्रशांत महासागर में अलनीनो की स्थिति बनी हुई है और दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान इसके और प्रबल होने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि जून 2026 तक मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र तल का तापमान अलनीलों के लिए जरूरी सीमा से अधिक हो गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिनों में उड़ीसा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूर्वी राजस्थान में आंधी तूफान की भी संभावना है। धर्मशाला में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7वें ओवर में एक विकेट पर 49 रन बना लिए हैं। रहमानुल्ला गुरबाज ने 102 रन की पारी खेली। हर्ष दुबे और गुरनूर बरार ने 3-3 विकेट लिए। बारिश की वजह से मुकाबले को 25-25 ओवर का कर दिया गया है। मैनचेस्टर में महिला T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हराया। कल शाम 7 बजे भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंचे। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में वायुसेना की AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन हुआ संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को दिया 195 रन का लक्ष्य। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to reach Nice tonight on the first leg of two-nation visit to France and Slovakia to hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates tomorrow. 5 Indian Air Force personnel killed in AN-32 aircraft crash at Jorhat in Assam. 5-day BRICS Agriculture Conference ends with unanimous adoption of Indore Declaration, focusing on food security and smart technology in farming. Lieutenant General Dhiraj Seth appointed as country's next army chief. And in cricket, Afghanistan set a target of 195 runs for India in rain-marred first ODI of 3-match series in Dharamshala. Prime Minister Narendra Modi will reach the French city of Nice tonight, marking the beginning of his 6-day visit to France and Slovakia. The visit to the two European countries aims to further deepen bilateral ties and reaffirm India's commitment towards advancing its broader strategic

0: नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, एक तारीख जो हमें हर साल याद दिलाती है कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, उसके अंश हैं। और जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो जल की बात करना जरूरी हो जाता है। पर्यावरणविद अनुपम मिश्र का एक विचार बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें वो कहते हैं कि जिस समाज ने अपने जल को सहेजना छोड़ दिया, उसने मानो अपनी स्मृति भी खो दी। उनके ही दर्ज किए हुए कुछ विचार बिंदुओं को आज के संपादकीय में अपना स्वर दे रहे हैं अभिनय श्रीवास्तव। जल की जड़ें, संस्कृति की धाराएं।
1: मौसम विशेषज्ञ बताते हैं कि देश को हर साल मानसून का पानी निश्चित मात्रा में नहीं मिलता, उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि प्रकृति ISI मार्क का तराजू लेकर पानी बांटने निकलने वाली पनिहारिन नहीं है। तीसरी चौथी कक्षा से हम सब जल चक्र पढ़ते हैं। अरब सागर से कैसे भाप बनती है, कितनी बड़ी मात्रा में वो नौतपा के दिनों में कैसे आती है, हमारा साधारण किसान भी जानता है। ऐसी बड़ी दिव्य व्यवस्था में प्रकृति को मानक ढंग से पानी गिराने की परवाह नहीं रहती, फिर भी आप

0: की एक रूपता बनी रहती है। पानी की राजनीति ने प्रकृति के इस स्वभाव को भूलने की अक्षम्य गलती की है, इसलिए हम प्रकृति से क्षमा नहीं पा सके हैं। बड़ी गलती हमसे ये हो रही है कि हमने पानी रोकने के समय सिद्ध और स्वयं सिद्ध तरीकों को पुराना या परंपरागत करार देकर छोड़ दिया है। यदि कुछ 1,00,000 साल से प्रकृति ने पानी गिराने का तरीका नहीं बदला है, तो हम भी उसके सेवन के तरीके नहीं बदल सकते। तालाब बावड़ी जैसे पुराने तरीकों की विकास की नई योजनाओं में बहुत उपेक्षा हुई है। न सिर्फ शहरों में बल्कि गांवों में भी तालाबों को समतल कर मकान, दुकान, मैदान, बस स्टैंड बना लिए गए हैं। जो पानी यहाँ रुक कर साल भर ठहरता था, उस इलाके के भूजल को ऊपर उठाता था, उसे हमने नष्ट कर दिया है। उसके बदले हमने आधुनिक ट्यूबवेल, नलकूप, हैंडपंप लगाकर पानी निकाला है, डालना बंद किया और निकालने की गति राक्षसी कर दी। लेकिन अब प्रकृति हमें हर साल चिट्ठी भेजकर याद दिला रही है कि हम गलती कर रहे हैं, इसकी सजा भुगतनी होगी। हमें भूलना नहीं चाहिए कि अकाल, सूखा, पानी की किल्लत, ये सब कभी अकेले नहीं आते। अच्छे विचारों और अच्छे कामों का अभाव पहले आ जाता है। हमारी धरती सचमुच मिट्टी की एक बड़ी गुल्लक है। इसमें 100 पैसा डालेंगे तो 100 पैसा निकाल सकेंगे, लेकिन डालना बंद कर देंगे और केवल निकालते रहेंगे तो प्रकृति चिट्ठी भेजना भी बंद करेगी और सीधे सीधे सजा देगी। आज ये सजा सब जगह कम या ज्यादा मात्रा में मिलने लगी है।
1: विश्व पर्यावरण दिवस पर संस्कृति भारती का ये संपादकीय स्मरण है उस चेतना का, जो हमें सिखाती है कि जल सिर्फ जीवन देता नहीं, जल ही जीवन है। प्रकृति की बात हुई, प्रकृति और मनुष्य के बीच के संतुलन का नाम ही योग है। एक ऐसी विद्या जो महज देह को नहीं, चेतना को साधती है, और आज यही योग विश्व के खेल मंचों पर अपना परचम फहरा रहा है। ओलंपिक में योगासन को शामिल करने की दिशा में गंभीर प्रयास चल रहे हैं। इस रोचक यात्रा के बारे में बता रहे हैं योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य, जिनसे बातचीत की है आनंद श्रीवास्तव ने। परंपरा से प्रतिस्पर्धा तक,
2: हजारों वर्ष पहले भारत की धरती पर जन्मी एक साधना जिसने मन को स्थिरता दी, शरीर को शक्ति दी और आत्मा को संतुलन। ऋषियों के आश्रमों से शुरू हुई ये यात्रा आज विश्व के खेल मंचों तक पहुंच चुकी है। एक समय था जब योग केवल स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम माना जाता था, लेकिन आज योगासन प्रतिस्पर्धा का भी विषय है। खिलाड़ी कठिन आसनों में अपनी क्षमता, संतुलन, लचीलापन और मानसिक एकाग्रता का प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ हैं योगासन भारत के महासचिव और विश्व योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आदनी भाई आनंद जी, और आकाशवाणी का भी बहुत आभार।
2: 5,000 वर्ष पुरानी जो भारत की परंपरा है योग, जो ऋषियों महर्षियों के आश्रमों से शुरू हुई, वहां से लेकर यहाँ तक योगासन स्पोर्ट की जो यात्रा है, कैसे देखते हैं आप?
3: योग तो अनंत है और भारत की अध्यात्म और दर्शन का मूल तत्व है। बहुत विराट है, बहुत विशाल है और असीमित है, इसको बांधा नहीं जा सकता। परंतु योग के माध्यम से जो यात्रा समाधि तक जाती है, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंगों से होते हुए व्यक्ति मोक्ष तक पहुंचता है, उस परम तत्व तक पहुंचता है। उस 8 अंगों की यात्रा में तीसरा जो पायदान है वो उसका नाम है योग, आसन। और इन आसनों को हमने प्रतिस्पर्धा में लाने की जब बात की, तो हमने देखा कि प्रयास तो कई वर्षों से हो रहे थे, अलग अलग क्षेत्रों से हो रहे थे, परंतु उनकी जो दिशा थी वो वैज्ञानिक नहीं थी, वो स्पोर्ट्स परक नहीं थी, इस कारण वो स्पोर्ट्स का हिस्सा नहीं बन पा रहे थे। और ये प्रयास देश में, दुनिया में कई स्थानों पर धीरे धीरे हो रहे थे और उसमें अवैज्ञानिकता भी बहुत अधिक थी। तो हमने उसको परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पावन निर्देशन में, स्वामी रामदेव जी महाराज के

0: निर्देशन में पूरा इसका डॉक्यूमेंटेशन किया और क्या क्या होना चाहिए, इसमें क्या वैधानिकता है, क्या इसकी सावधानियां हैं और इसको किस प्रकार हम विज्ञानपरक बनाते हुए खेल विज्ञान के साथ जोड़ते हुए आगे कैसे बढ़ सकते हैं। इस पर बहुत काम करने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि इतनों की, और वो भी निर्धारित श्रृंखला, वो निर्धारित की जाए, उसको कैटेगराइज किया जाए डिफिकल्टी के लेवल पर, ए मायने सामान्य, बी मायने उससे और कठिन, सी मायने और कठिन, डी मायने उससे भी कठिन और ई मायने परम कठिन आसन। ऐसे हमने कैटेगरी तय की और जो अपनी क्षमता के अनुसार कर सके उनकी आयु भी तय की, उनकी क्षमताओं का चयन वो स्वयं करें, उन आसनों में से करें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट करें। और उसमें महर्षि पतंजलि का जो सूत्र है, क्लासिकल जो सूत्र है, उसको मॉडर्न के साथ हमने जोड़ने की कोशिश की, वो था स्थिर सुखम आसनम, आप डूइंग द पोस्चर विद ईज इज कॉल्ड आसन। तो हमने इसके ऊपर काम करते हुए इसको पहले वैज्ञानिकता के साथ जोड़ने का प्रयास किया।
1: आकाशवाणी के बहुत सारे श्रोता ये समझना चाहेंगे कि जो योग है और योगासन खेल, इसमें मूलभूत अंतर क्या है?
0: योगासन योग की शुरुआत है और योग योगासन की परम सीमा है, बस यही अंतर है। तो योग शरीर को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया है और योगासन अपनी क्षमताओं को विकसित करते हुए सीमा से पार जाने की एक प्रकाष्ठा है। योग आपको मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य देता है और योगासन आपको उस दिशा में ले जाने की प्रथम सीढ़ी के रूप में काम करता है। योगासन बीजारोपण है और योग परम समाधि का तत्व है।
1: जब आपने पहली बार योगासन स्पोर्ट को लेकर चर्चा की या इसके महासंघ की रूपरेखा बनाने का प्रयास किया और जब इसको खेलो इंडिया या क्षेत्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर शुरू करने की कोशिश की, किस तरह की चुनौतियां आई और उस समय क्या सोच थी, क्या लक्ष्य था?
0: ये जो मूल रूप से विषय आया, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का विषय था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग श्री स्वामी रामदेव जी से चर्चा की कि इसको बच्चों तक योग को कैसे पहुंचाया जाए, तो उस वार्ता में ये निश्चित हुआ कि योगासन को खेल का रूप दिया जाए। और आज चुनौतियां बहुत अधिक ये थीं कि बच्चे आज स्पोर्ट्स के मैदान में नहीं पहुंच पा रहे थे और जो खेल के मैदान थे वो संकुचित होते जा रहे हैं, वहां पर बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बिल्डिंग्स अब वो स्थान ले रही हैं। ऐसे में योगासन एक ऐसी विधा है, ऐसा खेल है जो आप घर बैठे 2x6 फीट का एक स्थान तय करें, ना कॉस्ट इफेक्टिव कोई खेल हो सकता है भारतीय परंपरा के अंदर, तो मुझे लगता है वो स्वदेशी खेल योगासन ही हो सकता है।
1: 2023 के गुजरात में जो नेशनल गेम्स हुए, काफी समय के बाद हुए थे, वहां योगासन नेशनल गेम्स में पहली बार शामिल हुआ। आपसे ये समझना चाहेंगे कि योगासन स्पोर्ट को प्रमोट करने वाला भारत में जो, उसकी थोड़ी भूमिका बताएं कि वो किस तरीके से ग्रास रूट लेवल पे स्काउटिंग करता है बच्चों को और कोचेस किस तरीके से उनको आइडेंटिफाई करके उनको नर्चर करते हैं।
0: योगासन को आगे बढ़ाने में मैं समझता हूँ ग्राउंड लेवल पर हमें सबसे बड़ी कठिनाई, टेक्निकल हैंड्स नहीं थे। योग सिखाने वाले लोग थे, सामान्य पोस्चर करने वाले लोग थे, परंतु उस पोस्चर में उनको 1 मिनट खड़ा रहना बड़ा कठिन है साहब। स्पोर्ट्स के दृष्टिकोण से किया जाता है तो उसकी मास्टरी का लेवल अलग होता है। चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, आपका स्थायित्व जिसे कहते हैं स्टिलनेस, वो बहुत महत्वपूर्ण है, स्थिरता। तो 1.5 मिनट करने वाला बच्चा ही 1 मिनट परफेक्शन से कर पाता है, क्योंकि उसको माउंटिंग और डिसमाउंटिंग दोनों चीजें उसमें काउंट होती हैं। और ये जब शिकायतें हमारे पास आने लगी कि बच्चों को इंजरी बहुत हो रही है, तो हमारा फोकस उस पर रहा कि पहले अच्छे कोचेस तैयार किए जाएं, और उसमें हमारे बहुत से जिज्ञासु लोगों ने आगे बढ़कर हमसे ट्रेनिंग लेने का क्रम शुरू किया और वहां से शुरुआत हुई। आज 630 जिलों में ये हमारी खेल संघ है, उनका ट्रेनिंग का कार्यक्रम हुआ है। लगभग यदि मैं यूं कहूं कि 2000 से अधिक हमारे पास कोचेज हैं, ट्रेंड कोचेज हैं, लगभग 2000 से अधिक हमारे पास ट्रेंड रेफरीज हैं।
1: इससे पहले कि हम चर्चा में आगे बढ़े, आर्या जी ने दो चीजें बोली, माउंटिंग और डिसमाउंटिंग। हम अपने श्रोताओं के लिए बता दें कि किसी भी आसन को शुरू करने से पहले नमस्कार की मुद्रा बनाना वो माउंटिंग है और आसन समाप्त करने के बाद वापस से नमस्कार की मुद्रा बनाना ये डिसमाउंटिंग है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले साल आपने एशियन योगासन चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में किया, नेशनल गेम्स के बाद एक बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहली बार एशियन योगासन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। वहां कितने देशों ने हिस्सा लिया और किस तरह का रिस्पांस मिला जब आपने अलग अलग एशियाई देशों को पत्र लिखा कि योगासन की चैंपियनशिप हो रही है और आप अपना दल भेजिए?
0: एशिया में बड़ा जो सेगमेंट है वो मिडल ईस्ट एशिया का है और बड़ी भागीदारी उनके माध्यम से हुई। उसमें 21 देशों की भागीदारी उसमें रही, ईरान से लेकर बहरीन से लेकर ओमान से लेकर जॉर्डन से लेकर, बड़े अच्छे अच्छे देशों ने, और बड़ी जिनको कहा जाता है कि, और सबसे बड़ी बात है कि योगासन को लोगों ने धर्म, मजहब, जाति, कास्ट और क्रीड से ऊपर रखकर देखा और उसमें सहभागिता की और पूरी खेल भावना के साथ।

0: सहभागिता की।
1: गुजरात के अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन किया, 78 देशों के 700 से ज्यादा एथलीट उसमें शामिल हुए। इस आयोजन के पीछे की सोच क्या थी, कब आपको लगा कि अब वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन होना चाहिए?
0: 78 कंट्रीज का पार्टिसिपेशन अपने आप में अद्भुत है साहब। तो मैं सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहूंगा और उनका योग के प्रति प्रेम को देना चाहता हूँ। दूसरा, पूरे विश्व में परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज की जो पहचान है उसका एक विश्वास था लोगों में कि ये संस्था ऐसी नहीं है कि जहां जाकर हमारे साथ कोई अन्याय होगा, कोई बायसनेस होगी, जहां लेवल अच्छा नहीं होगा, जहां चैंपियनशिप का लेवल अच्छा नहीं होगा, तो एक वो संबल था।
1: कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं, आपसे ये भी समझना चाहेंगे विश्व चैंपियनशिप के बाद अब लोग जानना चाहते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल और ओलंपिक्स जैसे खेलों के महाकुंभ में योगासन खेल के पहुंचने की क्या संभावनाएं हैं?
0: राष्ट्रमंडल खेलों में जाने की जो संभावनाएं हैं भारत के स्तर पर अत्यंत अच्छी है, बहुत अच्छे से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं और जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि इस दृष्टिकोण से मैं ये बात कह रहा हूँ। 78 कंट्रीज में से 25 से अधिक जो देश थे वो पहले से ही कॉमनवेल्थ कंट्रीज थे, और जैसे ये बात हमारे माननीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी को पता चली, उन्होंने कहा कि अरे 25 से अधिक देश तो अभी हैं, हम तो बहुत अच्छे से पिच कर सकते हैं अपनी ओर से, और उन्होंने आश्वस्त किया गुजरात के अपने कार्यक्रम में कि योगासन को आने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में हम निश्चित रूप से अवसर दिलवाने का प्रयास करेंगे।
1: कार्यक्रम के अंत में आप उन युवाओं को क्या संदेश देंगे जो आकाशवाणी का ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, जो योग तो करते हैं लेकिन योगासन खेल को अभी अपना नहीं पाए हैं?
0: मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि योग भी करें, योगासन खेल को भी ज्वाइन करें। योगासन खेल आपको संबल भी देगा, आपको नए भविष्य के साथ जोड़ेगा, नई चुनौतियों के साथ लड़ने की ताकत भी देगा, और आपको अपॉर्चुनिटीज भी देगा, जॉब्स भी देगा, कैश रिवार्ड भी देगा, और एक अच्छा सुनहरा भविष्य भी देगा। यदि योग और योगासन का संबल लेकर आप आगे बढ़ेंगे, भारत का यह सुनहरा खेल, स्वदेशी खेल, ये दोबारा भारत को ना केवल सोने की चिड़िया बनाएगा, सोने का शेर बनाकर आगे लेकर जाएगा और उस दहाड़ को पूरी दुनिया सुनेगी।
1: योग केवल शरीर को मोड़ने की कला नहीं है बल्कि स्वयं को गढ़ने की प्रक्रिया है। आज की चर्चा से यह स्पष्ट है कि योगासन केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत नहीं बल्कि एक उभरता हुआ वैश्विक खेल भी है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से लेकर ओलंपिक्स तक के सपनों तक योगासन की यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। डॉक्टर जयदीप आर्य, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए और श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
2: विश्व योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य से आनंद श्रीवास्तव की ये बातचीत बताती है परंपरा से प्रतिस्पर्धा की ये यात्रा भारत की सांस्कृतिक शक्ति का जीवंत प्रमाण है। योग से हम अंततः आनंद और शांति की तरफ ही बढ़ते हैं, और ऐसा ही कुछ होता है जब हम संगीत से जुड़ते हैं। 21 जून विश्व संगीत दिवस, यानी वो दिन जो पूरी दुनिया को एक सुर में बांधने का प्रयास करता है। संगीत किसी एक काल का नहीं होता, वो पीढ़ियों के बीच बहती हुई एक नदी है, कभी शांत, कभी उफनती, कभी कलकल करती। और जब ये नदी परंपरा की जड़ों से पोषण लेकर आधुनिकता के विस्तार में फैलती है तो जन्म होता है फ्यूजन का। दिल्ली के इसी सांगीतिक परिदृश्य से उभरा है एक अनोखा बैंड कुल्फी। नाम में जितनी मिठास है संगीत में उतनी ही गहराई। विश्व संगीत दिवस के उपलक्ष्य में हमने की इन कलाकारों से एक संवादी मुलाकात।

0: आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में पांच ऐसे युवा चेहरे हैं जिनको देखकर उनके संगीत की गंभीरता का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने हमें उससे रूबरू कराया है और आज हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम संभव के पास, जो कुल्फी बैंड के लीड वोकलिस्ट हैं। संभव, आपके सभी साथियों का आकाशवाणी में स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहला सवाल तो यही कि ये जो नाम है कुल्फी, इस नाम के पीछे

0: क्या ऐसा आइडिया था जब आपने इसका नाम कुल्फी बैंड रखा?
1: जी, हम बहुत समय तक हमारे बैंड का नाम सोच रहे थे और हम सब किरोड़ीमल कॉलेज के छात्र हैं। वहाँ पे एक संगीत समिति है म्यूज़ॉक नाम की, हम सब उसी से निकले हैं, कुछ अभी भी है उसमें। और ऐसे DU म्यूज़िक सर्किट में बहुत सारे फेस्ट होते हैं एंड कॉम्पिटिशन्स होते हैं। वहाँ पे IIT कानपुर के फेस्ट होते हैं हर साल, कॉम्पिटिशन होते हैं। हम वहाँ पे बस बैठे थे और नाम सोच रहे थे, और वहाँ पे कोई एक दोस्त कोई कुल्फी खा रहा था वहाँ पर। फिर वो बोला कि यार कुल्फी रख देते हैं नाम। लगा कि ये तो बड़ा स्वीट सा क्यूट सा नाम है। ठीक है,
0: संभव जब आप म्यूजिक बना रहे होते हैं, कोई गाना चुन रहे होते हैं, एक तो लिरिक्स आप कैसे उसके चुनते हैं, वो लिरिक्स कौन लिखता है, और फिर आप उसको कैसे सेट करेंगे, कैसे आप उसको तय करते हैं?
1: जैसे हमने कहा कि हम एक फ्यूजन बैंड अगर हमें कहें तो वो गलत नहीं होगा। हम इंडियन क्लासिकल शास्त्रीय संगीत और वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस, ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस को मिक्स करके साउंड को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं इस बैंड में। कुछ जैसे हमारा गाना मोरे मंदिर है, वो एक ऑलरेडी ट्रेडिशनल बंदिश है राग मेघ में, जो बड़े गुलाम अली खान साहब जी ने बनाई है, उनकी बंदिश है। हमने उसको रीइंटरप्रेट करा है हमारे एक कंटेम्प्रेरी स्ट्रक्चर में और उसको एक सॉन्ग स्ट्रक्चर में बांधने की कोशिश करी है। वैसे ही गाया था रसिक बलमा, वो हमने खुद बनाया है, हमारे एक दोस्त हेमांग कारगीत ने वो लिखा है, धुन हमने बनाई है। तो वो गाना हमने खुद बनाया है, वो बंदिश स्ट्रक्चर ही फॉलो करता है जो शास्त्रीय संगीत की बंदिश स्ट्रक्चर रहता है। हमें बनाते बनाते लगा कि इसमें एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस अगर मिल जाए उसमें और हम उसका एक वर्स उसमें डालें तो वो अच्छा लग सकता है। और कोई एक सेट पैटर्न नहीं है, कोई एक सेट फॉर्मूला नहीं है, जहाँ पे भी लग रहा है कि इसकी गुंजाइश है और ये सुनने में अच्छा लग सकता है, वो हम वहाँ पे कर करके परख परख के।
0: आपके अपने अनुभव में, जितना अनुभव अभी आपको हुआ है, इन जनरल अगर हम ये म्यूजिक सीन की इस पूरे इस परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं, अगर हम क्या बेहतर होना चाहिए जिससे आप जैसे लोग इस तरह का संगीत कर रहे हैं, बैंड बनाकर कर रहे हैं, इंडिविजुअली कर रहे हैं, किन चीजों की कमी आपको लगती है जो थोड़ा बेहतर होता तो शायद आप जैसे और लोग आगे आते, संगीत और संस्कृति के क्षेत्र से जुड़ते?
2: हमें जितना समझ में आता है, एक जो दिक्कत लाइव म्यूज़िक वेन्यूज़ की कमी आ गई है बहुत ज़्यादा, एटलीस्ट दिल्ली में भी।
0: ऐसा क्यों?
2: अब वो ज़्यादा फाइनेंशियल एस्पेक्ट है। आई थिंक पैंडेमिक के बाद लाइव म्यूज़िक वेन्यूज़ थोड़े से स्थिर हो गए थे, और अब वही चार पांच जगहें हैं जहाँ पे हम लोग भी ढूंढते हैं चीज़ें। तो बेसिकली बहुत सॉलिड सैचुरेशन हो गया है। उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट म्यूज़िक की आउटरीच, उसके फोरम आई डोंट बिलीव इतने एग्जिस्ट करते हैं, या अगर करते हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं रहे हैं।
0: शौर्य आप बताइए।
3: तो इंडिया में मैंने ये भी नोटिस किया है कि लोगों की मेंटालिटी होती है कि म्यूजिक इज समथिंग दैट गोज ऑन इन द बैकग्राउंड। आर्टिस्ट को जो रिस्पेक्ट नहीं मिलती फॉर द अमाउंट ऑफ एफर्ट दे हैव पुट इन टू लर्न देयर आर्ट एंड टू डू व्हाट दे आर डूइंग इज ऑफन वेरी डिफिकल्ट।
0: कुछ एग्जांपल दे सकते हैं आप जो बात आप कह रहे हैं कि आपको लगता है कि उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं मिलती है बैकग्राउंड म्यूजिक जैसा लोगों को लगता है?
3: ओके, सो आई विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ जैसे लाइव म्यूजिक का ही सेट अबाउट लाइव म्यूजिक वेन्यूज। तो लोगों को बाहर जाके खाना खाना होता है, उनको लाइव म्यूजिक सुनना होता है, पर लोगों को उसके लिए पैसे नहीं देने होते। जैसे पाँच सौ रुपये एक फैमिली के कॉन्ट्रीब्यूशन से एक आर्टिस्ट का बहुत बिग इम्पैक्ट पड़ सकता है वेन इट्स डन इन लार्ज नंबर्स। तो ये मेंटेलिटी इज समथिंग दैट आई हैव सीन हैपन इन इंडिया।
2: अलोंग विद ऑल ऑफ दैट, ओरिजिनल म्यूजिक को ज़्यादा आई डोंट थिंक लोग सुनना चाहते हैं अब। हमें भी जैसा शौर्य बोल रहा है, लोग खाना खाने आते हैं और उनको म्यूज़िक फ्री में सुनना है। हमें बहुत बार ऐसा करना पड़ा है कि हमें अपना सेट इस ये लेकर बनाना पड़ा है कि ऐसा ना हो कि लोग उठ के फिर खाना खाने चले जाएं, क्योंकि हम चाहते हैं लोग बैठे रहें और हमें सुने। 1-1.5 घंटा सिर्फ खड़े होकर एक बैंड को सुनना अब बहुत छोटे आर्टिस्ट के साथ नहीं होता है। ये आपको एक लेवल पे, आपको सर्किट में कम से कम 10-10 15-15 साल रहना पड़ता है ताकि लोग आपको 1.5 घंटा बस खड़े होकर सुने उनका ओरिजिनल म्यूजिक। पर कवर्स उन्हें भी करने पड़ते हैं
0: तो अभी आप लोगों ने क्या तरीका निकाला आदित्य, जैसे आप जो बात कर रहे हैं, जब कवर्स का जिक्र आपने
2: जी।
0: किया, तो आपको लगता है कि कवर्स ज्यादा पॉपुलर हैं
2: जी हैं,
0: रादर देन योर ओन कॉम्पोजिशंस?
2: बिल्कुल हैं, पर हम थैंकफुली उस तरीके में इस चीज़ को टैकल करते हैं कि हम कवर्स अपने तरीके में अरेंज कर लेते हैं।
0: अच्छा,
2: हम बोलते भी हैं वी कुल्फी फाइव डेट।
0: जैसे भी आपने एग्जांपल दिया संभव, जो बंदिश है बड़े गुलाम अली खान साहब की, उसको आपने थोड़ा रीअरेंज किया, उसे
1: जी
0: आपने एक नया
1: जी
0: टच दिया।
1: उसी आइडिया को लेके मेन स्ट्रीम

कुल्फी जैसे बैंड हमें याद दिलाते हैं कि परंपरा और आधुनिकता के बीच कोई दीवार नहीं है, बल्कि एक सेतु है जिसे संगीत बनाता है। विश्व संगीत दिवस पर इन कलाकारों को संस्कृति भारती की शुभकामनाएं।

0: बीती 8 जून को ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी ने 90 वर्षों का सफर पूरा किया। वो स्वर जो 90 वर्षों से इस देश की धड़कन बना हुआ है, और उसके साथ साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था कस्तूरी, जिसने बीते 5 वर्षों में एक गंभीर सृजनात्मकता और सांस्कृतिक ऊर्जा का परिचय दिया है। इन दोनों के संयुक्त प्रयास से बीती 6 जून को नई दिल्ली में साहित्य अकादमी के सभागार में राम कथा में नृत्य का स्पंदन विषय पर मनाए गए कला पर्व ने हमारी सांस्कृतिक चेतना को और समृद्ध किया। भारतीय नृत्य परंपरा में राम कथा का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। भरतनाट्यम हो या कथक, ओडिशी हो या मोहिनीअट्टम, मणिपुरी हो या कुचिपुड़ी, हर शैली में राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जीवंत हो उठते हैं। इसी उत्सव से कुछ स्वरों, कुछ भावों, कुछ शब्दों के साथ इस लय में डूबे भक्ति की लय, नृत्य की भाषा। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कथक गुरु पद्मश्री शोभना नारायण ने राम कथा में निहित मानवता, करुणा और लोक मंगल के तत्वों पर प्रकाश डाला।
1: I would say it is a civilizational memory, just like Mahabharat. और उसमें वही राम कथा आज मॉडर्न युग में भी चल रहा है। एक्चुअली देयर मोर देन 36 to 40 वर्जन्स ऑफ द रामायण इटसेल्फ। रामायण का जो स्पंदन है, जो लय है, वो निरंतर है, वो शाश्वत है। आपको व्याख्या मिलती है किस तरह से आपके अंदर वो इमोशंस और भावनाएं हैं। और मैंने दो लाइन लिखी थी कैके का प्रसंग, कि कैके के कारण राम वन गए और इसी कारण वो राम बन भी गए।
0: कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओडिशी गुरु विदुषी शरण लॉविन ने अलग अलग रामायण परंपराओं का उल्लेख करते हुए उनके सांस्कृतिक और कलात्मक महत्व को बड़े विस्तार से बताया।
2: In Odisha, there's a literary tradition, obviously older, but literary, that's at least 500 years old. And what's unique or special about or significant is that in Odisha, all of the writers in Odia have interpreted many of the locations as being in Odisha.
0: भरतनाट्यम कलाकार श्रीधर वासुदेवन ने समाज की सौंदर्य चेतना और सांस्कृतिक मूल्यों की चर्चा की, जिसके आधार में रामायण है, राम कथा है।
3: नृत्य एक भाषा है और इस नृत्य को, इस भाषा को परिभाषित करने के लिए नाट्य का रूप हमें धारण किया है। और नाट्य के लिए विषय कुछ भी हो सकता है,

0: हमारे इस विषय की खोज में इस मार्ग को बहुत ही सुलभ बनाया है महाकवियों ने, महाआचार्यों ने, उसमें से महर्षियों ने, उपनिषद के बहुत सारे स्रोत दिए, सोच के रह के उसे भाव में अभिव्यक्त करने के लिए। और ये बात को मैं बहुत ही पुष्टिकरण से विश्वास में रखता हूं, मैं अपने आप को भरोसा रखता हूं कि हम सब कहीं ना कहीं रामायण काल में
1: मोहिनी। उत्तम कलाकार जयप्रभा मेनन ने रामकथा पर अपने विचार रखते हुए कंब रामायण का विशेष उल्लेख किया।
2: There is also a very beautiful and very important play, a scene to behold, to seeing them come, the Shurpanakhas, Alarcha, the...
1: उन्होंने शूर्पणखा प्रसंग की कलात्मक और बेहद मानवीय व्याख्या प्रस्तुत की। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के प्रति प्रणय निवेदन से पहले राक्षसी रूप से ललिता रूप में शूर्पणखा का परिवर्तन एक बेहद रोचक नृत्य प्रस्तुति का आधार बनता है।
2: Going and proposing to Rama and Lakshmana, from that rakshasi bhavam, the hand goes into a beautiful pallava.
1: राम के ही निर्गुण रूप में अपना आराध्य तलाश करने वाले कबीर, 15वीं शताब्दी का वो जुलाहा जिसने न केवल कपड़े बुने बल्कि मनुष्यता का एक ऐसा ताना बाना बुना जो आज भी जस का तस है। गुरु हर गोविंद साहिब सिख परंपरा के छठे गुरु, उन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की, वो पवित्र स्थान जो धर्म और लौकिक न्याय दोनों का ही केंद्र बना। कुछ महान विभूतियां देह में भले हमारे साथ ना हो, वो हमारी संस्कृति में, हमारी स्मृतियों में, हमारे सुरों में और हमारे रंगों में जीते रहते हैं। असम के अस्मिता के प्रहरी और असम के पहले मुख्यमंत्री, भारत रत्न से सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय गोपीनाथ बोर्दोलोई, सरोद के जादूगर मैहर घराने के महान संगीतज्ञ उस्ताद अली अकबर खां, ओडिशी शास्त्रीय नृत्य शैली को विश्व मंच पर पहचान दिलाने वाली दिव्य कलाकार संयुक्ता पाणिग्रही, भारतीय चित्रकला के महानायक मकबूल फिदा हुसैन, इन सभी विभूतियों के सांस्कृतिक अवदान को प्रणाम करते हुए संस्कृति भारती का आज का ये अंक यही संपन्न होता है। अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए।

0: ये आकाशवाणी है। आज के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन वादन। यू शिव प्रसाद, जिनका जन्म आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक संगीतकार परिवार में हुआ था, कम उम्र में ही आपको संगीत की विरासत मिली। आपने अपने चाचा से कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। सम्माननीय सैक्सोफोनिस्ट स्वर शिल्पी यू वेंकट राव जी और चिंतालापुड़ी वराहला राजू गारू और पी दयाकर गारू के साथ संगीतकर्ता के रूप में संगीत कार्यक्रमों में प्रदर्शन करना शुरू किया। आप पश्चिमी की फ्लूट में भी प्रशिक्षित हैं, जो आपकी व्यापक संगीत बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। आपको गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा नई दिल्ली द्वारा कला निधि पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये आपके संगीत के प्रति अटूट समर्पण, अनुशासन और जुनून को दर्शाता है, जो आपको अन्य संगीतकारों के लिए एक आदर्श बनाता है। आपके साथ मृदंगम पर विघ्नेश जयरमन और वायलिन पर जी उमा संगत कर रही हैं। यू शिव प्रसाद अपने कार्यक्रम का आरंभ हंस ध्वनि से कर रहे हैं। रचना के बोल हैं वातापी। इसके रचनाकार हैं मुत्तुस्वामी दीक्षितर। ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: दिस इज आकाशवाणी टुनाइट इन रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू अ सैक्सोफोन रिसाइटल बाय यू शिव प्रसाद। यू शिव प्रसाद बॉर्न इन टू अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस इन विशाखापट्टनम inherited his musical foundation at an early age. He received his formal training in Carnatic classical music from his uncle, the respected saxophonist Swar Shilpi U. Venkat Rao Garu, Chintalapudi Varhala Raju Garu and P. Dayakar Garu, and he began performing in public concerts as an

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन पर बजाया राग हंसध्वनि। कार्यक्रम को जारी रखते हुए यू शिव प्रसाद अब प्रस्तुत करेंगे राग नवरस कानड़ा। रचना के बोल हैं निन्नु वीणा रामा। इसके रचनाकार हैं त्यागराजा। ये रचना रूपकम ताल में निबद्ध है।
1: दैट वॉज राग हंसध्वनि। कंटिन्यूइंग हिज रिसाइटल, यू शिव प्रसाद नाउ प्रेजेंट्स अनदर कॉम्पोजिशन बेस्ड ऑन राग नवरस कानड़ा। Composition Ninnu Veena Rama, composed by Thyagaraja, is set to Rupakam.

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन पर बजाया राग नवरस कांगड़ा। अब आप सुनेंगे राग गौरी मनोहारी। रचना के बोल हैं जय जय पद्मनाभा। इसके रचनाकार हैं स्वाति तिरुनाल और ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: यू जस्ट हर्ड राग नवरस कांगड़ा। यू शिव प्रसाद कंक्लूड्स हिज सैक्सोफोन रिसाइटल विथ राग गौरी मनोहारी, कंपोजिशन जय जय पद्मनाभा, composed by Swati Tirunal, is set to

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन वादन, आपके साथ मृदंगम पर विग्नेश जयरमन और वायलिन पर जी उमा संगत कर रही थी। इसी के साथ संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: He was accompanied on Mridangam by V. Jayaraman and on violin by G. Uma. With that, we come to the end of this program. This program was earlier recorded in the studios of Akashwani Delhi and was broadcast from the Delhi station of Akashwani.
2: साथ में रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। वहां फ्रांस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इनमें शिक्षा मंत्री एडवर्ड ग्रेफे, उच्च शिक्षा अनुसंधान और अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट, आल्प्स मैरिटाइम्स प्रीफेक्चर के सेक्रेटरी जनरल पैट्रिक अमोसू एडबले, भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथू, नीस के मेयर एरिक सीओटी और स्टेट प्रोटोकॉल के डिप्टी डायरेक्टर बेनोइट स्नाइडर शामिल थे। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ल्ड्स के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
2: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि अगले सप्ताह फ्रांस में प्रस्तावित G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, यांत्रिक मेधा, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। असम के जोहराट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट

जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। अमरीका और ईरान ने संकेत दिया है

देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। अमेरिका और ईरान ने संकेत दिया है कि वे पश्चिम एशिया में महीनों से चल रहे टकराव को खत्म करने के लिए एक फ्रेमवर्क समझौते के बहुत करीब हैं। हालांकि अभी भी कुछ अहम मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। दोनों देशों के अधिकारियों का कहना है कि प्रस्तावित समझौते के मसौदे पर मोटे तौर पर सहमति बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के क्रम में कल आयुष मंत्रालय ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। ये आयोजन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हेबिल्ड के साथ मिलकर किया जा रहा है। ये आयोजन सुबह 6:15 बजे से पूर्वाह्न 7:35 तक होगा। इसमें 130 देशों से सहभागिता की संभावना है। कार्यक्रम में आयुष मंत्री प्रदाप राव जाधव भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के इच्छुक लोग मिस्ड कॉल देकर पंजीकरण करा सकते हैं। नंबर है 1800-318-7008। दक्षिण पश्चिम मॉनसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिन में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूरी राजस्थान में आंधी तूफान की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 मैचों की सीरीज के पहले वनडे क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi has arrived in the French city of Nice, marking the beginning of his 6-day visit to France and Slovakia. Mr. Modi was accorded a warm welcome by senior French dignitaries. The visit to the two European countries aims to further deepen bilateral ties and reaffirm India's commitment towards advancing its broader strategic partnership with the European Union. During his stay in Nice, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron tomorrow. Both leaders will also jointly inaugurate the Bharat Innovates event, which brings together top innovation startups and venture capital funds from across the world. On the second leg of his two-nation tour, Mr. Modi will travel to Slovakia tomorrow. During his two-day visit, Mr. Modi will meet Slovakian President Peter Pellegrini. He will also hold talks with his Slovakian counterpart Robert Fico in Bratislava. After concluding his Slovakia visit, Prime Minister Modi will return to France to take part in the G7 summit in the eastern part of the country in Auvergne on the 16th and 17th of this month. The White House today said US President Donald Trump will meet Prime Minister Modi on Wednesday during the G7 summit. A senior administration official said discussions are expected to focus on economic growth, supply chains, artificial intelligence, investment partnerships, and a range of global security challenges. The 5-day BRICS Agriculture Conference concluded at Indore in Madhya Pradesh today. At the end of the conference, the Indore Declaration was adopted unanimously. The declaration outlines key decisions on food security, farmers' welfare, climate-friendly farming, agricultural trade and use of smart technology in farming. Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan said that BRICS nations represent nearly half the world's population and contribute around 42% of global agricultural output. He said, Indore Declaration is not just a document of agreement, but a symbol of the collective will and shared responsibility of BRICS nations. Union Home Minister Amit Shah today directed the High-Level Committee on Demographic Change to study the shift in population structure in border districts. Chairing the meeting of the committee, Mr. Shah also asked the panel to visit border areas, metro cities and industrial towns for an assessment of changes because of illegal migration and other unnatural causes. An AN-32 transport aircraft of the Indian Air Force crashed at the Jorhat Air Force Station in Assam this morning during a routine sortie, claiming the lives of 5 air warriors. The Indian Air Force IAF has expressed grief at the loss of the lives. The IAF said that a court of inquiry is being constituted to ascertain the cause of the accident.
Defense Minister Rajnath Singh has also expressed grief at the loss of five

0: हेलो,
1: नमस्कार पार जी।
0: नमस्कार जी। कौन बोल रहे ने?
1: महेश गर्ग, मंडी हरगीरा मलौद।
0: बलोट वाले हूँ। बहुत बहुत स्वागत है तुहाडे अपने प्रोग्राम सौगात दे विच।
1: धन्यवाद जी।
0: होर सुनाओ, तुहाडा की हाल है ते मलोट दा की हाल चाल है?
1: वधिया जी, तुहाडे नाल गल हो गई, पारस नाल गल करके वधिया सोने वर्गे बन गए जी।
0: क्या बात है जी, क्या बात है। अज तां तुसीं दिन बना दिता है तुहाडे नाल सानू गल करके। वाकई मैनू अपने आप ठीक है। मेरा नाम पारस है, पर तुहाडे जिहड़े मैं हमेशा ही कहना है कि तुसीं साडे पारस हो। तुहाडे नाल गल करके मैं अपने आप नूं बहुत खुशनसीब मानदा हां कि रात नूं वी तुहानूं इंतजार हुंदा है कि 11:10 तो सुगात प्रोग्राम आवे और साडी जिहड़ी है
1: हाँ जी,
0: गलबात तुहाडे नाल होवे,
1: हाँ जी, इंतजार करी जाऊंगा।
0: क्योंकि कैलेंडर दे
1: मलोड़ दा ही
0: विच
1: वधिया शहर। हाँ जी,
0: असीं मार्क करके रख्या है कि शनिवार का दिन जिहड़ा ना असीं मिलाक के रख्या होया, वो साडा आया तुहाडे नाल गलबात करन दा।
1: हाँ जी,
0: ते
1: उड़ीक
0: अज
1: हुंदी है दोनों एक दूजे नूं जी।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल। ते अज फिर गीत केड़ा सुनना चाहोगे?
1: अमर नूरी का सुना दो जी।
0: ठीक है जी, तुहाडी पसंद, उन्हां दी आवाज़ तुहाडे तक पहुँच रही है। फोन इदे ही मिलाते रहो, गलबात करते रहो। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद।

लो जी, अगले आर्स मतलब अगले घंटे की असी शुरुआत कर दिती है। प्रोग्राम चल रहा है सौगात, ठीक हूँ 12 बजे तो लैके जो कड़ी ने इशारा कर दिता है जी, ठीक 12 बजन से हूँ 5-10 सैकेंड रह गए ने, अगला आवर साडा अगला घंटा शुरू हो चुका है। 12 बजे तो लैके 1 बजे तक ही प्रोग्राम इदा ही चलते रहना है। उस दे विच पहले लकी कॉलर दो उस नंबर मिला के साढ़े को पहुँच गए ने, आओ गलबात करते हैं। हैलो हैलो, हाँ जी कौन बोल रहे जी? हेलो, थोड़ी आवाज़ बड़ी कट के आ रही है जी, कौन बोल रहे ने जी? बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़े अपने प्रोग्राम सौगात दे विच। होर सुनाओ, घर परिवार का की हाल चाल है? चलो, चढ़दी कला दे विच ही रहना चाहिए, असं यही दुआ करते हैं, थोड़ा साथ प्यारे दे बने रहे और तुसी लकी कॉलर दोस्त बन गए, क्योंकि अगले ठीक 12 बजे जी है थोड़ी कॉल आकाशवाणी जलंधर के विड़े च पहुंची है। तो अज की खास साडे लई सौगात लैके आए हो? ठीक है जी, तुहाडी पसंद तुहाडे तक पहुँचा रहे हैं, क्योंकि बहुत जणिआं दी पसंद ये गीत है, क्योंकि अज कल ज़्यादातर जिहड़े वाइफ्स ने अपने बच्चों लै के, क्योंकि बच्चों नूं छुट्टियां ने ते जिन्नियां वाइफ्स ने अपने पेके पहुँचियां हुई ने उन्हां सारिआं नूं तुसीं गीत डेडिकेट करता है फोन करके, बहुत बहुत शुक्रिया।

0: हरियाणा तो
1: क्या बात है, हरियाणे वाले हों, की हाल चाल है?
0: बस बहुत बढ़िया ने तुहाडे ख्याल में। मौसम
1: चलो शुक्रिया जी, शुक्रिया। हरियाणे च मौसम दा की हाल है?
0: कल भी बारिश हुई थी, परसों बारिश हुई।
1: ठीक है जी, ते आज की खास सौगात साडे लई लै के आए हो?
0: जैली दा ला दो जी।
1: ठीक है जी, तुहाडी पसंद तुहाडे तक पहुंच रही है, सो इदां ही कॉल करदे रहो, आकाशवाणी जलंधर च इन्ना ही प्यार सौगात प्रोग्राम नूं दिंदे रहो।
0: धन्यवाद, शुक्रिया जी।

0: बल्ले बल्ले, वाह कितना खूबसूरत नजारा है।
1: महाकवि दत्तू, देखो सारे मैदान विच रंग बिरंगे शामियाने लगे हुए ने। सारे चित्रकार अपनी कला नु शिखर तक पहुंचाने लई मेहनत कर रहे ने। महाकवि, वक्त इस नगरी ते मेहरबान क्यों ना होवे, जिसका राजा साडा मित्र महादानी महाप्रतापी वीर पुरुष अमृतपाल होवे।
0: तुसी सच कह रहे हो राजा जी, बेशक उन्हां दी उम्र हले घट है, पर ईश्वर ने उन्हां नूं ज्ञान ते समझदारी नाल माला माल कर दिता है।
1: हाँ महाकवि जी, तुहाडे नाल मिलना चाहुंदे सी, इसे लिए मैं पड्डू तो तुहानूं अपने नाल लियाया।
0: इसकी खास वजह राजा प्रीतिपाल जी?
1: राजा अमृतपाल जी पड्डू दे उस रतन दे दर्शन करना चाहुंदे सन, जेड़े वीर विलास कमल नेत्र स्रोत ते ऋतु वर्णन विराग्या उच्चे दर्जे दिया काव्य रचनावां दे लेखक ने। जिस कवि दा छोटा जिहा गीत पिंड पिंड दिया औरतां दी जुबाना ते है, भला की बोलने उस गीत दे महाकवि ऋतु जी?
0: किलिया बतना छोड़ी दिता, किलियां बतना छोड़ी दिता।

0: वाह दत्तू जी वाह, पड्डू देश छोटे जिहे राजा नू माने कि ओ तुहाडे वर्गे महाकवि दे मित्र ने। आओ महाकवि दत्तू जी, इस मैदान दा जल्दी नाल एक चक्कर लगा लीए, बाद विच रंग महल दा नजारा भी देखना है।
1: चलो राजा जी।

0: रात जाग के पांचों होर व्याकरण के नियम याद करो।
1: उदो मेरी यादाश्त बहुत कमजोर सी। असल च मैनू पढ़ाई दा ना शौक नहीं सी हुंदा।
0: पर दत्तू जी, हुण तुहाडी प्रसिद्धि सारे जम्मू राज विच फैली हुई है। सच सच दसो, तुहाडे ते मां सरस्वती दी कृपा किवें होई?
1: बस तारा जी, ये ता सब ऊपर वाला ही जाने। ओह, राजा जी तो इधर ही आ रहे ने।
0: हाँ माणकू, राजा जी तेनू ही मिलन आ रहे ने। तेरी तस्वीर पूरी हुई कि नहीं?
1: माणकू देवी जी नमस्कार।
2: नमस्कार
0: माणकू, तू इन्हां नूं पछाणिया नहीं? इहने कवि दत्तू जी, जेड़े कदी सुकराला विच तेरे मेरे ते अर्जुन दे जमाती सी।
2: हाँ हाँ, मैं इन्हां नूं पछाण लिया।
1: तारा जी, राजा जी दी सवारी इत्थे पहुंचन वाली है, पर मैं थोड़े नाल बहुत सारियां गल्लां करनियां ने। आओ आपां उस मंदर दे कोल उस पेड़ दी छां हेठ चलदे हां।

0: चले जाओ।
1: श्रीमान जी, महाराज जी तुहानू याद फरमा रहे हैं।
2: महाराज मैनू याद फरमा रहे ने? मैनू एक किवें हो सकता है? मेरा तो हुण सरकारां सरदारां राजा महाराजा नाल कोई सरोकार ही नहीं। महला चो बाहर आउण तो बाद रंग महल दा चित्रकार सरकार दे हर हुकम दी सीमा तो बाहर हो चुका है। ए नवयुवक, जा वापस परस जा ते जाके अपने महाराज नूं कह दे कि कुंजलाल राजस्थानी नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि मैनूं पता लग चुका है जे मौत दा रंग काला है तो जीवन दा असली रंग उस तो भी ज्यादा काला है। कदी मेरे दोवें हथ रंगा दे पारखी सन, इन्हां नूं भी पता सी पीला जामनी ते गुलाबी किथे ते क्यों लाया जांदा है। पर जद तो मेरी शालू पेंदी रावी नदी दे पानियां च गुम हो गई तद तो मैनूं हर रंग मस्या दी रात वांग काला जापन लग पिया है, काला शाह काला।
1: श्रीमान जी, ओ सामने खड़े महाराज अमृतपाल जी तुहाडा इंतजार कर रहे हैं, वो तुहानूं मिलना चाहते हैं।
2: क्यों मिलना चाहते ने मैनूं? क्यों?
1: तुसी खुद ही चल के उन्हां नूं पूछ लो।
2: चलो चल के उन्हां कोले पुछदे कि क्यों इन्हां महला चवाले वासियां नूं एक गरीब चित्रकार ते मासूम दासी दी मुहब्बत सहन न हुई। क्यों मेरे फन दी तौफीक मेरी प्रेरणा मेरे कोलों खोली गई।

0: सुनो सुनो राजा, मैनू हुण किसे दा डर नहीं, किसे दा डर नहीं।
1: प्रणाम गुरुदेव।
0: लड़की तू कौन है? चेहरा थोड़ा जानिया पहचानिया।
1: मैं माणकू हाँ गुरुदेव, सुकराले दी रहन वाली माणकू, काशीराम भारद्वाज दी बेटी।
0: काशीराम भारद्वाज ओही ने ना जिन्हां कोल संस्कृत दे विद्वान आचार्य सूर्य नारायण रहिंदे सी।
1: जी गुरुजी।
0: बेटी ए तेरी जमना दी लहरा विच वो दर्द क्यों नहीं जो रावी दी लहरा विच है?
1: ओ गुरुजी, जमना नाल काना जो जुड़े ने।
0: ओ मेरी पोली चित्रकार रानी, तू नहीं समझ सकती, संसार दी हर नदी दे जल विच दर्द छिपे हुंदा है। पानी विच थोड़ा दर्द पैदा कर। हाँ हाँ, पानी विच थोड़ा दर्द पैदा कर।
1: जी गुरुजी।
0: काले रंग दा इस्तेमाल ज्यादा करया कर। हाँ काला। मैनू तां बेटी मेरा इंद्रधनुष भी काला ही जापदा है। चढ़दे ते लहिंदे सूरज दी लाली विच भी स्याही घुल गई है। जदों जावें तां ध्यान नाल देखी मेरे हत्थां नाल रंग मैल दीआं दीवारां ते उकरियां तस्वीरां दे अखां च हंझू मुड़ आए ने। ते हर हंझू ने एक मूक श्राप दित्ता है, जल्दी महल दो महले खंडरात च बदल जाणगे, वसूली दे राजा दा राज बर्बाद हो जाएगा, सारी शानो शौकत समाप्त हो जाएगी राजा दी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म।

0: सचमुच तेरा गुरु पागल हो गया माणकू।
1: महाराज तुहाडा हुक्म होवे तो मैं इस पागल बुड्ढे नूं फड़ के कैदखाने च सुट दां।
0: नहीं नहीं बैजनाथ, जिसने

0: तारा जी, तुसी मानकू दे सामने मेरा सुझा रखिया? की क्या उन्होंने?
1: महाकवि जी, मानकू नू तुहाडा सुझा मंजूर नहीं।
0: की? मेरा सुझा? मेरा सुझा मंजूर नहीं?
1: हाँ, वो ता बैजनाथ जसरोटिया दे नां दी माला जप रही है।
0: बैजनाथ जसरोटिया? तुसी कहना चाहते हो ओ महाराज जी दा खास सेवक?
1: महाकवि जी, तुसी अपने दिल चो मानकू दा ख्याल कर दो, तुहाडे लई यही बेहतर होवेगा।
0: पर
1: महाकवि, तुसी अपनी कल्पना शक्ति पश्चाताप दी अक्ष ना चुको, किसे नवे काव दी रचना करो।
0: हाँ, तुम ठीक कह रही है तारा, मैं तेरा एहसान मंद रहा हूं।

0: तुसी
1: ते थे?
0: तुसी मानकू पारद्वाजी हो ना, चित्रकला दी राजकुमारी?
1: देखो मैं राजकुमारी तो हाँ नहीं, वैसे मानकू भारद्वाज मैं ही हाँ। माता रानी दी बड़ी कृपा है कि तुसी मैनू पछाण लिया।
0: मैं ते असल च इत्थे मां सुकराला दे दर्शना लई आया सी, ते नाल ही एक मन्नत भी मंगनी सी।
1: किन्ना अजीब संयोग है, मैं भी हुणे मां सुकराला दी पूजा करके आ रही हाँ, ते एक मन्नत भी मांग के आ रही।
0: मां सुकराला हर भक्त दी मन्नत पूरी करती है, पता नहीं तुसी मां कोलों की मंगया होएगा, ते मैं दसना चाहांगा कि मैं मां कोलों की मंगया।
1: हाँ हाँ दसो ना।
0: मैं था मां सुकराला कोलों जीवन साथी दे रूप विच तुहानू मंगया।
1: मैं भी तो थानू ही मंगया।

0: ब्रजराज जी, सब कुशल मंगल तो है। बिना सूचना दे तुहाडा इंज आउणा।
1: महाराज अमृतपाल जी, मैं तुहाडे कोलों मदद की उम्मीद लैके आया।
0: हाँ दसो।
1: जीजा जी, तुसी तां जानदे ही हो कि मेरे पिता जी, मेरा मतलब तुहाडे सौरा साहब महाराजा रणजीत देव, मेरे कोलों बहुत नाराज़ ने, क्योंकि मैं शराब ते शबाब का शौकीन हाँ। ते अपनी इस नाराजगी सदका वो अपना वारिस मैनू नहीं, छोटी मां दे बेटे दलेल देव नू बनाना चाहते ने। यह सच है कि मैं कंडिया नाल भरिया ताज अपने सिर ते नहीं रखना चाहता।

0: मैं कवि दत्तु एक कवि दिव्य एक केहो जिहा दृश्य देख रहा हूं। बसंतर नदी दे उस पार राजा रंजीत देव की फौज जिदा साथ दे रहे ने चंडा सी चंबा नूरपुर मनकोट ते बसोही दे राजियां दियां फौजां ते लश्कर ते इस पार ब्रजराज देव सिंह चढ़त सिंह शुक्र चक्किया ते जय सिंह कन्हैया दे सिपाहियां दे तम हे प्रभु हे कैसा कुरुक्षेत्र रचन जा रहे हो हजारा पिंडा दे नौजवान अपनिया जाना गवा दे हजारा सुहागन विधवा हो जान की बच्चे अनाथ हो जान के हे रब्बा हे शुद्ध क्यों हे शुद्ध कत बंद होन के राजमहला विच चलन वालियां साजिशां दा अंत कदों होवेगा कदों अंत होवेगा
1: कौन रात दे सनेरे विच नदी दे पानी नू पार करके कौन इधर आ रहा है खबरदार
2: कौन है पहरेदार
1: राजकुमार ब्रजराज जी कोई आदमी बसंतर नदी नू पार करके साडे वाल आ रहा है
2: फिर देख की रहे हैं चुक बंदूक ते चला गोली
0: पर ब्रजराज जी हो सकता आउन वाला कोई दूत होवे जेड़ा थोड़े पिता यानी राजा रंजीत देव वालों कोई संधि दा सुनेहा लेके आया होवे
2: नहीं महाकवि दत्तू जी हुण किसे भी सुनेहे दा साडे लई कोई अर्थ नहीं है पहरेदार जे तेरे कोलो बंदूक नहीं चलदी तां पिछे हट जा मैं चलाउणा

0: con. Con. कौन है? ये तो बसोली दे राजा अमृतपाल जी का खास दूत बैजनाथ जसरोटी है। ए तुसी की किता ब्रजराज जी? ए ताउस महान चित्रकार मानकू का पति है। पहरेदार
1: जी,
0: इन्हों मेरे खेमे विच ले जाओ ते शाही

0: जैद नूं बुला के लिया। जो आ गया महाराज, जल्दी।
1: महाकवि तत्तू जी, ये सब करन दा कोई फायदा नहीं, मैं उन नहीं बचांगा।
2: नहीं भेषराज जी,
1: राजा जी दा स्नेहा लेके आया सी, तत्तू जी
2: दसो,
1: मैं तुहाडे अग्गे इक बिनती है, मेरा एक छोटा जिहा कम कर देना।
2: हुकम करो।
1: तुसी हां कहोगे तां मेरी आत्मा नूं शांति मिल जाएगी। तुसी खुद जाके मानकू नूं मिलो, मेरे वल्लों उस कोलों माफी मंगना कि मैं ओहदे लई कुछ नहीं कर सकिया। उसनू मेरे घर वाले अपना नहीं पाए, ते उधर मैं अपना सारा जीवन राजा जी दी सेवा विच रहा। उसनू जाके कहना कबीर जी कि हुण ओ पूरी तरह आजाद है, जिथे जावे जदो जावे जिस तरह जावे अपना जीवन बिता सकती है। ओ जावे ता वापिस सुकराला जा।
2: भेषदास जी मानकू दे पति रे, मेरी गोदी विच सिर रख के अपने प्राण त्याग दिते, ये कहो जिहा नर्थ हो गया। खून नाल सड़िए इस धरती नाल मेरा कोई सरोकार नहीं, मैं जा रहा।
3: महाकवि जी, तुसी किथे जा रहे हो?
4: ब्रजराज जी, मैनू ना रोको। वो कवि जिन्हें ब्रजराज पंचासिका की रचना की सी, वो ब्रज मर गया। टिका जी, अपनी नवी पंचासिका लिखवाने लिए किसी होर कवि नू लंबो, मैं जा रहा।

0: मानकू मेरी बेटी आ, आ, ऐसे बैठ मेरे कोल।
1: जी गुरु जी।
0: ओ, तेरी एक की हालत हो गई है। तेरी तलाश में जसरोटा गया, उतो बसोली, तब किसी ने दस्या कि तू अपनी मासी कोल पट्ठू चली गई है। मैं पट्ठू गया तो महाकवि देवी दत्त को पता लगा कि तू सुकराला चली गई है अपनी सहेली तारा नाल।
1: ना गुरु जी ना, मेरे सामने उदा ना ना लो।
0: किसका नाम बेटी, तारा दा या महाकवि देवी दत्त दा?
1: उस हत्यारे दा गुरु जी, जेड़ा अपने आप नू महाकवि कहंदा है।
0: ए तू की कह रही है बेटी, की कह रही है? लगदा तेनू गलतफहमी हुई है।
1: नहीं गुरु जी, असल विच तुहानू सही गल दा पता नहीं।
0: की?
1: ओ मेरे पति दा हत्यारा है। उसे ने मेरी हस्ती खेल दी, दुनिया बर्बाद की थी है गुरु जी।
0: नहीं नहीं बेटी नहीं। ओ जो प्रभु दे ध्यान विच लीन होके सारा सारा दिन पड्डू दे उस तालाब किनारे बैठा रहता है, ते कदे कदे कविता लिखन डुब जाता है। भला वो किवें हत्यारा हो सकता है, किवें?
1: गुरु जी।
0: हाँ बेटी हाँ, तू एक कलाकार है। ईश्वर ने तेनू कला ले ही इस धरती ते भेजा है, इसलिए तू अपने दुखां नू भुल के कला च लीन हो जा। जो पुल मैं अपनी जिंदगी च कीती है उसनू ना दोहरा, ना दोहरा। सुन रही है ना मेरी बच्ची?
1: जी गुरु जी।
0: ते फिर उठ, उठ से चल के अपने रंग संभाल, ते अपने दुखां दी पीड़ा नू रंगा दी जुबान दे। ते आ लै एक किताब।
1: गीत गोविंद।
0: हाँ बेटी, एक किताब महाकवि देवीदत्त ने भिजवाई है। मैं चाहना है कि तू इसनू पढ़े, ते इस तो प्रेरणा लेके नवी तस्वीरां दी रचना करें। आने वाला युग तेनू कदे नहीं भुल पाएगा, तेरी गिनती हमेशा बसोली दे अमर चित्रकारा विच होवेगी, अमर चित्रकारा विच। हाँ

0: बस रोना ना वापिस तो नहीं आन लगे। सारा सारा दिन सारी सारी रात तस्वीर बनाने च मगन रही है। ना तेन खान की सुध रही है तो ना ही आराम कर। इस तरह तो तू पागल हो जाएगी माणकू, पागल हो जाएगी।
1: तारा मैं उस बुझदे दीवे वांगा जिसका तेल हौली हौली खत्म हो रहा है।
0: होश बिचा संभाल अपने आप नू। नाले सुन, देख युद्ध खत्म हो गया है। ब्रजराज नू अपने कीते दी सजा मिल चुकी है। वो हार गया है ते हुण भज के पंजाब विच लुकता फिर रहा है। ते नाले सुन माणकू, बैजनाल जी की हत्या भी उसे ने की थी। हाँ। ते तेरे पति ने महाकवि दत्तू जी की गोदी विच सिर रख के

0: आखिरी साह ले आसी।
1: एदा मतलब महाकवि तत्तु ने मेरे पति दी हत्या नहीं की थी?
0: नहीं मानकू नहीं, उस दिन तो बाद ता उन्होंने किसी राजमहल विच कदम तक नहीं रखिया।
1: ते मैं फिजूल विच किसी निर्दोष नू दोषी समझती रही। दीवे दा तेल खत्म होने वाला है तारा, रोशनी कट रही है, थोड़ा थोड़ा तेल पा दे दीवे च, इस तो पहला दीवा बुझ जावे। मैं पश्चाताप करना चाहती हूँ तारा।
0: पश्चाताप? कादा पश्चाताप मानकू?
1: मैं महाकवि तत्तु जी को लो माफी मंगनी चाहती हूँ। तू पड्डू चली जा ते महाकवि नु इत्थे लेके आ।
0: पर की पता वो आन दी राजी होण के वी की
1: मान जानगे। मैं महाकवि तत्तु जी को लो माफी मंगना चाहती हूँ। तू पड्डू चली जा ते महाकवि नु इत्थे लेके आ।
0: पर की पता वो आन ले राजी होंगे भी के नहीं।
1: ओ मान जानगे तारा, मैनू पूरा यकीन है। मैं खुद चली जांदी पर मैं इस हालत विच नहीं। नाले मैं एक बेशकीमती तस्वीर बनाना चाहनी हाँ, जेड़ी जेड़ी अनमोल होवे। ते वो चित्र मैं महाकवि नू अपने महाकवि नू पेंट करांगी। जल्दी जा तारा, जल्दी जा।

0: मानकु, मैं हाँ, देवीदत्त।
1: तुसी महाकवि जी, तुसी महाकवि जी, मैनू माफ कर दो, मैनू पापा नू माफ कर दो महाकवि जी।
0: मानकु,
1: मैं फिजूल जी तुहाडे ते इल्जाम लगा के अपनी आत्मा नू मैला कर दी रही।
0: नहीं,
1: मैं तुहाडे कोलो हाथ जोड़ के माफी मंग दिया महाकवि जी।
0: मानकु,
1: सुनो महाकवि जी।
0: हाँ, बोल बोल मानकु, बोल।
1: ओ सामने सामने हाँ? मेरिया बड़ाइया कुछ तस्वीरां रखिया ने, इन्हां नूं अपने नाल ले जाना, खासकर खासकर इस तस्वीर नूं। मेरी है तुझ पेंट स्वीकारन दा महान बख्शिणा।
2: मान

हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे, हर नाकस दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया। साहिब श्री गुरु रामदास जी द्वारा उचारित ए फरमान भगतां अते प्रभु विचली अटुट प्रीत दा लखायक है। अकाल पुरख तुर तो ही भगतां दी पैज रखता आया है ते भगतां नू अथाह प्यार करता है। साहिब श्री गुरु अमरदास जी राग सूही विच उचारित बचन विच फरमाउंदे ने, भगत जना की हर जियो राखै, जुग जुग रखदा आया राम। सरवण करदे आं भाई दिलबाग सिंह, भाई गुलबाग सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द।

पगत जना की हर जियो राखे, जुग जुग रखदा आया राम। इस शब्द गायन कीता सी पाई दिलबाग सिंह, पाई गुलबाग सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने। प्रभु प्यारे भगत अकाल पुरख प्रभु ते ही ऊट आसरा रखते हुए उस दे वल ही दृष्टि रखते हैं, क्योंकि उही औकड़ा वेले भगतां दा सहाई हुंदा है। ओ भगतां दे जीवन विच आउण वालियां औकड़ां नूं मूल तो ही संघारित कर दिंदा है। दूत दुश्मन सब तुझ ते निवरै, प्रगट प्रताप तुम्हारा, जो जो तेरे भगत दुखाए ओ तत्काल तुम मारा। सरवण करदे आं भाई सरबजीत सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द।

0: दूत दुश्मन सब तुझते निवरै, प्रगट प्रताप तुम्हारा, जो जो तेरे पगत दुखाए वो तत्काल तुम मारा। इस शब्द गायन की तासी पाई सरबजीत सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे आं इस शब्द दी व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी गुरसेवक सिंह।
1: तनासरी महला पंजवां, दूत दुश्मन सब तुझते निवरै, प्रगट प्रताप तुम्हारा, जो जो तेरे भगत दुखाए ओ तत्काल तुम मारा। निरखो तुमरी ओर हर नीत, मुरार सहाय हो दास को, कर गह उधरो मीत। सुनी बेनती ठाकुर मेरै, खस माना करे आप, नानक आनंद पए दुख भागे, सदा सदा हर जाप। विचार अधीन पावन शब्द तनासी राग विच गुरु अर्जन साहब जी का उचारण किया होया। गुरु ग्रंथ साहब जी दे पावन अंक 681 उप

सबको तेरा वस अगम अगोचरा, तू पगता कै वस पगता ताण तेरा। इस शब्द का गायन किया सी भाई कमलजीत सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

एक विशेषता है इस भजन में, भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों का वर्णन एक साथ प्रत्येक पंक्ति में किया गया है।

बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु।

तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निधि आवै ताए सब थाई होए सहाए दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी।

की, आनंद साहिब जी की अरदास, उल चुक मुआफ करनी। सच्चे पातशाह जीओ, जिना जिना गुरमुखा प्रेमियां वल्लों कड़ाह प्रसाद

अंदर बाहर गुदड़ते भले संसार तिन नेहो लगा रब सेती देखने विचार रंग हसै रंग रोवे चुप पी कर जाए परवाह नाए किसे केरी बात सचै नाए दरबार पर खर्च मंगा जावे दे ता खाए दीवान को कलमे कहमा तुम मेल दर ले लेखा पिट छुटे।